सुप्रभात, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के आश्विन मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 15 अक्टूबर सन 2026 सुबह के 7 बजे हैं। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ अब आज की प्रातःकालीन सभा का शुभारंभ करते हैं।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। श्रोताओं, आज 15 अक्टूबर है, दिन गुरुवार। आइए आज आपको बताते हैं कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनने वाले हैं आज रेडियो आज़ाद हिंद से। जीवन सौरभ कार्यक्रम होगा अब से कुछ ही देर के बाद। आज का शीर्षक होगा दो दोस्तों की कहानी। 7:10 पर होगा कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें आप सुनेंगे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से सूक्त 42 का वाचन। भक्ति संगीत कार्यक्रम का समय होगा 7:20 से। वतन का राग कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 8 बजे। आज का कार्यक्रम केंद्रित होगा देवी प्रसाद रॉय चौधरी की पुण्यतिथि पर। 8:30 पर बाल सभा कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उत्सवों में बच्चों की भूमिका। सुबह 9 बजे होगा कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया की जानकारी का भाग 7वां, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से अदिति गौड़ की चर्चा आप सुनेंगे। विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास यात्रा, प्रसारण समय 9:30। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान, आज का विषय भारतीय स्टेट बैंक भरोसे की बैंकिंग, कार्यक्रम का 23वां भाग आज आप सुनेंगे। दिन में 10:30 पर दुर्गा भाभी की पुण्यतिथि पर केंद्रित होगा कार्यक्रम आजाद हिंद।

0: भोपाल शहर की साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारियां आप सुनते हैं परिक्रमा कार्यक्रम में। आज इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा दिन में 11 बजे। 11:30 पर युग प्रवर्तक विवेकानंद कार्यक्रम का 71वां भाग आप सुनेंगे। तो श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम, जिन्हें आप सुनेंगे 90.8 MHz पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम जीवन सौरभ, दो दोस्तों की कहानी।
1: जीवन सौरभ। दो दोस्तों की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन एक बहुत ही दयालु लड़का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वो कोई भी हो। एक दिन अमन अपने स्कूल से घर जा रहा था, जब उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। एक कुत्ता बच्चे के पीछे भाग रहा था, जो उसे काटने की कोशिश कर रहा था। अमन दौड़ा और बच्चे को कुत्ते से बचाया। बच्चे का नाम रवि था। रवि अमन का बहुत आभारी था। उसने अमन को बताया कि वह शहर में रहता है। वो अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। अमन ने रवि को दिलासा दिया और उसे बताया कि वो उसको दोस्त बनाना चाहता है। रवि और अमन जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। वो हर दिन एक साथ खेलते और एक साथ समय बिताते थे। अमन ने रवि को अपने शहर को दिखाया और उसे अपने साथियों से मिलवाया। एक दिन अमन और रवि एक पार्क में खेल रहे थे, जब उन्होंने देखा कि एक लड़का एक छोटे से जानवर को पीट रहा है। अमन दौड़ा और लड़के को रोका। उसने उसे बताया कि जानवरों को मारना गलत है। लड़का अमन की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसने अमन से माफी मांगी और जानवर को छोड़ दिया। अमन खुश था कि उसने लड़के से जानवर को बचाने में मदद की। अमन और रवि ने कई सालों तक दोस्ती की। उन्होंने एक साथ बहुत सारी यादें बनाई। अमन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता और उसने रवि को भी वैसा ही बनने के लिए प्रेरित किया। अंत में अमन बड़ा हो गया और उसे एक नौकरी मिल गई। वो एक दूसरे शहर में रहने चला गया, लेकिन वो रवि को कभी नहीं भूला। वो अक्सर उसे फोन करता था और उसे बताता था कि वो कैसा है। एक दिन अमन को पता चला कि रवि बीमार है। वो रवि से मिलने के लिए अपने शहर वापस आया। वो रवि को देखकर बहुत दुखी था। वो जानता था कि रवि जल्दी ही मर जाएगा। अमन ने रवि को बताया कि वो उसके लिए कितना मायने रखता है। उसने उसे बताया कि वो हमेशा उसे याद रखेगा। रवि अमन की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने अमन को बताया कि वो बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसने अमन को बताया कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा और रवि कुछ दिनों बाद मर गया। अमन बहुत दुखी था। वो जानता था कि वो कभी भी रवि को नहीं भूलेगा। वो उसे हमेशा अपने दोस्त के रूप में याद रखेगा। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है और हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और अच्छाई का साथ देना चाहिए। जीवन सौरभ।

0: रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज सुनिए ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 42 से वाचन। ऋषि है ग्रत्समत एवं भार्गव शौनक, देवता है शकुंत एवं छंद है त्रिष्टुप।
1: कनिक्रद जनुषम प्रब्रुवाण इयर्ति वाच मरितेव नावम सुमंगलश्च शकुने भवासी मा त्वा का चिदभिभा विश्वाविदत्। जिस प्रकार मल्लाह नाव को चलाता है उसी प्रकार उपदेश देने वाला शकुनी बार बार उत्तम वाणी द्वारा प्रेरित करता है। हे शकुनी, आप सबके कल्याण करने वाले हों, आपको कोई आक्रमणकारी शत्रु किसी भी प्रकार का कष्ट न दे। मात्वाश्येन उद्वधीन मा सुपर्णो मात्वा विददि शुमान वीरो अस्ता पित्रया मनु प्रदिशम कनिक्रदत सुमंगलो भद्रवादी वदेह। हे शकुनी उपदेशक, आपको श्येन दुष्ट व्यक्ति न मारे और न ही गरुड़ पक्षी बलशाली तुम्हें मारे। कोई शस्त्राशस्त्रधारी आपको न प्राप्त कर सके। दक्षिण दिशा अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी कल्याणकारी वचनों का ही यहां उच्चारण करें। अवक्रंद दक्षिणतो ग्रहाणाम सुमंगलो भद्रवादी शकुंते मा नहस्तेन ईशत माघशंसो बृहद्वदेम विदथे सुवीराह। हे शकुनी, आप मंगलमय शब्दों को बोलने वाले हैं, अतः घर की दक्षिण दिशा में बैठकर भी कल्याणकारी प्रिय वचन बोलें। चोर तथा दुष्ट व्यक्ति हमारे ऊपर अधिकार न करें। सुसंतति युक्त होकर हम इस यज्ञ में आपका यशोगान करें।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 42 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: नब्बे दशमलव 8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। लीजिए श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम भक्ति संगीत।

भक्ति मार्ग ही एक ऐसा उपाय है जिसमें जल कमलवत प्रवृत्त होते हुए भी व्यक्ति संसार से निर्लिप्त होकर प्रभु के प्रति समर्पित जीवन में आनंद की अनुभूति कर सकता है।

परमात्मा से प्रार्थना करने पर सब आसक्तियां दूर हो जाती हैं। भगवान हमारे हैं, अपने हैं, ये बोध हो जाने पर मुक्ति संभव हो जाती है। हट करिए, वे दर्शन अवश्य ही देंगे।

यदि हम प्रभु की नवधा भक्ति में से किसी एक चरण को भी चुन लें, तो इसके द्वारा आराध्य की आराधना के साथ साथ अपने स्व को समर्पित करके आत्मविस्मृत होकर अपने आराध्य से तादात्म्य स्थापित किया जा सकता है।

संसार की भौतिकता से परे आइए हम भी अपने मन को प्रसन्न स्वस्थ करने के लिए भगवत भक्ति करें।

और श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही कार्यक्रम भक्ति संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। सुबह के ठीक 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम, वतन का राग। आज का कार्यक्रम देवी प्रसाद रॉय चौधरी की पुण्यतिथि पर।

0: नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

रंगों की भी एक अपनी भाषा होती है, हर शिल्प की एक अपनी तासीर जो किसी कलाकार के अंतर्मन को अभिव्यक्त करती है। चित्रकारी और मूर्तिकला एक ऐसी मौन अभिव्यक्ति है जिसमें रंग ही महाकाव्य रचते हैं, आकृतियां ही आख्यान सुनाती हैं। वतन का राग कार्यक्रम में आज हम याद करेंगे भारत के एक ऐसे महान चित्रकार और मूर्तिकार को जिन्होंने रंगों, पत्थरों और धातुओं की जुबानी बहुत कुछ कहा और उनका कहा इतिहास में दर्ज हो गया। एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपनी कला के माध्यम से भारत की आत्मा को उकेरा। आज बात देवी प्रसाद राय चौधरी की। एक विलक्षण कलाकार, वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक चित्रकार और मूर्तिकार होने के साथ साथ वो एक साहित्यकार और संगीतकार भी थे। वो बांसुरी बजाने में निपुण थे, लेकिन उन्हें सबसे अधिक प्रसिद्धि एक मूर्तिकार के रूप में मिली। इसके अलावा पहलवानी और निशानेबाजी में भी उन्हें महारत हासिल थी। देवी प्रसाद राय चौधरी का जन्म 15 जून सन 1899 को तेजहट रंगपुर में हुआ था, जो उस समय अविभाजित बंगाल का हिस्सा था और अब बांग्लादेश में है। उनका जन्म एक संपन्न जमींदार परिवार में हुआ था। पारिवारिक वातावरण के कारण बचपन से ही उनका रुझान कला की ओर था। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा घर पर ही प्राप्त की। उन्होंने सुप्रसिद्ध चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर से चित्रकला का प्रशिक्षण प्राप्त किया। अवनींद्रनाथ गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के भाई थे, जिन्होंने पहली बार भारत माता का चित्र बनाया था। इसके साथ ही देवी प्रसाद जी ने विख्यात इटालियन चित्रकार बोइस से भी पश्चिमी शैली की बारीकियां सीखी। हिरण्यमय राय चौधरी उनके दादा थे। देवी प्रसाद जी ने अपने दादा से मूर्तिकला सीखी। अपनी कला शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में शिक्षण का कार्य भी आरंभ किया। उनके द्वारा बनाया गया पहला उत्कृष्ट चित्र दुर्गा पूजा यात्रा माना जाता है। उनकी चित्रकारी पर उनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर का गहरा प्रभाव रहा।

देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में अधीक्षक के रूप में शामिल हुए। इस पद पर उन्होंने लगभग 30 साल काम किया। उस समय वो किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान का नेतृत्व करने वाले गिने चुने भारतीयों में से एक थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने छात्रों के भीतर अद्भुत रचनात्मकता जगाने का काम किया। ये देवी प्रसाद राय चौधरी की सर्जना ही थी जिसने इस कला केंद्र को नई कलात्मक ऊर्जा प्रदान की। इसके लिए वो सम्मानित भी हुए, लेकिन इस कला केंद्र के संचालन के साथ साथ एक कलाकार के रूप में भी उनकी यात्रा जारी रही। उन्होंने दो स्टूडियो बनाए थे, एक घर पर और दूसरा मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में। वो सुबह से लेकर देर शाम तक यहाँ कला साधना में मग्न रहते थे, विशेषकर मूर्तियां बनाने में। वो एक ऐसे कला साधक थे जो अपनी सर्जना को पूजा की तरह किया करते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कभी भी अपने काम की प्रदर्शनी नहीं लगाई। वो कहा करते थे कि मैं अपने साधारण से स्टूडियो को कला के लिए समर्पित एक पुराने पवित्र मंदिर की तरह मानता हूँ। मैं अपनी बनाई कृतियों की पूजा करता हूँ। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता कि इन कलाकृतियों को कभी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाए। जो लोग कला के सच्चे प्रेमी हैं, उनका मेरे स्टूडियो में स्वागत है। क्या भक्त गांव के जीर्ण शीर्ण मंदिर से मूर्तियां बाहर ले आते हैं? नहीं, वो मंदिर में जाकर ही भगवान के दर्शन करते हैं। अपनी कला के लिए ऐसी सोच थी उनकी। देवी प्रसाद जी ने अपनी चित्रकला में जल रंगों, तैल रंगों और पेस्टल तीनों ही माध्यमों का प्रयोग किया। तूफान के बाद पूर्ण कुंभम, निर्वाण, महल की गुड़िया, स्नान के घाट, मुसाफिर, पुल आदि उनके प्रसिद्ध चित्र हैं। उनके अनेक चित्रों में पर्वत क्षेत्र की स्त्रियों का सौंदर्य भी उभर कर आया है। ऐसे चित्रों में शामिल है तिब्बत की बालिका, भूटिया औरत, नेपाली लड़की, लेपचा कुमारी आदि। देवी प्रसाद राय चौधरी ने अपनी चित्रकारी के माध्यम से अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र भी बनाए। इनमें गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, ओसी गांगुली और पर्सी ब्राउन जैसे विख्यात नाम शामिल हैं। इनमें से सबसे अच्छा चित्र गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का चित्र माना गया है।

देवी प्रसाद राय चौधरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गहरी रुचि रखते थे। वो स्वयं बांसुरी वादन में कुशल थे। बचपन में उन्होंने पहलवानी भी सीखी थी। यही कारण है कि मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में अपने छात्रों के अनुरोध पर उन्होंने कुश्ती भी सिखाई। वो एक अच्छे निशानेबाज भी थे और साहित्य में भी उनकी रुचि थी। उनकी कई लघु कथाएं उन दिनों बंगाली पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुईं। 1930 के दशक में पश्चिमी कला समीक्षकों ने उन्हें तैल माध्यम में उनके कामों के लिए दुनिया के बेहतरीन चित्रकारों में से एक माना। लेकिन आगे चलकर उनका रुझान मूर्तिकला की ओर अधिक रहा और एक कुशल चित्रकार के साथ साथ वो अपनी सार्वजनिक मूर्तियों के लिए विशेष रूप से जाने गए। उन दिनों त्रावणकोर के मंदिरों में तथाकथित निम्न जाति के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। देवी प्रसाद राय चौधरी ने इस मंदिर में उनके प्रवेश की उद्घोषणा करती कलाकृति बनाई जो बहुत प्रसिद्ध हुई। ट्रायम्फ ऑफ लेबर यानी श्रम की विजय उनकी एक कांस्य मूर्ति है जो अत्यंत प्रसिद्ध है। ये मूर्ति भारत के राष्ट्रीय निर्माण प्रक्रिया में श्रम के योगदान को दर्शाती है। इनमें चार आकृतियां एक भारी पत्थर को हिलाने में तल्लीन दिखाई गई हैं, जो अपने कार्य में सफल होते दिखाई देते हैं। इसे सन 1959 को चेन्नई के मरीना बीच पर स्थापित किया गया था। इसी तरह उनकी एक और प्रसिद्ध कलाकृति है पटना सचिवालय के बाहर स्थित शहीद स्मारक। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए 7 छात्रों के सम्मान में ये स्थापित की गई है। प्रतिमा में धोती कुर्ता और गांधी टोपी पहने 7 छात्रों को दिखाया गया है। एक छात्र झंडा पकड़े हुए गंतव्य की ओर इशारा कर रहा है, अन्य उस ओर बढ़ रहे हैं और कुछ घायल अवस्था में झुके हुए हैं। सन 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस कांस्य कलाकृति का अनावरण किया गया था। इसी तरह दिल्ली में 11 मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कलाकृति है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए दांडी मार्च को दर्शाती है। ये मूर्ति 11 आकृतियों का संयोजन है जिसमें गांधी जी को 10 अन्य लोगों का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है जो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मूर्ति दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग और तीन मूर्ति मार्ग के जंक्शन पर स्थित है जिसे 1982 में स्थापित किया गया था। उनकी कलाकृति श्रम की विजय और शहीद स्मारक पर डाक टिकट भी जारी किया गया। गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद, जगमोहन पैलेस और त्रावणकोर आर्ट गैलरी केरल में उनकी अनेक कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। इसके अलावा कई पुस्तकों में भी उनकी पेंटिंग और मूर्तियां चित्रित हैं। उन्हें ललित कला अकादमी फेलोशिप और रवींद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से डीलिट की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया। अपनी संपूर्ण कलाकृतियां आने वाले समय को सौंपकर 15 अक्टूबर सन 1975 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
1: नाइन्टी पॉइंट एट रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है उत्सवों में बच्चों की भूमिका।
2: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
1: बच्चों नमस्ते, मैं हूं मनीषा, हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा। वैसे बच्चों, आज मैं ना आपसे किसी एक कहानी के बारे में बात नहीं करने वाली हूं। आज हम बात करेंगे उस बात के बारे में जो हम सब की जिंदगी का बहुत सुंदर हिस्सा होती है बच्चों, और वो है हमारे उत्सव, हमारे फेस्टिवल्स। क्योंकि हमारे देश में ना साल भर कोई ना कोई त्योहार आता रहता है, जाता रहता है। कभी दीपावली, कभी होली, कभी जन्माष्टमी, कभी गणेश उत्सव, और अब हम सब के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है नवरात्रि यानी दुर्गा उत्सव। और आप लोगों ने बच्चों एक बात ज़रूर महसूस की होगी कि त्यौहार आते ही ना घर का माहौल बदल जाता है। जैसे अभी बहुत सारे घरों में साफ सफाई होने लग गई है, सजावट होने लग गई है, माँ पापा किसी ना किसी काम में आपको ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं, बाजारों में थोड़ी और रौनक बढ़ गई है, और मोहल्ले में तो जैसे बच्चों की दुनिया ही बदल गई है। सारी कॉलोनी, सारे ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे ढेर सारे बच्चे रहते हैं, वहाँ शोर ही शोर सुनाई देता है। एक और ख़ास बात बताती हूँ आपको। इस बार ना मैंने सोचा था कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँगी दशहरे की छुट्टियों में, लेकिन आप जैसे बहुत बच्चे हैं बच्चों जो मुझे दशहरे की छुट्टियों में कहीं जाने ही नहीं देते। क्योंकि मैं जहाँ भी रहती हूँ ना वहाँ आसपास के बच्चों को पता लग जाता है कि दशहरा आने वाला है और मनीषा दीदी रामलीला कराती हैं। तो बस अभी परसों के दिन ही मैं देख ही रही थी इंडियन रेलवे की साइट पे कि देखूं और कोई रिजर्वेशन करवा लेती हूँ, कहीं घूम कर आती हूँ। तब तक डोरबेल बज गई और कुछ बच्चे अचानक से हाजिर हो गए। दीदी नमस्ते, मैंने कहा नमस्ते। बोलो दीदी इस बार रामलीला होगी? मैंने कहा सोच के बताती हूँ। अब जब मैंने कहा सोच के बताती हूँ तो बच्चों ने ये नहीं कहा कि होगी या नहीं होगी, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया दीदी होगी। मैंने कहा अरे ये कैसे बोल सकते हो तुम कि होगी, ये तो मेरे ऊपर है मैं करवाऊँगी या नहीं करवाऊँगी। तो बोले नहीं, आप ही तो कहती हैं किताबें पढ़ना चाहिए, आप ही तो बताती हैं कि पौराणिक कथाओं का क्या महत्व है, और आप कह रही हैं कि आप कराएंगी कि नहीं कराएंगी, सोच के बताएंगी। तो मैंने तुरंत सबसे पहले नहा ना उन बच्चों से कहा अंदर आओ बैठो। और ख़ास बात जो मुझे आपको बतानी थी ना वो ये कि जब बच्चे अंदर आके बैठ गए तो फिर वो जाकर और बच्चों को भी बुला लाए। उनमें से एक बच्चा गया और देखते ही देखते मेरे बाहर वाले कमरे में ना बच्चों 15-20 बच्चे इकट्ठे हो गए। और ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। उनमें से एक बच्ची मुझसे कहती है दीदी मम्मा ने बोला है इस बार मुझे मंथरा मत बनाना। मैं उसका मुंह देखने लगी, फिर धीरे से एक और आवाज़ आई दीदी इस बार प्लीज़ मुझे कैकई मत बनाना। फिर मैं उसका मुंह देखने लग गई। मैंने कहा भाई अब रावण ना पीछे से बोल दे कि इस बार मुझे रावण मत बनाना, रामलीला ही नहीं कर पाएंगे बच्चे। अब ऐसे में क्या हुआ कि फिर मैंने उन बच्चों को ये बताया कि देखो आप लोग कितना भी सोचो कि रामलीला जब करेंगे तो मंच पर हम कैकई बनेंगे तो शायद हमारी अच्छी छवि ना दिखे। आप ये सोच सकते हो कि हम मंथरा बनेंगे तो हमें बच्चे चिढ़ाएंगे, पर नहीं बच्चों, रामलीला तो कभी पूर्ण ही नहीं होगी अगर उसमें रावण नहीं हुआ, अगर कैकई की भूमिका किसी बच्चे ने नहीं निभाई, अगर उसमें मंथरा नहीं आई तो वो रामलीला हम कैसे दिखाएंगे? कैसे आप सोच पाएंगे कि बिना मंथरा के रामलीला हो सकती है? राम ने इतने राक्षसों का जो वध किया उसका सबसे बड़ा कारण ही उनका वनवास था। तो बच्चों हर चीज़ में बहुत डीप थॉट्स होते हैं, हर चीज़ के पीछे बहुत कुछ होता है, इसलिए अगर आपके यहाँ भी उत्सवों की तैयारी चल रही है तो कभी ये मत सोचिए कि ये पॉजिटिव रोल है, ये नेगेटिव रोल है। और आज मैं इसीलिए ये बात आपसे करने आई हूँ क्योंकि मैंने कहा था ना, मुझे बाल सभा के विषय कभी सोचने नहीं पड़ते। मेरे साथ पूरे सप्ताह में ऐसा कुछ हो ही जाता है कि मुझे बाल सभा का विषय ना उचकते कूदते भांते मिल ही जाता है। जैसे ये बात आज मुझे मिल गई कि उत्सवों में बच्चों की क्या भूमिका होनी चाहिए, और मुझे उन बच्चों से एक बहुत बड़ी सीख मिली बच्चों कि कभी हम इंतज़ार ना करें कि मौका हमारे पास आएगा। क्योंकि मैं तो आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं तो इस बार दशहरे की छुट्टियों में घूमने जाने वाली थी और मैं रिजर्वेशन की तैयारी कर चुकी थी। अब आप सोचिए कि वो बच्चे ना आते तो ये मौका तो हाथ से फिसल ही गया था कि रामलीला नहीं होती। बहुत सारी जगह होती पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बच्चे नहीं करते क्योंकि वो बच्चे मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे मुझे एक बात जो सीख मिली वो ये कि हमें कभी किसी के आमंत्रण का इंतज़ार नहीं करना है कि कोई हमें बुलाएगा हम तब जाएंगे। अगर आपका उद्देश्य अच्छा और सच्चा है और आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो कभी आमंत्रण का इंतज़ार मत कीजिए, वरना ऐसे ही मौके हाथ से फिसलते रहेंगे। आप खुद जाइए और बात कीजिए जैसे उन बच्चों ने मुझसे बात की। अब फिर मैंने एक बच्चे को काम दिया कि ठीक है अब लिखना शुरू करो कि रामलीला में कौन क्या बनेगा। तो अब भरत के आगे मैंने लिखा मुदित बनेगा, फिर एक के आगे मैंने लिखा संकल्प बनेगा, फिर आई बात कि जटायु कौन बनेगा क्योंकि ये तो बहुत बड़ा रोल है। जटायु ने ही तो आपको मार्ग एक तरीके से आगे का बताया था। अब बच्चे बोले कि इसमें तो दीदी बहुत खर्चा होगा, जटायु बनने में तो बहुत खर्चा होगा। मैंने कहा कैसे खर्चा होगा भाई? तो बोले दीदी मम्मी कहती है कि वो ना अलग से ड्रेस नहीं लाएंगी कोई भी, आप बताइए हम कैसे जटायु बन सकते हैं। फिर मैंने उन बच्चों को बताया कि कैसे हम खुद ये क्रिएट करें, खुद कैसे अपने पंख बनाएं, खुद कैसे सोचें कि अगर हम जटायु बन रहे हैं तो उस पूरी भूमिका में हमें क्या क्या मुख्य करना है। तो हर चीज़ के लिए बाजार में खरीदने और खर्च करवाना अपने पेरेंट्स से बच्चों अच्छी बात नहीं है। आप ये देखिए कि घर में क्या सामान रखा हुआ है, उससे कैसे हम कोई भी भूमिका निभा सकते हैं। ये तो एक बहाना उठ गया है और मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये हर बात पे लागू होता है। क्योंकि आजकल बच्चों की फैंसी ड्रेस होती है, अचानक से बच्चे मम्मी को बोलते हैं मम्मी चलो, और आजकल जगह जगह दुकानें भी खुल गई हैं, है ना, कि अगर फैंसी ड्रेस है तो फैंसी ड्रेस के ही नाम से दुकान खुल गई है। आपको नेताजी बनना है तो ये ड्रेस, आपको ये बनना है तो ये ड्रेस, आपको वो बनना है तो वो ड्रेस, तोते वाली ड्रेस, मैना वाली ड्रेस। कब तक आप ऐसे ड्रेस खरीद खरीद के तोता मैना बनते रहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि बच्चों कभी खुद भी कुछ क्रिएट कीजिए, है ना, तभी आपकी क्रिएटिविटी आपके जीवन में उतरेगी, तभी आप सकारात्मक कुछ सोच पाएंगे, आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा। और जितना आप खुद से कामों को करते हैं आपका सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है बच्चों। और उत्सव हमें ये सब कुछ सिखाने आते हैं। मैं आपसे बिल्कुल बहुत ही सीरियस नोट पर ये बात कर रही हूँ कि हर वक्त बाज़ार में खड़े होकर तुरत फुरत में शॉपिंग करके अगर आप कुछ बन भी गए तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा तब आएगा जब आप खुद से कुछ बनाएंगे। तो फिर मैं बच्चों को लिखवा रही थी कि लिखो स्वर्ण मृग कौन बनेगा, तो आपको पता है जो बच्चा लिख रहा था उसने मृग को क्या लिखा, उसने लिखा मृग। अब आप कहेंगे सही तो है, नहीं नहीं सही है, मृग और मृग में बहुत अंतर है। मात्राओं की छोटी छोटी सी गलतियाँ हमें तब समझ में आती हैं बच्चों जब हम ये समझ पाते हैं कि हमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। तो कभी बड़ों से चेक करवा लीजिए, कभी आप खुद भी चेक कर लीजिए कि वो सही है कि नहीं, वरना बड़े होने तक आप मृग और मृग का अंतर नहीं समझ पाएंगे। अब फिर एक और गलती हुई उससे, वो गलती क्या हुई आपको पता है? वो गलती ये हुई कि उसको लिखना था पृथ्वी, उसने लिखा पृथ्वी। ये बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, मात्राओं की गलतियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, जैसे की और की में बहुत बड़ा अंतर होता है, बात बदल जाती है बच्चों इस एक ई की मात्रा से ए की मात्रा से। और हम बहुत प्राउडली ये कहने लगे अरे हम हिंदी में गिनती नहीं बता पाएंगे। क्यों क्यों नहीं बता पाएंगे? मैंने कहा लिखो, चलो नंबर लिख रहे हो ना आज, जो रामलीला के बच्चों के नंबर लिखोगे, एक नंबर दो नंबर, ये सब हिंदी में लिखोगे। तो बच्चों ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए, नहीं नहीं दीदी नहीं, ये नहीं होगा हमसे। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? उनको नौ लिखना नहीं आया हिंदी में, आपको पता है आज वो जब बाल सभा सुनेंगे ना तो बहुत नाराज़ होने वाले हैं सारे बच्चे कि आपने मेरी सारी बात बता दी। कोई बच्चा बोलेगा आपने हमारी शिकायतें कर दी। नहीं बच्चों, आप लोग भी सुन रहे हो ना, तो याद रखो ये शिकायतें नहीं है, आप लोगों के बहाने से बहुत सारे बच्चों से मैं बहुत सारी बातें कर लेती हूँ। तो ये 9 लिखना या 8 लिखना हिंदी में सीखिए। अभी तो संस्कृत की अगर मैं बात करूंगी तो आप कहेंगे नहीं, संस्कृत में तो बिल्कुल ही नहीं, उसे विषय की तरह मत पढ़िए। क्योंकि जब विषय की तरह पढ़ेंगे बच्चों, और कोई श्लोक जब प्रतियोगिता होगी और आप एक श्लोक याद करके सुनाएंगे और जीत भी जाएंगे, लेकिन संस्कृत को अगर आप बहुत अच्छे से समझ के पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आप उसे एक सिर्फ विषय नहीं समझेंगे, आप उसे एक भाषा, एक बहुत सुंदर भाषा की तरह पढ़ेंगे, तो आपको बहुत आनंद आएगा। आगे की बात करते हैं। उत्सवों की जब बात हो रही है तो कहीं पंडाल बन रहा होगा, कहीं पे प्रतियोगिता की तैयारी चल रही होगी, कहीं कहीं डांस की प्रैक्टिस चल रही होगी, जो मुझे बहुत बड़ी बात कहनी, कहीं गीतों की तैयारी चल रही होगी। क्योंकि नवदुर्गा उत्सव में बच्चों बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि डांस प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता होती है। मैं यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ बच्चों, जब डांस प्रैक्टिस चल रही हो और अपने लिए गाना चुनो तो हमेशा उत्सव की गरिमा का ख्याल रखना। ये मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम पूर्वक आप सब से कहना चाहती हूँ बच्चों। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो दुर्गा उत्सव हो या कोई भी उत्सव हो, ऐसे गाने चुनते हैं कि कई बार सिर झुकाना पड़ता है बच्चों। गाना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन वो गाना आप के माहौल के अनुकूल है या नहीं, बताइए गलत बात है क्या? नहीं ना। जैसे 15 अगस्त पर बच्चे तैयारी कर रहे थे तो एक बच्चे ने एक गाना चुना था, वो था तेरी मिट्टी में मिल जावा, है ना, गुल बन के मैं खिल जावा, कितना सुंदर गाना है। किसी ने चुना था ओ देश मेरे तेरी शान के सदके, कितना प्यारा गाना है, कितना अच्छा लग रहा है। अब एक बच्चे ने क्या चुना, तू मेरी आशिकी है तू मेरी जिंदगी है, बुरा वो भी नहीं है, गाना अच्छा हो सकता है लेकिन माहौल के अनुकूल नहीं है। तो जब उत्सवों में बच्चों की भूमिका की बात आएगी, तो अगर आप बाल सभा सुन रहे हैं तो इस बार आपने ये करना है कि आपने बिल्कुल ऐसे गाने नहीं चुनना जो माहौल के अनुकूल ना हो, क्योंकि ये सब भी हमें सीखना पड़ता है। हम कहते हैं ना कि पार्टी में जा रहे तो पार्टी के अलग कपड़े, हाँ खेलने जा रहे हैं तो भाई खेल के अलग कपड़े, ट्रैक सूट पहनते हैं कई लोग टी शर्ट, कई लोग ट्राउजर्स तो नहीं पहन के जाते हैं ग्राउंड पे, कई लोग ऐसा तो नहीं है कि अपना लोअर टी शर्ट पहन के पार्टी में चले जाते हैं। तो जब आप माहौल के हिसाब से बच्चों कपड़े पहनते हो, अभी जब दीपावली आएगी या आप दुर्गा उत्सव में भी जाओगे तो कोई लड़का कुर्ता पजामा पहना होगा, लड़कियां लहंगे पहनी होंगी, बहुत सुंदर सुंदर सूट पहन के जाओगे आप लोग, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उठोगे और ऐसे ही चल दोगे, तैयार भी होगे थोड़े से। तो क्यों नहीं हम माहौल के अनुरूप गाने चुनते, माहौल के अनुरूप अपने ऐसे गाने चुने कि डांस भी करें उस पर तो अच्छा लगे। तो आज मुझे ये सब आपसे बात करनी थी। एक और बात, वो तो बहुत ज़रूरी बात है। क्या होता है कि बच्चों की भीड़ इकट्ठी होती है, कॉलोनी में खेल रहे होते हैं और जैसे ही देखते हैं कि अब बस पंडाल में प्रसाद बंटने वाला है, ओ हो चिल्लाते हुए बच्चे आते हैं, एक बार और, एक लड्डू और, एक लड्डू और। पता चलता है जो वहाँ पर लोग हैं उनके लिए लड्डू ना बचे तो कैसा लगेगा बच्चों बताओ। तो पंडाल में जब आप प्रसाद लेने जाओ तो थोड़ा सा ये देखना कि सबके लिए बचा है कि नहीं। और ये बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना कि मिलजुल कर खाना चाहिए। पहले मेरी माँ कहती थी हिल मिल खाए सो गंगा नहाए, और अकेले खाए तो गधा बन जाए। तो क्या हुआ कि जब मेरी मौसी के बच्चे आए हुए थे तब मुझे लगा कि ये तो मेरा घर है, मैंने फटाक से सारा खाना सोचा कि मैं खुद खा लूँ, लेकिन जैसे ही माँ ने ये बोला तो सारे बच्चे बोलने लगे ओहो ये तो गधा बन जाएगी। और ऐसे करके मैंने उस दिन से ये प्रण लिया कि भाई हमें तो मिलजुल कर ही खाना है, गंगा नहाना है। मुझे याद भी नहीं है बचपन में हम गंगा नहा पाए या नहीं नहा पाए, लेकिन ये याद है कि इस एक कहावत ने ना मन में बहुत अच्छी भावनाएं भर दी कि नहीं अब तो जो खाना है शेयर करके खाना है। तो बच्चों अब आपको आगे की बात बताती हूँ। कहीं डांडिया हो रहा हो, कहीं गरबा हो रहा हो, कहीं भजन हो रहे हो, कहीं कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो, भाग जरूर लीजिएगा। क्योंकि इन उत्सवों में ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको मौके मिलते हैं। ये छोटे छोटे से मौके, ये छोटे छोटे से जो भूमिकाएं हैं आपकी बच्चों, ये आप में बहुत कॉन्फिडेंस देती हैं। आप अभी कॉलोनी के स्टेज पर गाओगे, फिर हो सकता है किसी दिन स्कूल में स्टेज पर गाओ, फिर हो सकता है शहर में पूरे आप अच्छे गायक बन जाओ। तो मौके जब भी मिले उन्हें भरपूर इस्तेमाल करो, क्योंकि यही मौके आपके आगे का भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और आज मैंने ना एक बहुत सुंदर किताब आपके लिए लेकर आई थी, वो किताब का नाम है सौर मंडल की सैर, और ये लिखी है देवेंद्र मेवाड़ी जी ने। पता है बच्चों, ये इतनी सुंदर किताब है, बच्चों को कैसे सौर मंडल की सैर कराई जाए, और वो भी बातों बातों में। मैं उत्सवों में आपकी भूमिका की बात करूंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको इसका एक हिस्सा सुनाती हूँ। अखबार में खबर पढ़कर चेतन चौंक उठा। टीवी पर भी बार बार उसी खबर की चर्चा आ रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। चेतन थोड़ी देर सोचता रहा और फिर विक्रम को फोन मिलाया। बोला, विकी, आज के अखबार में पढ़ा तुमने प्लूटो अब बौना ग्रह भी नहीं रहा? विक्रम ने जवाब दिया,

अजीब बात है ना, चेतन ने कहा। विक्रम बोला, बड़ा टेढ़ा मामला है चेतन। देखो, हमारे सभी साथी परेशान होंगे, उनका भी फोन आता होगा, या वो खुद आ जाएंगे। बोलो क्या करें, करना क्या है, परसों रविवार है, चलते हैं देवीदा के पास और पूछते हैं ये कैसी गड़बड़ है, हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, वो 8 क्यों हो गए और क्यों प्लूटो प्लूटोइड हो गया, प्लूटो ने क्या बिगाड़ा था खगोल वैज्ञानिकों का, चेतन ने गुस्से में कहा। बिल्कुल ठीक चेतन, ऐसा करो तुम भी साथियों को फोन से बता दो और मैं भी फोन करता हूँ, जो घर पर आ जाएंगे उन्हें तो बता ही देंगे, क्यों ठीक है ना। बिल्कुल ठीक है विक्की, ऐसा ही करते हैं। अच्छा तो फोन रखता हूँ, कहकर चेतन ने फोन रखा ही था कि शबनम और अरुण भी आ गए। वो दोनों कॉलोनी में हाल ही में आए थे, बाकी बच्चों के साथ नई दोस्ती हुई थी। अरुण ने चेतन से कहा, हेलो चेतन, जानते हो अब सौर मंडल में 8 ही ग्रह रह गए हैं। शबनम बोली, हाँ चेतन पता है, पहले 9 ग्रह थे। चेतन ने कहा, हाँ हाँ मुझे भी पता है, लेकिन अब तो प्लूटो भी प्लूटोइड हो गया है, आज के अखबार में खबर छपी, ये देखो। ये कहकर चेतन ने उन्हें अखबार दिखाया, फिर बोला, हम लोगों ने तय किया है, परसों रविवार है, हम सब देवीदा के पास चलेंगे, उनसे इस बारे में सारी बात पूछेंगे। शबनम और अरुण ने चौंक कर पूछा, देवीदा, देवीदा कौन है? चेतन हंसा, अरे बच्चों के दोस्त हैं, ये अपने आप को यही कहते हैं, कहते हैं मैं तो तुम लोगों का दोस्त हूँ, मुझसे विज्ञान की बातें पूछ सकते हो, पूछोगे तभी तो जानोगे, हम तो उनसे ही पूछते रहते हैं। तो क्या वैज्ञानिक हैं? शबनम ने पूछा। चेतन ने जवाब दिया, शबनम वो तो बस देवीदा हैं, पता है बीच बीच में वो गायब हो जाते हैं, जाकर वैज्ञानिकों से मिलते हैं, प्रयोगशालाओं और वैद्यशालाओं में जाते हैं, पुस्तकालयों में घंटों तक पढ़ते रहते हैं, और जानते हो अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर जाकर विज्ञान की तमाम बातों का पता लगाते हैं, वो विज्ञान के लेखक हैं। शबनम और अरुण आश्चर्य से चेतन की बातें सुन रहे थे। चेतन ने बताया, वो कहते हैं मैं तुम्हारा पुल हूँ, वैज्ञानिकों और तुम्हारे बीच का पुल, तुम्हें उनसे जोड़ता हूँ और उन्हें तुमसे, तुम्हें उनकी बातें बताता हूँ और उन्हें तुम्हारी, तुम्हारे सवाल, हमारे देवीदा हम सब बच्चों को प्यार करते हैं, तब तो हम उनसे ज़रूर मिलेंगे। शबनम और अरुण ने कहा, ज़रूर मिलो, ठीक है सुबह मिलेंगे, कहकर शबनम और अरुण चले गए। चेतन और विक्रम ने फोन करके सभी साथियों को बता दिया। रविवार की सुबह सभी बच्चे एक साथ देवीदा के घर पहुंच गए। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा खोलकर बच्चे चहकते हुए भीतर पहुंचे तो देखा देवीदा किताबों से घिरे हैं, एक और अखबार पढ़े हैं, हाथ में पेन लेकर वो कभी यहाँ और कभी वहाँ लिख रहे हैं। सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर सौरमंडल का दृश्य दिखाई दे रहा है। गार्गी बोली, देवीदा डोरबेल सुनकर आपने पूछा भी नहीं कौन है। देवीदा ने हंसकर कहा, मैं जानता हूँ तुम लोगों के अलावा कौन होगा, रविवार की सुबह मेरे घर पर सबसे पहले तुम ही आ सकते हो, और दोस्तों आज तो आना ही था तुम्हें, क्यों है ना, पहले सौरमंडल के ग्रहों की गिनती गड़बड़ा गई, बेचारा प्लूटो ग्रहों की बिरादरी से बाहर हो गया और अब वो प्लूटोइड हो गया है, ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए ही तुम लोग ज़रूर आओगे, मैं जानता था। तो बच्चों आगे की कहानी ना बाद में सुनाऊंगी मैं आपको, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त आप लोगों के मन में ढेर सारे सवाल उमड़ घुमड़ रहे होंगे, लेकिन कुछ अगले हफ्ते के लिए भी तो छोड़ना है, और अभी तो उत्सवों में आपकी भूमिका की बात भी करनी है। तो चलिए इस कहानी के अगले हिस्से के लिए अगले सप्ताह का इंतज़ार करिएगा। अब आगे बात करते हैं, तो हम कहाँ पर थे बच्चों? हम थे आपके मोहल्ले और कॉलोनी में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की बात पर। कहीं चित्रकला प्रतियोगिता हो रही होगी, कहीं निबंध प्रतियोगिता होगी, कहीं भाषण प्रतियोगिता होगी, कहीं कोई सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता होगी, और कहीं बच्चों के लिए चेयर रेस या कोई और खेल होंगे, और कहीं कहीं तो पूरा ही मंच बच्चों के लिए तैयार हो गया होगा या हो रहा होगा। अब ज़रा सोचिए कि अगर आपके मोहल्ले में ऐसा आयोजन हो रहा है तो आपकी भूमिका ये हो सकती है कि नहीं कि आप भाग लें। आपको पता है एक और भूमिका हो सकती है, एक और भूमिका हो सकती है कि आप हेल्पर बन सकते हैं, मददगार बन सकते हैं, जैसे कई बार

0: कॉलोनी में बड़े लोग जज बनते हैं ना, कि चित्रकला प्रतियोगिता में ये आंटी वो अंकल जज बनेंगे, लेकिन उनके लिए कागज पेन की व्यवस्था करना, उनके लिए ये व्यवस्था करना कि वहाँ जब वो पहुँचें तो वहाँ पानी रखा हो, वहाँ पे इस बात की व्यवस्था करना कि वहाँ पर थोड़ी सी ही चीज़ हो पर कुछ खाने की रखी हो, टेबल पर कपड़ा साफ सुथरा बिछा हो, ये जो बैक स्टेज होता है ना, ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं बच्चों, बहुत अच्छे भी होते हैं। इनसे आप खुद को भी व्यवस्थित करना सीखते हो, क्योंकि जब आप कोई भी प्रतियोगिता का पूरा व्यवस्था में लग जाते हो, तब आपको समझ में आता है कि किसी एक चीज़ को पूरा कराने में एक टीम की तरह काम करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अकेले आप पानी लाओगे या अकेले आप टेबल पर कोई साफ सा चादर बिछाओगे, वो काम आप कोई दूसरे बच्चे को दोगे। तो जब ये काम आप दूसरे बच्चे को दोगे तो वो आपके ही ग्रुप में कोई एक टीम लीडर बनेगा, कोई एक बहुत अच्छा सूचना अधिकारी बन जाएगा, इन्फॉर्मर बन जाएगा जो सबको अच्छे से सूचना देगा। एक और बहुत अच्छी बात होगी, आप नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस लिखना सीखिए, क्योंकि हर मोहल्ले में सूचना भी तो लिखी जाती है हर कॉलोनी में कि आज यहाँ पर दुर्गा उत्सव का आयोजन होगा, आप सबको शाम को 7 से 9 उपस्थित रहना है। उसमें आपकी भाषा काम आएगी, उसमें आपकी जो लेखन कला है वो काम आएगी। तो नोटिस बोर्ड पर जो नोटिस चिपकाने हैं उसको लिखने की भी आप कोशिश कीजिए। हो सकता है आंटी अंकल मना करें कि नहीं नहीं हर बीच में तुम लोग मत आओ, लेकिन उसका बुरा मत मानना बच्चों। वो इसलिए भी हो सकता है कि ये कोशिश आप पहली बार कर रहे हो, लेकिन जब उन लोगों को भरोसा हो जाएगा कि हमारे मोहल्ले के या हमारी कॉलोनी के बच्चे तो देखो कितने अच्छे हैं, कि सब काम खुद करते हैं, कितने जिम्मेदार बच्चे हैं। जैसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको बताती हूँ, जब कोई डांस प्रतियोगिता होती है तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बच्चे ने जिस गाने पर डांस किया उसके बाद अगले बच्चे का गाना आने तक, वो जब तक गाना बदलवाती है, गाना चुनती है या फिर वो पेन ड्राइव लाती है, उसकी व्यवस्था होती है, तब तक का वो मंच बहुत खाली खाली सा लगता है बच्चों। उस वक्त आप में से कोई एक एंकरिंग कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? कितनी मज़ेदार बात होगी कि आप जाओ और उस वक्त पे आप पूरा सोच के रखो कि जब तक कोई बच्चा अपना दूसरा गाना लगवाएगा या पेन ड्राइव लगवाएगा या वो कोई हो सकता है कि जो सोशल मीडिया पे गाने होते हैं उनमें से सिलेक्ट करेगा, तब तक उस खाली समय में आप क्या करोगे? तो पता चलेगा कि आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर बन जाओगे, क्योंकि आप किसी को ये ड्यूटी दोगे कि उस वक्त तुम जाकर ये चुटकुला सुनाओगे या ये पहेली सुनाओगे, पूछोगे या कुछ कहानी सुनाओगे या कोई कविता सुनाओगे। तो इस तरीके से बच्चों आप एक पूरा आयोजन ऑर्गेनाइज कर लेते हो, है ना? और एक बात और कहनी थी मुझे, बहुत ज़रूरी बात है बच्चों, कि आप प्रतियोगिता में भाग लीजिए, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि आप हर प्रतियोगिता जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर हार जाएं तो मुंह लटका कर मत आइएगा, हाँ। और मम्मा से ये तो बिल्कुल ही मत कहिएगा कि मम्मा वो जो आंटी उस प्रतियोगिता की निर्णायक थी वो तो आपकी दोस्त थी, उन्होंने मुझे फिर जिताया क्यों नहीं। ये तो और भी गंदी बात हो जाएगी, आप बेईमानी करोगे, है ना? तो ऐसी कोई उम्मीद मत लगाना बच्चों, बस भाग लेना ज़रूरी है, इस बात को समझिए। उस प्रतियोगिता में आप जीतें ना जीतें ये छोड़ दीजिए, है ना? कर्म करते जाइए, फल की इच्छा बिल्कुल मत कीजिए। ये भी मैंने आपको पौराणिक कथाओं के महत्व में समझाया था और सुनाया भी था। तो अब जबकि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो चुकी हैं और मुझे पूरी तरह से पता है कि अब जो दुर्गा उत्सव आने वाला है उसमें बड़ी छोटी कोई ना कोई जिम्मेदारी आप इस बार ज़रूर लोगे। चाहे आप सबको पानी पिलाने की जिम्मेदारी लो, चाहे आप इस बात का ध्यान रखो कि अगर कोई व्रत है, उपवास है, तो उसके लिए आप जो वहाँ पर ऑर्गेनाइज़र है उनसे बात कर लीजिए कि ऐसे लोग आएंगे तो उन्हें हम क्या खाने में दे सकते हैं, ये भी बात कर लीजिए कि बच्चों के लिए वहाँ क्या इंतज़ाम रहेंगे, है ना? तो इतनी सारी बातों के बाद अब छोटे छोटे से संकल्प ले लें जो आप हमेशा लेते हो मेरे साथ, हुँ? चलिए तो एक बहुत प्यारा सा संगीत आप सबके लिए। आंखें बंद कर लीजिए, शांति से सोचिए कि आने वाले उत्सव में हमारी क्या भूमिका होगी। आज का पहला संकल्प है, हम सभी बच्चों के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे। आज का दूसरा संकल्प है, हम किसी ना किसी प्रतियोगिता में भाग जरूर लेंगे। प्रतियोगिता में हार और जीत के निर्णय पर बहुत सोच विचार नहीं करेंगे। जो भी आयोजन हो रहा है उसमें छोटी बड़ी कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। आखिरी और सबसे जरूरी संकल्प, इस पूरे उत्सव भरे माहौल में हम सब बहुत खुशी खुशी भाग लेंगे, बहुत खुशी खुशी शामिल होंगे। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़िए और अपनी आंखों पर लगाइए और ये बताइए कि जब आंखें बंद करके खोलते हैं तो पहले से और ज्यादा साफ दिखाई देता है ना? बताए क्यों? क्योंकि आपने आंखों को थोड़ा आराम दिया और थोड़ा मन को भी आराम दिया। जब हम धीमी आवाज में प्यार से, धैर्य से थोड़ी देर रुक कर, ठहर कर कुछ सोचते हैं और इस तरह से आंखों को आराम देते हैं, तो हमारा दिमाग और हमारी आंखें थोड़ा तेजी से काम करते हैं, है ना? तो दिन में किसी भी वक्त जब आपको समय मिले, बहुत छोटा सा ध्यान लगाइए, भले वो एक मिनट का हो, कुछ सेकंड्स का ही हो, पर मेडिटेशन की आदत डालिए, ठीक है? और अब की बार जो उत्सव शुरू हो रहे हैं दुर्गा उत्सव से, उसमें खूब खुश रहिएगा, खूब प्यार से रहिएगा, खूब मजे करिएगा और जी भर के जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बचपन के ये दिन हमेशा याद आएंगे आपको, ठीक है? अब चलो, अगले सप्ताह मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दे दीजिए, कह दीजिए कि अब आप जाइए तो मैं चली जाऊंगी स्टूडियो से। अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और खूब पढ़ाई कीजिए। हाँ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय था उत्सवों में बच्चों की भूमिका। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामाजी से चर्चा।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थल सेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद अदिति।
2: पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में रिक्रूटमेंट की क्या प्रक्रिया रहती है, जिसके तहत हमने भारतीय थल सेना के बारे में चर्चा की थी। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूंगी कि भारतीय एयरफोर्स वायु सेना में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर किस तरह का रहता है।
3: इंडियन एयरफोर्स विद द मोटो टच द स्काई विद ग्लोरी,
2: जी, नभम स्पृशम दीप्तम,
3: बिल्कुल। ये वर्ल्ड की जो है चौथी लार्जेस्ट एयरफोर्स है,
2: जी,
3: और बहुत छोटे स्तर से शुरू होके, यानी कि 1932 में इट सिर्फ 19 सिपाही, 6 आरएएफ ट्रेंड ऑफिसर्स और तकरीबन 4 वेस्टलैंड व्यापति के साथ शुरू हुई थी,
2: जी।
3: और आज ये जो है वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है, जो कि हाईली टेक्निकल और स्पेशलाइज्ड फाइटिंग फोर्स है,
2: जी।
3: इसमें जो रिक्रूटमेंट होता है वो एज ए ऑफिसर और एज ए जवान दोनों उसमें होता है, जैसे कि हमने आर्मी में भी देखा
2: जी।
3: था। और एयरफोर्स में प्राइमरली 3 ब्रांचेस होती हैं, जो कि फ्लाइंग ब्रांच होती है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल होती है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल होती
2: जी।
3: है। तीनों में जो है ऑफिसर और जवान लेवल पे, मतलब कोई भी उसको इनको ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि अगर हम शुरू से देखेंगे कि फर्स्ट एंट्री जो होती है एज ए ऑफिसर, अगर हम बात करें
2: जी,
3: तो 10+2 लेवल पे नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू इच्छुक छात्र जो है एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता है। जैसे आपको हमने आर्मी के दौरान भी बताया था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के कैडेट ट्रेंड होते हैं
2: जी।
3: तो उसी तरह से इसमें भी कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है कि जो इसमें जाने के इच्छुक हैं उनकी जो एज है
2: जी,
3: वो 16.5 से ज्यादा होनी चाहिए और 19.5 से कम होनी
2: जी
3: चाहिए। इसका एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है, क्योंकि जनवरी और जुलाई में कोर्स शुरू होते हैं। इसमें एक बात जो अहमियत रखती है वो ये है कि 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना कंपलसरी है
2: जी,
3: क्योंकि ये टेक्निकल आर्म है, तो इसमें इस बात का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और जो फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए एनडीए ज्वाइन करते हैं, उनको जेएनयू से बीटेक की डिग्री मिलती है
2: जी।
3: और जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल होते हैं उनको बीएससी की डिग्री एनडीए में मिलती है
2: जी।
3: इसी तरह से जब अगर हम दूसरी एंट्री देखते हैं
2: जी,
3: जो कि ग्रेजुएट लेवल पे होती है, ग्रेजुएट लेवल पे कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम होता है
2: जी,
3: जो कि अगेन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए होता है। इसमें एज लिमिट 20 से 24 साल की होती है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगेन इसमें जो कंपलसरी चीज है वो ये है कि 10+2 आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया होना चाहिए। डिग्री जो है किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है क्योंकि नॉन टेक्निकल के लिए जो है टेक्निकल डिग्री होना जरूरी नहीं है। या आपका बीटेक बी का जो है कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो यूपीएससी के थ्रू नवम्बर और अगस्त में पब्लिश होता है। आप यूपीएससी की जो वो साइट है upsc.gov.in पे भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। समय समय पर जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स में एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी इसके बारे में जानकारी साझा करी जाती है। नेक्स्ट एंट्री जो एयरफोर्स में ऑफिसर के लिए होती है दैट इज एनसीसी के थ्रू
2: जी
3: होती है। एनसीसी की एक स्पेशल एंट्री होती है जो कि एयरफोर्स एनसीसी एयरविंग में जिन्होंने सी सर्टिफिकेट किया होता है
2: आर्मी में भी आपने बताया था
3: सेम इसी तरह की एंट्री होती है। ये एंट्री अगेन मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है और इसमें भी परमानेंट कमीशन मिलता है। और एक जो बात ध्यान रखने वाली है जैसे इसमें एज लिमिट 20 से 24 साल है लेकिन जो युवक
2: जी
3: या युवतियां कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर होते हैं
2: जी
3: डीजीसीए एविएशन के
2: जी,
3: उनके लिए ये जो एज लिमिट है वो 26 साल
2: जी, उनको 2 वर्ष का रिलैक्सेशन
3: दो वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। और इसमें भी जो एजुकेशन जो है टेक्निकल साइड से होना जरूरी है, इन द सेंस आपका पीसीएम होना जरूरी है और ग्रेजुएशन जो है किसी फील्ड में जो है यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या बीटेक या बी होना चाहिए। और इसमें एक और जो क्वालिफिकेशन जिसमें जिससे कि जा सकते हैं एक एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स होते हैं जिसमें कि अगर कैंडिडेट ने सेक्शन ए और बी के एग्जाम क्लियर करे हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते कि उनके 60% या उससे
2: टेक्निकल सर्विस के लिए
3: उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जैसे क्योंकि एनसीसी के थ्रू है तो एनसीसी का एयरविंग का सी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी होता है और जब ये अप्लाई कर रहे हैं तो उसके 2 वर्ष के अंदर अंदर ही उन्होंने सी सर्टिफिकेट पास किया होना चाहिए। इसका एडवर्टाइजमेंट आईएफ यानी कि इंडियन एयर फोर्स की तरफ से आता है जिसमें कि वो एनसीसी की स्पेशल एंट्री रिलीज करते हैं और ये जून और दिसंबर में होता है।
2: भारतीय वायुसेना और थल सेना का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो एक तरह का ही है, बस यहाँ पे एक स्पेशलाइज वो ये आ जाती है शर्त कि जो कैंडिडेट्स टेक्निकल सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स विषय अनिवार्य हैं।
3: बिल्कुल आपने सही बोला। और उसके साथ में कुछ जो टेक्निकल सर्विसेस होती हैं उसमें हम देखेंगे कि आगे चल के जैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वालिफाई होते हैं जो एविएशन इंजीनियरिंग में जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसी तरह से जो नेक्स्ट इनकी एंट्री होती है एक एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होता है मेन एंड वुमेन के लिए। इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी कर सकते हैं। और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है जैसे कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन सेम है 10 साल शॉर्ट सर्विस रहता है एक्सटेंडेबल अप टू नेक्स्ट 4 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस एंड आपकी चॉइस के ऊपर है। एज लिमिट इसकी अगेन सेम 20 to 24 ईयर्स होती है और जैसे कि हमने पहले देखा था अगर फ्लाइंग में अगर आपके पास कमर्शियल पायलट होल्डर हैं तो उनके लिए 2 साल का रिलैक्सेशन रहता है
2: जी।
3: इसी तरह से अगर हम आगे देखेंगे तो ग्राउंड ड्यूटी में भी टेक्निकल ब्रांचेस में भी सेम एयरफोर्स एएफ कैट दैट इज एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है और ये उसी कैटेगरी में जो है ग्राउंड ड्यूटी में भी टेक्निकल ब्रांचेस में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए ऑफिसर। अगेन सेम एज ग्रुप जो है इसका 20 से 26 साल रहता है टेक्निकल सर्विसेज के लिए और अगेन ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है दोनों के लिए मेन एंड वुमेन दोनों इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आईएफ एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और जून और दिसंबर में रहता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है तो joinindianairforce.nic.in पे आप चेक कर सकते हैं।
2: कर्नल साहब ये तो सारी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में हमने डिस्कशन किया, आर्मी के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने शारीरिक क्षमताओं की भी बात की थी, एयरफोर्स में कुछ ऐसा क्राइटेरिया रहता है क्या?
3: बिल्कुल रहता है, शारीरिक क्षमताएं का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लेट डाउन है
2: जी।
3: और इसके अलावा मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड्स लेट डाउन है। ये जो अभी मैंने आपको साइट बताई है joinindianairforce.nic.in इसके ऊपर आपको पूरी की पूरी जो है डिटेल्स अवेलेबल रहती हैं। हम यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा टेक्निकल वो रह जाएगा कि कंफ्यूजन होगा। इसमें ज्यादा अच्छा है कि अगर आपको जाके इसको देखेंगे तो अपने हिसाब से, जैसे मेन वेमेन का अलग अलग है, इवन प्रादेशिक उसमें अलग अलग होता है, टेक्निकल्स के लिए अलग है, नॉन टेक्निकल्स के लिए अलग है, फाइटर पायलट्स के लिए अलग है, तो हर एक को अपने रुचि के हिसाब से, अपनी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से वो इसको देख के देख सकता है।
2: तो यानी कोई युवक या युवती भी अगर वायुसेना में जाने के इच्छुक हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है 14-15 वर्ष की आयु से ही अपनी मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और पढ़ाई लिखाई पर बाकायदा ध्यान दें और कोशिश करें कि जितना ज्यादा हो सके वो क्राइटेरिया को फुलफिल करें।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं मिलता है और मेहनत करना बहुत जरूरी है। सिर्फ ये सपना देखना कि कुछ हो जाएगा तो वैसा नहीं होता है, और आजकल बहुत ही कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड है तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जितना हो सके अपनी पूरी क्षमता इसमें लगाएं।
2: कर्नल साहब, भारतीय वायुसेना में कंपटीशन जो है, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके लिए आप हमारे श्रोताओं को किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे?
3: देखिए, अगर आप में ज्वाइन करने की एक इच्छा है तो यकीन मानिए कि आप अपने आप उसके बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे और उसमें अपने आप को प्रिपेयर भी करेंगे किसी भी चीज में। जहां तक मैं समझता हूँ कि जब आपने एक बार ठान ली है तो आपको कोई रोक नहीं सकता अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए। आज आपके पास बहुत सारे साधन हैं, इंटरनेट है आपके पास अवेलेबल है, जगह जगह ऑफिसेस हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, जहां पे जानकारी काफी जल्दी और काफी अच्छे से हासिल हो जाती है। आज से 20-30 साल पहले ऐसा नहीं था, जब हम लोग थे तो हम बड़ी मुश्किल से जानकारी हासिल होती थी, लेकिन फिर भी उत्साह उस समय भी उतना ही होता था और सफलता भी मिलती थी। तो माय एडवाइस टू एवरीबॉडी विल बी दैट स्टार्ट अर्ली, बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंट एंड वर्क इन अ रेगुलर मैनर। यानी कि जल्दी शुरुआत करिए, पेशेंस रखिए, रेगुलर एफर्ट्स लगाइए, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी। अभी इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं अदिति, तो देखें ग्राउंड ड्यूटी पे नॉन टेक्निकल ब्रांचेस भी होती हैं जिसमें कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एज अगेन 20 से 26 साल होनी चाहिए और ये दोनों के लिए लागू होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल के लिए। इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। इसकी जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे इसमें ना वेपन सिस्टम्स ब्रांच होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होती है, देन उसके बाद अकाउंट्स ब्रांच रहती है एंड लॉजिस्टिक ब्रांच रहती है, एजुकेशन है, मेटरोलॉजी है। अगेन इन सभी ब्रांचेस में थोड़ा थोड़ा इनका डिफरेंस होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। जैसे कि अगर आप अकाउंट्स में जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू बी अ कॉमर्स ग्रेजुएट,
2: बिल्कुल सही।
3: तो अपनी क्वालिफिकेशन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एंट्रीज रहती हैं आप जो है जिसमें एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके तीन ब्रांचेस होती हैं और तीन ब्रांचेस में जो है दैट इज फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच में बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं। देन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल्स में जो जाते हैं जिसमें मैकेनिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की क्वालिफिकेशन वाले लोग जा सकते हैं। एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में जो है इवन बीएससी एंड अदर जिसमें पास किया होता है वो भी जा सकते हैं, जिसमें कि वेपन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन और मेड डिपार्टमेंट रहता है।
2: क्या भारतीय वायुसेना में भी यह अग्निवीर योजना लागू होती है?
3: अभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में अदर देन ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट है, जवान लेवल पे जो रिक्रूटमेंट है वो अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही होता है। तो इसमें भी अग्निवीर वायु हैं और अग्निपथ स्कीम जो है वो तीनों के लिए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी तीनों के लिए कॉमन है। इसमें भी ये टूर ऑफ ड्यूटी है 4 साल के लिए, 4 साल के बाद जो है 25%
2: वही इंटेक
3: रहेगा एंड सबको एक लमसम जो पैकेज मिलेगा दैट इज 0.04 लाख का जो है, और जैसे आर्मी में था उसी तरह से इनका जो है कंपनसेशन बंद होगा और कैंटीन फैसिलिटीज हैं और हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं, जब तक वो सर्विस में रहते हैं 4 साल तब तक रहेगी, उसके पश्चात उनको ये सर्विसेज नहीं मिलेंगी, एक सर्विसमैन का स्टेटस नहीं रहेगा। और जो भर्ती है सेम जैसे आर्मी में है वैसे इसमें भी है, लेकिन हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, ये टेक्निकल आर्म होने के कारण इसमें जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश से पढ़ना जरूरी है, साथ में इंग्लिश भी कंपलसरी है। तो इनके पास मैथ, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री होना चाहिए, इसके अलावा जो है इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें ये 10+2 के अलावा जो 3 साल का जिन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया होता है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस से किसी भी स्ट्रीम से जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं उसमें से अगर ये लोग क्वालिफाई होते हैं तो वो भी आ सकते हैं। अगेन उसमें भी एक चीज ध्यान देने वाली है कि 50% मार्क्स इसमें इंग्लिश में जरूर होने चाहिए।
4: जी।
3: अगर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है डिप्लोमा का तो, और इसके अलावा जो है कुछ वोकेशनल, जैसे 2 साल के वोकेशनल कोर्सेज होते हैं तो वो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अग्निवीर स्कीम में कर सकते हैं। इसके बारे में मैं समझता हूँ कि वो क्लैरिफिकेशन लेने के लिए, ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए सेम ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स साइट पर जाके जो है चेक कर सकते हैं, और कुछ अगर क्लैरिफिकेशन है तो वो ले सकते हैं। और रिक्रूटमेंट का जो इनका नोटिफिकेशन आता है वो रिक्रूटिंग ऑफिस एयरफोर्स की तरफ से जारी होगा।
4: धन्यवाद करण साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के लिए बताई। श्रोता है जो बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि उनके कई उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल गया, साथ साथ ये भी आशा है कि उन्हें प्रोत्साहन भी मिला होगा कि किस तरह से तैयारी शुरू करें। और जैसा कि आपने बताया कि 16.5 वर्ष मिनिमम एज होती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो युवा श्रोता हैं वो अभी चेत भी गए होंगे कि हर लेवल, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पर प्रयास करें और अपने आप को तैयार करें रिक्रूटमेंट के लिए, अगर वो इच्छुक हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। हमें आशा है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और आप हमें अगले अंक में भारतीय जल सेना में रिक्रूटमेंट से संबंधित जानकारियां साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू अदिति, जय हिंद श्रोताओं।
5: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है अदिति गौड़ को, ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल, थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
7: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुन सकते हैं 7:00 से रात्रि 10:00 तक। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास गाथा, हर घर तिरंगा अभियान। भारत का राष्ट्रीय ध्वज। किसी राष्ट्र का राष्ट्रीय ध्वज उसकी संस्कृति, परंपरा और आत्मगौरव का परिचायक होता है। भारत में ज्ञात ऐतिहासिक काल से ध्वजों का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता रहा है। आधुनिक भारत के इतिहास में उपनिवेशिक शासन के आधिपत्य और उसके विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में ध्वजों का अपना विशिष्ट महत्व रहा है। अठारह की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय समाज का सामूहिक प्रतिरोध और भी घनीभूत हुआ और इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में ध्वज की आवश्यकता भी गहनता से अनुभव की जाने लगी। ध्वज की विकास गाथा 1905। 20वीं सदी के प्रारंभ में लॉर्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी कार्यों के विरुद्ध न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रवाह तीव्र हुआ और इसी समय 1905 में मार्गरेट नोबल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, जो 19वीं सदी के महान मनीषी स्वामी विवेकानंद की युवा आयरिश शिष्या थीं, की देखरेख में कलकत्ता में निवेदिता कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने एक राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया। इस ध्वज में वज्र का अंकन किया गया था, जो शक्ति का प्रतीक है। इसके केंद्र में श्वेत कमल चित्रित किया गया था, जो पवित्रता का प्रतीक है। यह माना जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षितिज पट्टियां थीं, जिनके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस ध्वज को सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा द्वारा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध लोकप्रिय एवं सामूहिक प्रतिरोध के एक ठोस प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया था। ১৯০৭ मैडम भीकाजी कामा और उनके सहयोगी निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह ने अगस्त 1907 में जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में हिस्सा लिया और इसके अधिवेशन स्थल पर ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि गणों के मध्य एक भारतीय ध्वज फहराया, जो एक विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था। इसे भारत की स्वतंत्रता का ध्वज नाम दिया गया। ১৯১৭ डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में स्वराज की आकांक्षा से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसके महत्वपूर्ण भाग के रूप में एक नया झंडा अपनाया। इसमें 5 क्षितिज लाल और 4 हरी क्षितिज धारियां थीं और सप्तर्षि विन्यास में 7 तारे थे। एक सफेद अर्धचंद्र और तारा शीर्ष के एक कोने पर स्थित था। अप्रैल 1921 में महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में एक भारतीय ध्वज की आवश्यकता के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा, जिसमें केंद्र में चरखे के साथ एक ध्वज का प्रस्ताव था। उल्लेखनीय है कि ध्वज में चरखे के अंकन का विचार लाला हंसराज द्वारा रखा गया था और गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को लाल और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर चरखे के साथ एक ध्वज डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया। हालांकि गांधी जी चाहते थे कि ध्वज को 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन इसे समय पर तैयार नहीं किया जा सका, अतः इस विलंब का सदुपयोग करते हुए इस ध्वज में सफेद रंग और जोड़ दिया गया। १९२९ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार के दौरान ब्रिटिश विरोधी विचारों को नई धार मिली। इसके साथ साथ ध्वज में भी परिवर्तन आए। कराची में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किए
तीन रंगों के ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया तथा इस तथ्य पर बल दिया गया कि झंडे की कोई धार्मिक व्याख्या नहीं होनी चाहिए। लाल रंग बलिदान का, श्वेत रंग पवित्रता और हरा रंग आशा का प्रतीक माना गया। देश की प्रगति का प्रतीक चरखा इसके केंद्र में जोड़ा गया। गांधी जी ने स्वीकार किया था कि ध्वज में यह परिवर्तन राष्ट्रीय आंदोलन में विशिष्ट आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया थी। ऐसा माना गया कि नया झंडा राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ जन आंदोलन के प्रयास अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण चिन्ह हो सकता है। वर्तमान स्वरूप। झंडे के वर्तमान स्वरूप को मान्यता तब मिली जब 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रंग और उनका महत्व वही रहा। शीर्ष पर केसरिया शक्ति और साहस का प्रतीक है, बीच में सफेद शांति और सत्य का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे हरा भूमि की उर्वरता, विकास और शुभता का प्रतीक है। ध्वज पर प्रतीक के रूप में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र ने चरखे को प्रतिस्थापित किया। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार ध्वज के मानक। राष्ट्रीय झंडे में तीन रंगों की पट्टियां होंगी जिनमें समान चौड़ाई वाले तीन आयताकार पट्टियां होंगी। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होगी और सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की तथा बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी, जिसके बीच में समान अंतर पर 24 धारियों वाले नीले नेवी ब्लू रंग के अशोक चक्र का एक डिजाइन होगा। अशोक चक्र अधिमान्यता स्क्रीन प्रिंटेड या अन्यथा छपा हुआ या स्टेंसिल किया हुआ या उचित रूप से कड़ा हुआ होगा और सफेद पट्टी के केंद्र में झंडे के दोनों ओर से स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रामक 2 जनवरी 2020 पब्लिक पार्ट 3 दिनांक 30 दिसंबर 2021 द्वारा ध्वज संहिता में किए गए संशोधन के उपरांत अब भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से कटा हुआ और हाथ से बनाए गए खादी के अलावा मशीन निर्मित सूती, पॉलिस्टर, ऊनी, सिल्क, खादी, बंटिंग कपड़े से भी बनाया जा सकेगा। राष्ट्रीय झंडा आकार में आयताकार होगा। झंडे की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई 3:2 होगी। भारतीय ध्वज संहिता 2002। भारतीय ध्वज संहिता 2002 26 जनवरी 2002 से लागू हुई है और इसने ध्वज के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति दी। भारतीय ध्वज संहिता इस तरह के पिछले सभी कानूनों, परंपराओं और प्रथाओं को एक साथ लाने का एक प्रयास था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। तीसरे भाग में केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके अनुषंगी संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी दी गई है। इसमें उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। भारतीय ध्वज संहिता स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए तथा इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आधिकारिक प्रदर्शन के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप और उनके चिन्ह वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है। संविधान का भाग 4A। संविधान का भाग 4A जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल है 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे। झंडे के रचयिता पिंगली वेंकैया।
पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के

के एंग्लो बोअर युद्ध में भाग लिया था। यहीं वह गांधी जी के संपर्क में आए और उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। 1906 से 1911 तक पिंगली मुख्य रूप से कपास की फसल की

असहयोग आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में जबलपुर पहुंचे हकीम अजमल खां और अन्य नेताओं के सम्मान के साथ साथ जबलपुर नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराने की रणनीति बनाई गई। कमिश्नर ने उस तिरंगे को उतरवा दिया और उसका पुलिस के द्वारा सार्वजनिक निरादर करवाया गया। इस अपमान के विरोध में तपस्वी सुंदरलाल नाथूराम मोदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरहरि अग्रवाल आदि ने जुलूस निकाला, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया, लेकिन दूसरे जत्थे ने विक्टोरिया टाउन हॉल पर झंडा फहरा ही दिया। राष्ट्रीय नेताओं ने इस सत्याग्रह के महत्व को समझकर अखिल भारतीय स्तर पर इसे मनाने हेतु नागपुर को केंद्र के रूप में चुना तथा जमनालाल बजाज के नेतृत्व में इसकी तैयारियां प्रारंभ की गईं। इस सत्याग्रह का नेतृत्व चक्रवर्ती राज गोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने किया। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू इस सत्याग्रह के साथ जबलपुर में पुनः झंडा सत्याग्रह का आयोजन हुआ। सरोजनी नायडू और मौलाना आजाद की जबलपुर में उपस्थिति में टाउन हॉल पर फिर तिरंगा लहरा दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर सुंदरलाल को 6 माह की सजा दी गई। यह शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसने राष्ट्रवादी झंडे को फहराने और नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों की अवहेलना के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती दी। झंडे के लिए बलिदान लाल पद्मधर सिंह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक लोमहर्षक घटना है जब लाल पद्मधर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में आत्मोत्सर्ग किया। लाल पद्मधर सिंह का जन्म 1913 में मध्य प्रदेश के सतना जिले के कृपालपुर गांव में हुआ था। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे तथा हिंदू बोर्डिंग हाउस में उनका निवास था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को छात्रों के जुलूस का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने 12 अगस्त को कलेक्ट्रेट को अंग्रेजों से मुक्त कराने और तिरंगा फहराने की योजना बनाई, लेकिन इसकी भनक अंग्रेजी हुकूमत को लगते ही कलेक्ट्रेट तक आने वाले रास्ते पर पुलिस तैनात कर दी गई। 12 अगस्त को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन से छात्र छात्राओं का जुलूस तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुआ। इसका नेतृत्व लाल पद्मधर सिंह कर रहे थे। लाल पद्मधर सिंह हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़े तो घोड़े पर सवार कलेक्ट्रेट डिक्शन ने उन्हें गोली मारने का आदेश दिया। भारत माता की जय के नारे लगाता हुआ यह युवा क्रांतिकारी ब्रिटिश शासन के दमन के चलते वीरगति को प्राप्त हुआ। तिरंगे झंडे के संबंध में महत्वपूर्ण नियम तथ्य। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सर्वोपरि है। जब भी तिरंगा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। तिरंगे को फहराते समय स्फूर्ति और उत्साह होना चाहिए और उतारते वक्त सम्मान और आदर प्रदर्शित होना चाहिए। झंडा दिए गए मानक आकार का होना चाहिए। इसमें केसरिया पट्टी सदैव ऊपर की ओर होनी चाहिए। किसी सभा में तिरंगा फहराते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंच पर उपस्थित लोगों के दाहिनी ओर तिरंगा हो। किसी दूसरे झंडे या पताका को कभी भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाता, ना ही कभी इसे तिरंगे के बराबर रखा जाता है। ऐसा तिरंगा जिस पर कुछ लिखा या छपा हुआ हो कभी भी नहीं फहराया जाना चाहिए। तिरंगे का व्यावसायिक इस्तेमाल गलत है। अगर कोई व्यक्ति तिरंगे को किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के आगे झुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो या फिर किसी मृत व्यक्ति, सैन्य बलों के शहीद जवानों के अलावा, के शव पर डालता हो तो इसे तिरंगे का पान माना जाता है। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर तिरंगे को आधा झुका दिया जाता है। किसी सामान, बिल्डिंग वगैरह को ढकने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसी भी स्थिति में राष्ट्रीय ध्वज जमीन पर स्पर्श नहीं होना चाहिए। कभी भी फटा या मैला तिरंगा नहीं फहराया जाता है। जब तिरंगा फट जाए या मैला हो जाए तो उसका उपयोग नहीं किया जाता। ध्वज संहिता की धारा 2.211 में यह इंगित किया गया था कि जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है
तब जहां तक संभव हो इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए, चाहे मौसम की स्थितियां कुछ भी हों। परंतु अब ध्वज संहिता में 20 जुलाई 2022 को किए गए संशोधन, जो इसके भाग 2 के पैरा 2.2 के खंड 11 में किया गया है, के अनुसार अब जहां झंडा खुले में प्रदर्शित किया जाता है या किसी नागरिक के घर पर प्रदर्शित किया जाता है, इसे दिन रात फहराया जा सकता है।

ये था आज का विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास गाथा। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।

0: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और अब समय है हमारे कार्यक्रम देश के संस्थान का। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक यानी भरोसे की बैंकिंग की।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: दादू, आप अलमारी में सुबह सुबह क्या ढूंढ रहे हैं?
2: अरे बिटिया, एक जरूरी कागज ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी दादी की पुरानी बैंक पासबुक यहीं कहीं रखी थी।
1: पासबुक? दादी की? इतनी पुरानी?
2: हाँ, बहुत पुरानी है। हाँ, देखो मिल गई।
1: अरे वाह दादू, इसमें तो हाथ से लिखी हुई एंट्रीज भी है, पर अब तो सब कुछ मोबाइल में दिखाई देता है।
2: बिटिया, समय बदलता है तो चीजों का तरीका भी बदलता है। कभी बैंक की हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए पासबुक हाथ में लेकर शाखा जाना पड़ता था।
1: दादू, बैंक की शाखा में जाना मुझे तो हमेशा से ही बोरिंग टाइप का लगता है। लाइन लगाओ, फॉर्म भरो, फिर इंतजार करो।
2: अरे बिटिया, आज तुम्हें ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि तुम ऐसे समय में बड़ी हो रही हो जब मोबाइल से पैसे भेजना, बैलेंस देखना और अगर बिल जमा करना हो तो कुछ सेकंड का काम हो गया है,
1: और एटीएम से पैसे निकालना भी।
2: हाँ बिल्कुल।
1: लेकिन दादू, एक बात बताइए ना, जब एटीएम नहीं थे, मोबाइल बैंकिंग नहीं थी, इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी, तब लोग बैंक का काम कैसे करते थे, ऐसे ही एंट्री करा के?
2: नहीं बिटिया, बैंक तो तब भी थे, बस बैंकिंग का तरीका आज से बहुत अलग था।
1: अच्छा, और ये आपके हाथ में जो पासबुक है ये किस बैंक की है?
2: भारतीय स्टेट बैंक की।
1: SBI?
2: हाँ, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI।
1: लेकिन दादू, SBI इतना बड़ा बैंक कब से है? क्या ये शुरू से ही ऐसा था?
2: नहीं, ये कहानी बहुत दिलचस्प है। आज जिस बैंक को हम भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जानते हैं, उसके पीछे भारत की बैंकिंग व्यवस्था की एक लंबी यात्रा है।
1: अच्छा दादू।
2: हाँ।
1: तो ये कहानी कितनी लंबी है भला?
2: इतनी लंबी कि हमें आज की बैंक शाखा से पीछे चलते चलते उस दौर तक पहुँचना पड़ेगा जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था।
1: अच्छा, क्या SBI की कहानी आजादी से पहले शुरू होती है दादाजी?
2: हाँ बिटिया, उसकी ऐतिहासिक जड़ें तो बल्कि उससे भी पहले की बैंकिंग संस्थाओं में मिलती हैं। बाद में कई बदलाव हुए और अंततः 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक अस्तित्व में आया।
1: एक मिनट दादू, अगर SBI 1955 में बना, हाँ? तो उससे पहले बैंकिंग कौन करता था?
2: अरे यहीं से तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है रुचि बेटी।
1: तो पुरानी पासबुक बंद करूं या खोल कर रखूं?
2: खोल कर रखो, आज ये पासबुक सिर्फ तुम्हारी दादी के खाते का हिसाब नहीं बताएगी, आज हमें ये बताएगी कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था ने आम आदमी तक पहुँचने का सफर कैसे तय किया।
1: अच्छा,
2: तो बिटिया सुनो, भारतीय स्टेट बैंक की कहानी समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर में जाना होगा जब भारत में बैंकिंग का स्वरूप आज जैसा नहीं था।
1: दादू, आपने तो कहा था कि SBI की कहानी आजादी से पहले के दौर तक जाती है।
2: हाँ।
1: लेकिन उस समय तो आज जैसी बैंकिंग व्यवस्था रही नहीं होगी ना?
2: हाँ, बिल्कुल नहीं थी।
1: तब
2: उस समय भारत की बैंकिंग व्यवस्था आज की तुलना में बहुत छोटी और सीमित थी। बैंक मुख्य रूप से बड़े व्यापारिक केंद्रों और शहरों तक सीमित थे।
1: वो तो ठीक है दादू, लेकिन गांव में रहने वाले लोग क्या करते थे?
2: बिटिया, आम लोगों के लिए तो बैंकिंग सेवाएं बहुत सीमित थी। बचत और उधार की जरूरतें पूरी करने के लिए लोग कई बार स्थानीय साहूकारों और दूसरे पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर रहते थे।
1: यानी हर किसी के पास बैंक खाता होना आम बात नहीं थी दादू?
2: नहीं, बैंकिंग का दायरा जितना व्यापक है ना, तब वैसा नहीं था।
1: फिर भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई?
2: बिटिया, इस दौर के लिए हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी के उस दौर को देखना होगा जब भारत के प्रमुख व्यापारिक शहरों में बैंकिंग संस्थाएं विकसित होने लगी।
1: दादू, आप पहेलियां ना बुझाइए।
2: मतलब?
1: बताइए ना कौन कौन से शहर थे।
2: अरे भाई बता रहा हूँ, उस समय के 3 बड़े व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास।
1: यानी आज के कोलकाता, मुंबई और चेन्नई।
2: बिल्कुल, और इन्हीं 3 केंद्रों से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण बैंकिंग संस्थाएं आगे चलकर भारतीय स्टेट बैंक के इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी बनी।
1: और वो कौन कौन सी संस्थाएं थी?
2: बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास।
1: अच्छा दादू, ये तीनों अलग अलग बैंक थे?
2: हाँ, उस समय ब्रिटिश शासन में भारत के बड़े प्रशासनिक क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उन क्षेत्रों के प्रमुख शहरों में स्थापित ये बैंक आगे चलकर बैंकिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे।
1: वो सब तो ठीक है। हाँ। लेकिन फिर इन तीनों का क्या हुआ?
2: वर्ष 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर दिया गया।
1: विलय मतलब?
2: अरे मतलब जब दो या उससे अधिक अलग अलग संस्थाएं मिलकर एक नई संस्था का रूप ले लेती हैं, तो उसे विलय यानी मर्जर कहते हैं।
1: समझ रही हूँ मैं, जैसे तीन छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी बन जाए।
2: हाँ वाह वाह वाह, बहुत सुंदर उदाहरण दिया तुमने। बैंकिंग में भी ऐसा ही समझ सकती हो। तीन अलग संस्थाओं को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया गया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
1: ओह, तो यही बैंक बाद में SBI बना?
2: हाँ, लेकिन सीधे उसी नाम से नहीं। इसके बीच में भारत की स्वतंत्रता और बैंकिंग व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए।
1: अच्छा ये बताइए दादू।
2: हाँ?
1: इंपीरियल बैंक करता क्या था?
2: बिटिया, ये एक बड़ा वाणिज्यिक बैंक था। वाणिज्यिक बैंक यानी एक ऐसा बैंक जो आमतौर पर लोगों और व्यवसायों से जमा स्वीकार करता है और विभिन्न जरूरतों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसके अलावा भुगतान और दूसरी बैंकिंग सेवाएं भी देता है।
1: तो आज जो हम सेविंग अकाउंट, लोन और पैसे ट्रांसफर जैसी चीजें देखते हैं ना।
2: हाँ?
1: उनका आधार इसी तरह की बैंकिंग व्यवस्था में है।
2: हाँ बिल्कुल, हालांकि समय के साथ इन सेवाओं का स्वरूप और तकनीक बहुत बदल गई है।
1: लेकिन दादू, अगर इंपीरियल बैंक इतना बड़ा था तो फिर SBI बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
2: ये बहुत अच्छा सवाल किया बिटिया तुमने। क्योंकि भारत आजाद हो चुका था और देश की आर्थिक जरूरतें भी बदल रही थी। यानी आजादी के बाद सिर्फ सरकार और कानून ही नहीं बदले, बैंकिंग की जरूरतें भी बदली और नए राष्ट्र के सामने एक बड़ी चुनौती थी, आर्थिक विकास का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे।
1: और इसमें बैंक की क्या भूमिका हो सकती थी?
2: बहुत बड़ी भूमिका। सोचो, किसान को खेती के लिए ऋण चाहिए, छोटे व्यापारी को कारोबार के लिए पूंजी चाहिए। अगर किसी परिवार को घर बनाना है या किसी विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता चाहिए, तो इन जरूरतों के लिए व्यवस्थित बैंकिंग व्यवस्था जरूरी होती है।
1: दादू, मैं तो सोचती हूँ कि बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह है। यानी आपके हिसाब से बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं है?
2: बैंक बचत और निवेश के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। मान लो किसी व्यक्ति के पास अभी जरूरत से कुछ अधिक पैसा है और वो उसे बैंक में जमा करता है। दूसरी तरफ किसी व्यक्ति या व्यवसाय को किसी काम के लिए धन की जरूरत है तो बैंक नियमों के अनुसार ऋण देता है। इस तरह बैंक बचत को आर्थिक गतिविधियों तक पहुंचाने में मदद करता है।
1: यानी आप ये कहना चाहते हैं दादाजी कि एक की बचत दूसरी की जरूरत से जुड़ सकती है।
2: हाँ, बिल्कुल सही। यही बैंकिंग की बुनियादी आर्थिक भूमिका को समझने का एक आसान तरीका है।
1: अब समझ में आया मुझे दादू।
2: हाँ?
1: लेकिन फिर 1955 में क्या हुआ?
2: बिटिया, स्वतंत्र भारत ने तय किया कि देश के विकास में एक मजबूत बैंकिंग नेटवर्क की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसी संदर्भ में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदलकर भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया।
1: यानी SBI का जन्म एक बड़े बदलाव के रूप में हुआ।
2: हाँ, 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक अस्तित्व में आया। लेकिन इसके बाद असली चुनौती थी बैंकिंग सेवाओं को ज्यादा व्यापक बनाना, खासकर उन क्षेत्रों तक जहां बैंकिंग सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी।
1: यानी अब कहानी सिर्फ एक बैंक के बनने की नहीं बल्कि बैंक को लोगों तक पहुंचाने की है।
2: बिल्कुल बिटिया, और यही इस कहानी का अगला महत्वपूर्ण अध्याय है।
1: अच्छा दादू, गाँव तक बैंक पहुँचाना ये भला कैसे हुआ होगा?
2: यही तो अब समझना है बिटिया, क्योंकि बैंक की असली ताकत सिर्फ उसकी इमारत या बड़ी शाखा में नहीं होती बल्कि वहाँ होती है जहाँ किसी आम आदमी को पहली बार ये भरोसा मिलता है कि वो अपनी मेहनत की कमाई बैंक में सुरक्षित रख सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकता है। अरे अब क्या सोचने लग गई बिटिया?
1: दादू, मैं एक बात सोच रही हूँ। आपने कहा कि 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बना और उसके बाद बैंकिंग को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन बैंक तो शहरों में पहले से थे ना, गांव में बैंक की शाखा खोलने में इतनी बड़ी बात भला क्या थी?
2: बड़ी बात इसलिए थी बिटिया, क्योंकि बैंक की शाखा सिर्फ एक इमारत नहीं होती। मैंने वो कहा था ना, वो किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने का एक माध्यम बन सकती है।
1: लेकिन वो कैसे दादू?
2: अच्छा मान लो किसी गांव का एक किसान है, उसे अगली फसल के लिए बीज, खाद या कृषि उपकरण खरीदने, उसके पास अभी पूरा पैसा नहीं है और उसे ऋण चाहिए। लेकिन अगर उसके आसपास औपचारिक बैंकिंग सुविधा ही नहीं है तो बैंक से ऋण लेना उसके लिए आसान नहीं होगा।
1: और अगर बैंक की शाखा गांव या पास के कस्बे में हो तो?
2: तब उसके पास औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था तक पहुँच का एक रास्ता बनता है। वो खाता खोल सकता है, अपनी बचत जमा कर सकता है और पात्रता और बैंक के नियमों के अनुसार ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।
1: यानी बैंक की शाखा दूर होने से भी लोगों की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है?
2: हाँ बिल्कुल, इसलिए बैंकिंग का विस्तार केवल बैंकों के विस्तार का विषय नहीं था, ये आर्थिक भागीदारी को व्यापक बनाने से भी जुड़ा था और इसे ही वित्तीय समावेशन कहते हैं। यानी समाज की उन लोगों तक भी बचत और उपयोगी वित्तीय सेवाएं पहुंचाना जो किसी कारण से अब तक औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से बाहर या बहुत कम जुड़े रहे हैं।
1: तो क्या इसमें सिर्फ बैंक खाता खोलना ही शामिल है?
2: नहीं नहीं, इसमें वित्तीय समावेशन का दायरा इससे भी बड़ा है। इसमें बचत खाते जैसी मूल बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार ऋण भुगतान की सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच भी शामिल हो सकती है।
1: तो दादाजी, बैंकिंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं।
1: और बैंक ने इस दिशा में क्या किया है फिर?
2: भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखाओं और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी पहुँच बढ़ाई। आगे चलकर उसके साथ जुड़े बैंकों के विलय और अन्य संस्थागत बदलाव ने भी उसके नेटवर्क के आकार को बदला।
1: लेकिन दादू।
2: अरे भाई फिर रुचि बिटिया, अरे तुम परेशान बहुत होती हो।
1: आप ये बताइए मुझे, बैंक लोगों से पैसे जमा कराता है, फिर वही पैसा लोन में देता है, तो बैंक को फायदा कहाँ से होता है?
2: हाँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखो बैंक की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक है ब्याज। यानी जब मैं बैंक में पैसे जमा करता हूँ तो बैंक मुझे ब्याज देता है, और जब बैंक किसी को ऋण देता है तो उससे ब्याज लेता है। सामान्य रूप से समझने के लिए तुम ऐसा कह सकती हो कि बैंक जमा पर ब्याज दे सकता है और ऋण पर ब्याज लेता है। दोनों के बीच का अंतर बैंक की आय के महत्वपूर्ण स्रोतों में शामिल होता है। हालांकि बैंक की आय केवल इसी अंतर तक सीमित नहीं होती, उसे कई तरह की सेवाओं से भी आय हो सकती है।
1: तब तो बैंक का काम बहुत संतुलित तरीके से चलाना पड़ता होगा दादाजी।
2: बिल्कुल, बैंक को एक तरफ जमाकर्ताओं के पैसे का बहुत ध्यान रखना होता है और दूसरी तरफ दिए गए ऋण की वसूली और जोखिम का भी प्रबंधन करना होता है।
1: जोखिम? जोखिम किस तरह का जोखिम?
2: अरे मान लो बैंक ने किसी व्यक्ति या व्यवसाय को ऋण दिया और अगर वो व्यक्ति समय पर पैसा वापस नहीं कर पाता तो बैंक के लिए समस्या पैदा हो सकती है। इसलिए बैंक किसी को भी मनमाने ढंग से लोन नहीं दे सकता। ऋण देने से पहले बैंक कई बातों का आकलन करता है, जैसे आवेदक की वित्तीय स्थिति, आय, ऋण चुकाने की क्षमता, ऋण का उद्देश्य और बैंक के निर्धारित नियम आदि।
1: मतलब बैंक में काम करने वाले लोगों को सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं आना चाहिए?
2: बिल्कुल नहीं बेटिया, बैंकिंग में गणना, वित्तीय समझ, ग्राहक सेवा, नियमों की जानकारी, जोखिम की समझ और तकनीक सबकी जरूरत होती है।
1: दादू यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ना, कि अगर किसी विद्यार्थी को बैंकिंग में करियर बनाना हो तो उसे क्या पढ़ना चाहिए?
2: बिटिया ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बैंकिंग में किस भूमिका के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए कुछ बुनियादी चीजें बहुत उपयोगी हैं, जैसे गणितीय समझ, तर्क शक्ति, भाषा और संचार कौशल, सामान्य जागरूकता, कंप्यूटर की जानकारी और वित्तीय विषयों की बुनियादी समझ।
1: आपने कॉमर्स की बात नहीं कही, क्या कॉमर्स पढ़ना भी जरूरी है?
2: अरे बिटिया ये सारी चीजें कॉमर्स के अंदर ही तो कहीं ना कहीं आती हैं। हर बैंकिंग नौकरी के लिए केवल कॉमर्स पृष्ठभूमि होना अनिवार्य नहीं है। कई बैंक भर्ती परीक्षाओं में अलग अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी अवसर पा सकते हैं। इसलिए विद्यार्थी को पहले उस पद की आधिकारिक पात्रता और परीक्षा पैटर्न देखना चाहिए जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है।
1: यानी सिर्फ ये सोचकर कि मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ी है, बैंकिंग मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना?
2: बिल्कुल, अपने लक्ष्य के अनुसार योग्यता और परीक्षा की शर्तें देखो और फिर तैयारी करो। बैंक में अलग अलग स्तर और प्रकृति के अलग अलग काम होते हैं। उदाहरण के लिए ग्राहक सेवा से जुड़े पद, अधिकारी स्तर के पद, तकनीकी और विशेषज्ञ भूमिकाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन और अन्य विशेषज्ञ क्षेत्रों में भी अवसर हो सकते हैं।
1: मतलब बैंकिंग सिर्फ कैश काउंटर पर बैठने का काम नहीं है?
2: नहीं बिटिया, बिल्कुल नहीं। आज बैंक एक तकनीकी और जटिल वित्तीय संस्था भी है। बैंक ने कागज और काउंटर से आगे बढ़कर कंप्यूटर, एटीएम, इंटरनेट और मोबाइल तक का सफर तय किया है।
1: और अब तो मैं घर बैठे पैसे भेज देती हूँ दादू।
2: हाँ, लेकिन याद रखना, तकनीक ने बैंकिंग को तेज और सुविधाजनक बनाया है और साथ ही साइबर सुरक्षा और डिजिटल सावधानी की जरूरत भी बढ़ाई है।
1: यानी बैंकिंग सीखने वाले स्टूडेंट्स को अब सिर्फ बैंक और पैसे के बारे में नहीं, तकनीक और सुरक्षा के बारे में भी सीखना होगा।
2: हाँ बिल्कुल, आज का बैंकिंग क्षेत्र बहुविषयक है। वित्त, अर्थशास्त्र, गणित, तकनीक, कानून और ग्राहक सेवा, कई क्षेत्रों की समझ यहाँ एक दूसरे से जुड़ती है।
1: दादू, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपने शुरुआत में क्यों कहा था कि बैंक की कहानी सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं है।
2: अरे बिटिया, रवि तो कहानी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है।
1: अच्छा, कौन सा?
2: यही कि जिस बैंक की शुरुआत शाखाओं और पासबुक से हुई थी, वही बैंक आगे चलकर एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के दौर में कैसे पहुंचा और इस बदलाव ने हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे बदला।
1: तो अब आगे पासबुक से मोबाइल तक की यात्रा?
2: हाँ, और इस बार तो तुम्हारा मोबाइल भी कहानी का एक पात्र होगा।
1: तब तो दादू मैं आपको बैंकिंग सिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि अपनी ओटीपी किसी को नहीं बताना। ये देखिए दादू, हो गया ना?
2: क्या हो गया बिटिया?
1: दादू मैंने अभी अभी मोबाइल से पैसे भेजे ना, और देखिए तुरंत पहुंच भी गए।
2: अच्छा, किसे भेजे?
1: पड़ोस वाली आंटी को, उन्होंने मेरे लिए कुछ सामान मंगवाया था।
2: और बैंक गई थी?
1: नहीं तो, मोबाइल से ही कर दिया।
2: वाह, देख रही हो, यही है बैंकिंग में बदलाव की कहानी।
1: लेकिन दादू इसमें इतना बड़ा बदलाव क्या है भला, हम तो रोजाना मोबाइल से पैसे भेजते हैं।
2: अरे बिटिया, ये तुम्हारे लिए सामान्य है, लेकिन सोचो कुछ दशक पहले अगर किसी को अपने खाते से पैसे भेजने होते तो उसे बैंक की शाखा में जाना पड़ता था, फॉर्म भरना, कर्मचारी से संपर्क करना और बैंक की प्रक्रिया पूरी करना, इस समय समय लगता था।
1: ओहो दादू, और अब कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ हो जाता है घर बैठे बैठे।
2: वही तो ना, तकनीक ने बैंकिंग की गति और पहुंच दोनों को बदल दिया।
1: लेकिन दादू एक बात बताइए ना,
2: हाँ?
1: बैंक में कंप्यूटर कब आए?
2: बिटिया बैंकिंग का कंप्यूटरीकरण धीरे धीरे हुआ। पहले बैंक के कई काम कागज और रजिस्टरों पर ही निर्भर होते थे, फिर जैसे जैसे कंप्यूटर तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा, खातों की जानकारी और बैंकिंग प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और तेज करने की दिशा में बदलाव आया।
1: तो मेरी दादी की ये पुरानी पासबुक उस समय की याद है?
2: हाँ बिटिया, पासबुक उस दौर की बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आज तो मोबाइल ऐप में अपने खाते का विवरण देख सकती हो, लेकिन पहले पासबुक में दर्ज प्रविष्टियाँ खाते के लेन देन का रिकॉर्ड बताती थी।
1: और फिर आया एटीएम।
2: हाँ, बैंकिंग धीरे धीरे शाखा के काउंटर से बाहर निकलने लगी।
1: एटीएम का मतलब तो मुझे पता है दादू, ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
2: शाबाश, लेकिन इसका काम सिर्फ पैसे निकालना नहीं है। एटीएम के जरिए उपलब्ध सेवाओं के अनुसार ग्राहक नकदी निकाल सकता है, जमा भी कर सकता है, बैलेंस जैसी जानकारी देख सकता है और कुछ अन्य बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर सकता है।
1: और दादू फिर इंटरनेट बैंकिंग आई और उसके बाद मोबाइल बैंकिंग।
2: बिल्कुल सही, और इसके साथ ही बैंकिंग की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया, ग्राहक की भूमिका भी बदल गई।
1: वो कैसे भला?
2: अब देखो, पहले ग्राहक बैंक की शाखा पर अधिक निर्भर था, अब ग्राहक स्वयं कई काम डिजिटल माध्यम से कर सकता है। खाते की जानकारी देखना, भुगतान करना, पैसे ट्रांसफर करना, कई सेवाओं के लिए आवेदन करना।
1: लेकिन दादू,
2: हाँ?
1: पैसे ट्रांसफर करने के भी इतने नाम है ना, NEFT, RTGS, IMPS और UPI, मुझे तो ये सब एक जैसे ही लगते हैं।
2: अरे बिटिया, यही तो एक विद्यार्थी के लिए समझने वाली बात है। इन सभी का उद्देश्य पैसे को एक खाते से दूसरे खाते तक पहुँचाना है, लेकिन इनके काम करने का तरीका और उपयोग अलग हो सकता है।
1: दादू आसान भाषा में बताइए।
2: अरे भाई बहुत बुद्धू हो। NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन हस्तांतरण की प्रणाली है।
1: ठीक है दादू, अभी आरटीजीएस क्या है?
2: बिटिया, आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बड़े मूल्य के लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली है, जिसमें लेन देन का निपटारा रियल टाइम आधार पर होता है।
1: और ये IMPS?
2: IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, त्वरित इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण की सुविधा।
1: और ये UPI तो मैं सबसे ज्यादा सुनती हूँ।
2: अरे भाई, अभी तो तुमने किया, तुम्ही ने बताया ना, तुमने फोन से पैसे भेजे आंटी को। तो UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, अलग अलग बैंक खातों के बीच डिजिटल भुगतान को आसान बनाने वाला इंटरफेस है। इससे मोबाइल के जरिए भुगतान और धन हस्तांतरण बहुत सुविधाजनक हो गया।
1: तो इन सबको एक ही चीज समझना मतलब गलत होगा।
2: हाँ, विद्यार्थी को किसी भी तकनीकी शब्द को केवल याद नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि वो किस समस्या का समाधान करता है और उसकी मुख्य विशेषता क्या है।
1: सही कहा दादू आपने। अच्छा ये बताइए ना, आज के दौर में बैंक में नौकरी करने के लिए कंप्यूटर आना क्यों जरूरी है?
2: बिटिया, आज के बैंकिंग वातावरण में डिजिटल और कंप्यूटर संबंधी समझ निश्चित रूप से उपयोगी है, और अगर कोई विद्यार्थी तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है तो बैंकिंग में उसके लिए विशेषज्ञ भूमिकाएं भी हो सकती हैं।
1: मतलब बैंक में सिर्फ बैंकिंग पढ़े हुए लोग ही नहीं जाते?
2: बिल्कुल नहीं, आज बैंकिंग संस्थानों में IT, साइबर सुरक्षा, डेटा, कानून, अर्थशास्त्र, जोखिम प्रबंधन और दूसरे विशेषज्ञ क्षेत्रों से जुड़े लोग भी काम करते हैं। SBI की वर्तमान भर्ती में भी प्रोबेशनरी ऑफिसर, जूनियर एसोसिएट और विभिन्न स्पेशल कैडर ऑफिसर जैसे अलग अलग अवसर दिखाई देते हैं। यानी बैंकिंग में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी विशेषज्ञ भूमिकाएं भी होती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को केवल एक पारंपरिक नौकरी की कल्पना तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
1: अच्छा ये बताइए कि अगर कोई सामान्य बैंक अधिकारी बनना चाहे तो?
2: बिटिया, SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर एक प्रमुख प्रवेश मार्ग है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार PO के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री आवश्यक है। अंतिम वर्ष सेमेस्टर के विद्यार्थी भी निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, हालांकि वास्तविक पात्रता हमेशा संबंधित भर्ती विज्ञापन से ही देखनी चाहिए, क्योंकि नियम भर्ती के अनुसार बदल सकते हैं।
1: यानी दादू, अगर मैंने इतिहास, विज्ञान या कला पढ़ी है तभी मैं बैंकिंग की तैयारी कर सकती हूँ?
2: बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन तैयारी करते समय अपनी परीक्षा की आधिकारिक पात्रता, पाठ्यक्रम और चयन प्रक्रिया को ध्यान से देखना जरूरी है।
1: दादू आपने पहले कहा था कि बैंकिंग में भरोसा बहुत जरूरी है, डिजिटल बैंकिंग में तो सुरक्षा और भी जरूरी होगी। यानी सुविधा बढ़ी तो खतरे भी तो बढ़ गए ना?
2: बिल्कुल, नए प्रकार के जोखिम जरूर सामने आए, इसलिए डिजिटल बैंकिंग करते समय हमेशा कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जैसे OTP, पासवर्ड, ATM पिन और अन्य संवेदनशील बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। अनजान लिंक पर क्लिक करने और संदिग्ध संदेशों पर भरोसा करने से भी बचना चाहिए।
1: सही कहा दादू आपने, आज के समय में जागरूकता कितनी जरूरी है।
2: आज का समझदार बैंक ग्राहक वही है जो सुविधा का इस्तेमाल भी करे और सुरक्षा का भी ध्यान रखे।
1: दादू,
2: हाँ?
1: अब आपकी पुरानी पासबुक और मेरा मोबाइल दोनों एक ही कहानी के दो हिस्से लग रहे हैं।
2: हाँ।
1: एक में बैंक तक जाना पड़ता था और दूसरे में बैंक मेरे हाथ में आ गया।
2: यही तो बैंकिंग की यात्रा है रुचि, शाखा से स्क्रीन तक।
1: तो दादू क्या अब ये कहानी पूरी हो गई है?
2: अरे नहीं बिटिया, अभी बिल्कुल नहीं, एक बड़ा अध्याय अभी बाकी है।
1: वाह दादू, कितना कुछ आप बचा कर रखते हो ना। अब बताओ कौन सा अध्याय बाकी है?
2: बिटिया, ये समझना कितने बड़े बैंक का विस्तार सिर्फ तकनीक से नहीं हुआ, उसके पीछे शाखाओं का नेटवर्क, ग्रामीण बैंकिंग, सहयोगी बैंकों का इतिहास और समय के साथ हुए बड़े संस्थागत बदलाव भी हैं।
1: यानी अगली बार फिर इतिहास की तरफ लेकर चलेंगे आप मुझे?
2: इतिहास और वर्तमान दोनों साथ साथ।
1: ठीक है दादू, लेकिन इस बार ये पासबुक मैं रखूंगी।
2: है? क्यों?
1: ताकि अगली कहानी में कोई तारीख छूट ना जाए। अच्छा दादू, कितने मजे की बात है ना, इस पूरी यात्रा में SBI भी लगातार बदलता रहा।
2: हाँ, यही तो किसी बड़े संस्थान की पहचान है, समय के साथ बदलना और लोगों की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवाओं को विकसित करना।
1: तो दादू आज की कहानी यही खत्म ना?
2: हाँ बिटिया, लेकिन एक बात याद रखना, बैंकिंग सिर्फ पैसे का विषय नहीं भरोसे, जिम्मेदारी और बदलती तकनीक को समझने का भी विषय,
1: और शायद भविष्य बनाने का भी।
2: हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें अर्थव्यवस्था, तकनीक और लोगों के साथ काम करने में रुचि है तो बैंकिंग तुम्हारे लिए एक संभावनाओं वाला क्षेत्र हो सकता है।
1: ठीक है दादू, चलिए अब आप अपनी पासबुक जरा मुझे दे दीजिए।
2: अच्छा लो बेटा, लेकिन संभाल कर रखना, इसमें सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं, तुम्हारी दादी की यादें और समय का इतिहास भी दर्ज है।
1: बिल्कुल दादू। तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें रुचि और दादाजी बात कर रहे थे भारतीय स्टेट बैंक की भरोसे की बैंकिंग यानी SBI। कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना
2: और मैं संदीप शर्मा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 MHz पर, देश का चैनल
2: देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप है रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को इतिहास का नमस्कार
1: और साथ ही तारीख का भी नमस्कार स्वीकार कीजिए श्रोताओं।
0: तारीख, आज आप किस बलिदानी की कहानी लेकर आई हैं?
1: इतिहास आजाद हिंद एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें इतिहास और तारीख दोनों मिलकर किसी न किसी क्रांतिवीर की कहानी अपने श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं। तो आज आप ही बताइए किसकी बारी है?
0: तारीख, आज बारी है ऐसी क्रांतिकारी महिला की जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों के साथ मिलकर भारत की आजादी का सपना देखा, और वो है दुर्गावती यानी दुर्गा भाभी।
1: तो फिर हम अपने श्रोताओं को ज्यादा इंतजार न करवाएं तो अच्छा होगा।
0: जी, एक शताब्दी से थोड़ा पहले जब 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद के पंडित बांके बिहारी नागर के घर एक सुकुमार कन्या का जन्म हुआ, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बड़ी होकर ये बच्ची भारत में ब्रिटिश हुकूमत की ईंट से ईंट बजा कर रख देगी। इस बच्ची का नाम दुर्गावती रखा गया। 10 माह में ही इस बच्ची की मां की मृत्यु हो गई। वैराग्य से घिरे पिता ने उसके चाचा चाची के घर सौंप कर संन्यास की राह पकड़ी।
1: 1918 में आगरा निवासी शिवचरण वोहरा के पुत्र भगवती चरण वोहरा के साथ उनका विवाह हुआ। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी और वे 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। जन जागृति और शिक्षा के महत्व को समझने वाली दुर्गावती ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1925 में उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम शचिंद्र नाथ रखा गया।
0: चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी हुई और देशभक्तों के एक वर्ग ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम के साथ साथ रूस, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा पाकर देश की आजादी का सपना देखा था। भारत को आजाद कराने की रणनीति में जुटे लाला हरदयाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। इसकी पहली कार्यकारिणी सभा 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में हुई।
1: इस सभा में बिस्मिल के नेतृत्व में योगेंद्र शुक्ल, योगेश चंद्र चटर्जी और ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोग थे। बाद में अशफाक उल्ला, चंद्रशेखर आजाद भी इस संस्था में शामिल हो गए। काकोरी कांड के बाद यही संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के नाम से पुनर्जीवित हुई, तो इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, उनकी बहन सुशीला दीदी और दुर्गावती भी जुड़ गई।
0: मेरठ षड्यंत्र कांड में भगवती चरण वोहरा के नाम पर वारंट निकलने पर वे अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ लाहौर चले गए, जहां वे भारतीय नौजवान सभा में शामिल हुए। 16 नवंबर 1926 को भारतीय नौजवान सभा ने शहीद करतार सिंह की 11वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया। दुर्गा देवी और उनकी ननद सुशीला देवी ने अपने खून से शहीद करतार सिंह का चित्र बनाया था। यहीं से दोनों क्रांतिकारी महिलाएं दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी के नाम से जानी जाने लगी। इस पार्टी के जरिए दुर्गा भाभी लगभग सभी क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गई।
1: दुर्गा भाभी के लिए सबसे यादगार दिन था 17 दिसंबर 1928 का। लाहौर के पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या करने के बाद सुखदेव और भगत सिंह ने दुर्गा भाभी के घर पर शरण ली। भगत सिंह अंग्रेजों की तरह सूट और हैट पहने थे। दुर्गा भाभी समझ गई कि क्या हुआ है। प्रोफेसर भगवती चरण वोहरा कलकत्ता गए हुए थे। दुर्गा भाभी ने भी योजना बनाई कि इन्हें भी कलकत्ता लेकर जाया जाए।
0: लाहौर से कलकत्ता जाने की योजना बनी। भगत सिंह और दुर्गा भाभी पति पत्नी के वेश में थे। उन्होंने ट्रेन में प्रथम श्रेणी की टिकट ली और राजगुरु ने सेवक की वेशभूषा में तृतीय श्रेणी की टिकट ली। जब ये लोग लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पुलिस पहले से ही भगत सिंह को खोजते हुए पहुंची थी, लेकिन दुर्गा भाभी की मदद से भगत सिंह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ट्रेन में जा बैठे। ये सभी क्रांतिकारी ट्रेन में सवार होकर स्वाधीनता संघर्ष का एक नया इतिहास रचने जा रहे थे। इस घटना के बारे में किसी ने कहा है कि मौत से बचना आसान है, लेकिन उस शाम लाहौर स्टेशन पर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था।
1: यात्रा के दौरान दुर्गा भाभी ने अपने पति भगवती चरण वोहरा को तार भेजकर सूचना दी कि वे उन्हें कलकत्ता स्टेशन पर लेने आ जाएं। कलकत्ता में इनकी मुलाकात अतुल गांगुली, जीएन दास और फणीन्द्र घोष जैसे क्रांतिकारियों से हुई।
0: जी।
1: वहां उन्होंने अपने संगठन की एक शाखा भी खोली। यहां पर उन्हें बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। कलकत्ता में रहकर भगत सिंह ने बांग्ला भाषा भी सीखी।
0: कलकत्ता में ही इन क्रांतिकारियों ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बाबू को निकट से देखा। दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा इन क्रांतिकारियों के लिए पिता और मार्गदर्शक की तरह थे और दुर्गा भाभी माँ की तरह इनका ख्याल रखती थीं और क्रांतिकारी योजना बनाने में भी इनकी मदद किया करती थीं। इन सभी क्रांतिकारियों के साथ कलकत्ता में कुछ वक्त रहकर दुर्गा भाभी लाहौर वापस आ गईं। असेंबली में बम फेंकने की योजना भी कलकत्ता में ही तैयार हुई।
1: योजना के मुताबिक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली पर बम फेंका और गिरफ्तार कर लिए गए। इस मुकदमे में इन दोनों को सजा दी गई।

0: क्रांतिकारी दल पर दूसरा वज्रपात ये हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। सभी क्रांतिकारी यहाँ वहाँ बिखर कर काम करने लगे थे। ये तय किया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा के विरोध में कोई बड़ा कदम उठाया जाए।
1: बंबई के गवर्नर हैली की हत्या की योजना बनाई गई। इस पूरी योजना की जिम्मेदारी दुर्गा भाभी ने खुद ली। वो अपने कुछ साथियों के साथ बंबई जा पहुंची। उनके साथियों में थे सुखदेव और पृथ्वी सिंह। क्रांति के क्षेत्र में पृथ्वी सिंह अनुभवी लोगों में गिने जाते थे। अमेरिका में बनी भारतीय क्रांतिकारियों की पार्टी के संस्थापक भी पृथ्वी सिंह ही थे। भारत लौटकर पृथ्वी सिंह को अंग्रेजी सरकार का तख्ता पलटने की साजिश में फांसी की सजा हुई, जो बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई।
0: गवर्नर हैली शाम को अपने बागीचे में बैठा करते थे। योजना के मुताबिक दुर्गा भाभी ने पारसी महिला के वेश में अपने मित्र शिंदे की गाड़ी में बैठकर उसके ड्राइवर बापट के साथ हैली के घर जाने का निर्णय किया। सुखदेव और पृथ्वी सिंह उनके अभिभावक के वेश में उनके साथ गए। तय ये हुआ कि दुर्गा भाभी गवर्नर हैली को बातों में उलझाकर उन पर गोली चला देंगी। बाकी लोगों ने भी विरोध किया तो सुखदेव और पृथ्वी सिंह भी गोली चला देंगी।
1: योजना के मुताबिक दुर्गा भाभी पृथ्वी सिंह और सुखदेव के साथ कार में सवार होकर गवर्नर के बंगले पहुंची। गवर्नर हैली घर पर नहीं मिले। बहुत देर तलाश करने के बाद ये तीनों गवर्नर के घर के पास लैमिंगटन रोड पुलिस थाने पहुंचे। उस थाने पर ज्यादातर गोरे पुलिस अधिकारी थे। रात 1 बजे पुलिस की एक गाड़ी आई और उसमें से एक महिला और कुछ गोरे अफसर उतरे। इन तीनों क्रांतिकारियों को लगा कि पुलिस उन्हें पकड़ने आई है। पृथ्वी सिंह चिल्लाकर बोले, शूट। दुर्गा भाभी ने उस महिला को छोड़कर बाकी गोरे अधिकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी। पृथ्वी सिंह और सुखदेव भी गोली चलाने लगे। गोलियां चलती देख पुलिस अधिकारी थाने से बाहर आए और आक्रमणकारियों को उन्होंने घेरना चाहा। क्रांतिकारी वहां से भागे और अपने ठिकाने पहुंचे। पुलिस ने पीछा करते हुए गाड़ी के ड्राइवर बापट को पकड़ लिया और उसे लेकर क्रांतिकारियों के ठिकाने पहुंचे। पुलिस को देखकर दुर्गा भाभी, पृथ्वी सिंह और सुखदेव घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। पृथ्वी सिंह साधु के वेश में पैदल चलकर नौसारी पहुंच गए।

0: चंद्रशेखर आजाद के जाने के बाद दुर्गा भाभी अब पूरी तरह अकेली हो गई थी। वे इधर उधर आश्रय पाने के लिए भटक रही थी। दुर्गा भाभी को अपने से ज्यादा चिंता अपने पुत्र शचिंद्र की थी। उसे परेशानियों से बचाने के लिए और उसकी शिक्षा के लिए वे दिल्ली में रहने लगी। इस बीच पुलिस उन्हें लगातार परेशान करती रहती थी।
1: दुर्गा भाभी जब लाहौर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में उन्हें 3 साल तक नजरबंद रखा गया। उसके बाद दुर्गा भाभी लाहौर से गाजियाबाद चली गई, जहां उन्होंने एक कन्या विद्यालय में नौकरी कर ली। फिर वो दिल्ली पहुंच गई। उनकी कर्मठता, त्याग और कार्यकुशलता को देखते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी उन्हें चुना गया। 1940 से ही वे उत्तर भारत में पहले मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना के लिए कोशिश कर रही थी। आजादी के बाद दुर्गा भाभी ने लखनऊ को अपना स्थायी निवास बनाया। 7 फरवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मॉन्टेसरी सोसाइटी की नींव रखी और दुर्गा भाभी को उसके प्रबंधन का काम सौंपा।
0: 1983 तक दुर्गा भाभी इस संस्था के प्रबंध समिति में रही। फिर लखनऊ छोड़कर वे गाजियाबाद आ गई। लखनऊ छोड़ते समय उन्होंने अपना निवास संस्था को दान कर दिया। आजादी के बाद उन्हें राजनीति में आने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा उन्हें 51,000 की राशि भेंट की गई, लेकिन दुर्गा भाभी ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि इन पैसों से एक शहीद स्मारक बनाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को भारत के इतिहास और देश की गौरवशाली परंपरा को जानने का मौका मिल सके।
1: 15 अक्टूबर 1999 को 92 साल की आयु में दुर्गा भाभी का गाजियाबाद में निधन हो गया। दुर्गा भाभी जैसी देशभक्त ने अपना सारा जीवन देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद देश की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में दुर्गा भाभी जैसी देशभक्त और समाज सेविका को हमेशा हमेशा बहुत श्रद्धा के साथ में याद किया जाएगा।

0: वादा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय। अब हमें इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

0: स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।
1: सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर हम रेडियो आजाद हिंद से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं। आप सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। दिन के ठीक 11 बजे हैं, आप समय मिला सकते हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा। आइए चलते हैं सबसे पहले रवींद्र भवन में। रवींद्र भवन परिसर में चल रहे 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री राम लीला उत्सव के तीसरे दिन बुधवार को कथक के जरिए श्री राम कथा के प्रमुख प्रसंगों का मंचन किया गया। कथक केंद्र नई दिल्ली के कलाकारों ने श्री राम सीता विवाह, सीता विदाई, राम वनवास, केवट प्रसंग और भरत राम मिलाप को नृत्य, संगीत, अभिनय और भावाभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत किया। विशेष रूप से सीता विदाई और भरत राम मिलाप के दृश्यों ने दर्शकों को भावुक किया। प्रस्तुति में भक्ति, त्याग, कर्तव्य और भाईचारे की भावनाओं को प्रभावी ढंग से दिखाया गया। नृत्य नाटिका की परिकल्पना और निर्देशन कथा गुरु गीतांजलि लाल ने किया। नृत्य संयोजन अभिमन्यु लाल और उनके साथियों ने किया। कलाकारों ने कई कई मंथरा संवाद और राजा दशरथ के प्रसंगों के जरिए श्री राम के 14 साल के वनवास की परिस्थितियां भी मंच पर उतारी। रविंद्र भवन में चल रहे श्री रामलीला उत्सव में रामलीला के साथ चित्रकला, शिल्पकला और बौद्धिक सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें अनुश्री विश्नोई ने मिनिएचर आर्ट के जरिए गदा के आकार में राम सेतु का दृश्य तैयार किया है। इसमें समुद्र पर बने सेतु से भगवान राम, लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत, नलनील और वानर सेना को लंका की ओर बढ़ते दिखाया गया है। कलाकृति के अगले हिस्से में अशोक वाटिका और सोने की लंका को भी बारीकी से उकेरा गया है। अनुश्री की गुरु और जबलपुर के ललित कला महाविद्यालय की कनिष्ठ निर्देशक शैलजा सुल्लेरे ने बताया कि 3 फीट लंबी इस कलाकृति को 2x3 फीट की आयताकार ट्री में सजाया गया है। उत्सव में शासकीय ललित कला महाविद्यालय जबलपुर के 30 विद्यार्थियों द्वारा बनाई गई कलाकृतियां भी प्रदर्शित की गई हैं। इनमें तंजोर, केरल म्यूरल और सेमी रियलिस्टिक शैली में रामायण के प्रसंग उकेरे गए हैं। लंका दहन, राम सेतु निर्माण और रावण युद्ध जैसे दृश्य आकर्षण का केंद्र हैं। कागज, कपड़े, क्ले और मिट्टी से तैयार राम सेतु की कलाकृति में अशोक वाटिका और लंका भी दर्शाई गई हैं। श्री रामचंद्र पथगमन न्यास और संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के इस उत्सव में रामलीला के साथ चित्रकला, शिल्पकला, कठपुतली प्रदर्शन और बौद्धिक सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं।

आइए श्रोताओं, अब चलते हैं स्वराज संस्थान संचालनालय, जहां शहीदों के अदम्य साहस और बलिदान को नमन करते हुए शौर्य स्मारक की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर बुधवार को विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुक्ताकाश मंच पर मिलिट्री बैंड की सुमधुर प्रस्तुतियों ने देशभक्ति के सुरों से गुंजायमान किया। 3ME सेंटर और दमहा रेजिमेंट सेंटर के 30 से अधिक सैनिक कलाकारों ने बैंड के माध्यम से देशभक्ति गीतों और सदाबहार फिल्मी धुनों की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर सैन्य अस्त्र शस्त्रों की प्रदर्शनियां भी लगाई गईं। यहां दर्शकों ने युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियारों को करीब से देखा। उन्होंने उनके उपयोग से जुड़ी जानकारी भी प्राप्त की। कार्यक्रम में सेना के वरिष्ठ अधिकारी, सैनिक, नागरिक और कला रसिक उपस्थित रहे।

आप समाचार रंगश्री लिटिल वैलेट रूप से। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और संस्कृति विभाग की साहित्यिक श्रृंखला कलम की रोशनी के अंतर्गत रंगश्री लिटिल वैलेट रूप सभागार में पद्मश्री निदा फाजली के जीवन, संघर्ष और साहित्यिक योगदान पर आधारित डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। फिल्म को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने कहा कि निदा फाजली की शायरी प्रेम, संवेदना और आपसी सद्भाव का संदेश देती है। हिंदी उर्दू की साझा सांस्कृतिक विरासत को उनकी रचनाओं ने सशक्त अभिव्यक्ति दी। मैं निदा जैसी डॉक्यूमेंट्री नई पीढ़ी के साहित्यकारों के विचारों और सांस्कृतिक धरोहर से जोड़ने का माध्यम है। प्रख्यात फिल्मकार एवं लेखक रोमी जाफरी ने कहा कि निदा फाजली की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे आम बोलचाल में जिंदगी की गहरी बात कह देते थे। उनकी शायरी में रिश्तों, अकेलेपन, प्रेम और समाज में सच्चाइयों का चित्रण दिखलाई पड़ता है।

तो श्रोताओं, ये था आज का परिक्रमा कार्यक्रम। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद के ज्ञान भंडार का परिचय आपको मिला। उन्हें भारतीय प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ देश तथा संप्रदायों के इतिहास का भी ज्ञान था। वे सिर्फ पढ़ते ही न थे बल्कि तथ्यों को अपने तर्क से समझकर उसकी व्याख्या भी करते थे।
1: स्वामी जी पूरे देश में भ्रमण कर लोगों से मिलकर ये समझे थे कि हमारे देश में दो प्रचलित धारणाएं हैं। एक मत ये है कि जो कुछ पश्चिम देशीय है वही निर्दोष, पूर्ण और सर्वांग सुंदर है। हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं जो विचार योग्य हो या जिसका पालन किया जा सके।
0: दूसरे मतावलंबी ये समझते हैं कि हमारे देश का आचार, आचरण और विचार ही श्रेष्ठ हैं। हम पश्चिम से कुछ सीख सकते हैं ये उन्हें मान्य नहीं। दोनों ही विचार संकुचित तथा संकीर्ण हैं।
1: स्वामी जी ने दोनों मतों को समझा और इन धुंधली धारणाओं को दूर करने के लिए प्राच्य तथा पाश्चात्यों नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने दोनों संस्कृतियों की तुलना, प्रशंसा तथा आलोचना की है। इसमें उन्होंने उन सभी तथ्यों को शामिल किया है जिनमें विभिन्न संस्कृतियों का जन्म हुआ है।
0: आज हम स्वामी जी के कुछ विचारों को देखेंगे कि उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य जातियों के चरित्र के बारे में क्या कहा है।
2: प्रत्येक जाति का एक जातीय उद्देश्य है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार या महापुरुषों की प्रतिभा के बल से प्रत्येक जाति की रीति नीति उस उद्देश्य को सफल करने के लिए उपयोगी है। प्रत्येक जाति के जीवन में इस उद्देश्य एवं उसके उपयोगी उपाय स्वरूप आचार को छोड़कर और सब रीति नीति व्यर्थ है। इन व्यर्थ की रीति नीतियों के ह्रास या वृद्धि से कुछ विशेष बनता बिगड़ता नहीं। यदि उस विशेष उद्देश्य पर आघात होता तो वो जाति जरूर नष्ट हो जाती है।
1: उन्होंने विभिन्न जातियों की तुलना भारतीयों से की है।
2: तीन वर्तमान जातियों की तुलना कीजिए जिनका इतिहास आप थोड़ा बहुत जानते हैं। वे हैं फ्रांसीसी, अंग्रेज और भारतीय। राजनीतिक स्वाधीनता फ्रांसीसी जातीय चरित्र का मेरुदंड है। फ्रांसीसी प्रजा सब अत्याचारों को शांत भाव से सहन करती है। करों के भाव से पीस डालिए फिर भी वो चूं तक न करेगी। सारे देश को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर डालिए पर कोई आपत्ति न की जाएगी। किंतु जब कोई उनकी स्वाधीनता में हस्तक्षेप करता है तब सारी जाति पागलों की तरह प्रतिघात करने लगती है। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर जबरदस्ती अपना हुक्म नहीं चला सकता। यही फ्रांसीसियों के चरित्र का मूल मंत्र है। ज्ञानी, मूर्ख, धनी, दरिद्र, उच्च वंशीय, नीच वंशज सभी को राज्य के शासन और सामाजिक स्वाधीनता में समान अधिकार है। इसके ऊपर हाथ डालने वाले को ही इसका फल भोगना होगा।
0: अब सुनिए उन्होंने अंग्रेज जातीय चरित्र के बारे में क्या कहा था।
2: अंग्रेजों के चरित्र में व्यवसाय बुद्धि तथा आदान प्रदान की प्रधानता है। अंग्रेजों की आवश्यकीय विशेषता है समान भाग, न्याय विभाग। अंग्रेज राजा और कुलीन जाति के अधिकार को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेती हैं, परंतु यदि गांठ में से पैसा बाहर करना हो तो वे हिसाब मांगते हैं। राजा है तो अच्छी बात है, उसका लोग आदर करेंगे, किंतु यदि राजा रुपया चाहे तो उनकी आवश्यकता और प्रयोजन के संबंध में हिसाब किताब समझा बूझा जाएगा, तब कहीं देने की बारी आएगी। राजा की बलपूर्वक रुपया इकट्ठा करने की इच्छा से यहाँ विप्लव खड़ा कर दिया, उन लोगों ने राजा को मार डाला।
1: अब वे भारतीयों के चरित्र की व्याख्या करते हैं।
2: भारतीय कहते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक स्वाधीनता बहुत अच्छी चीज है, किंतु वास्तविक चीज आध्यात्मिक स्वाधीनता अर्थात मुक्ति है। यही जातीय जीवन का उद्देश्य है। वैदिक, जैन, बौद्ध, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत सभी इस संबंध में एकमत हैं। इसमें हाथ न लगाना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। इसे छोड़कर और चाहे जो कुछ करो चुप रहेंगे। लाठी मारो, काला कहो, सर्वस्व छीन लो, इससे होता कुछ नहीं, किंतु इसी दरवाजे को छोड़ दो। प्राचीन काल में पठान लोग आते जाते थे, कोई स्थिर होकर राज्य नहीं कर सका क्योंकि धर्म पर वे बराबर आघात करते रहे। परंतु दूसरी ओर मुगल राज्य किस प्रकार सुदृढ़, प्रतिष्ठित तथा बलशाली हुआ, कारण यही है कि मुगलों ने इस स्थान पर आघात नहीं किया। भारतीय ही तो मुगलों के सिंहासन के आधार थे। जहांगीर, शाहजहां, दारा, शिकोह आदि सभी की माताएं हिंदू थीं। और देखो, जो ही भाग्यहीन औरंगजेब ने उस स्थान पर आघात किया, क्यों ही इतना बड़ा मुगल राज्य स्वप्न की तरह हवा हो गया। अंग्रेजों का यह सुदृढ़ सिंहासन किस चीज के ऊपर प्रतिष्ठित है? कारण यही है कि किसी भी अवस्था में अंग्रेज उस धर्म के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते। पादरियों ने थोड़ा बहुत हाथ डालकर ही तो सन 1857 में हंगामा उपस्थित किया था। अंग्रेज जब तक इसको अच्छी तरह समझते तथा इसका पालन करते रहेंगे, तब तक उनका राज्य कई पीढ़ियों तक संभव है बना रहे। विज्ञ बहुदर्शी अंग्रेज भी इस बात को समझते हैं।
0: उन्होंने समझाया था कि हर देश तथा जाति के पीछे एक खास शक्ति होती है, उसी जाति से चरित्र गठन होता है।
2: उसी एक महाशक्ति का फ्रांसीसियों के विस्तार के रूप में और हिंदुओं के हृदय में मुक्ति लाभ की इच्छा के रूप में विकास हुआ है। किंतु इसी महाशक्ति की प्रेरणा से कई शताब्दियों से नाना प्रकार के सुख दुखों को झेलते हुए फ्रांसीसी और अंग्रेजी चरित्र गठित हुआ है, और उसी की प्रेरणा से लाखों शताब्दियों के आवर्तन में हिंदुओं के जातीय चरित्र का विकास हुआ है।
1: उन्हें अपने देशवासियों पर पूरा भरोसा था कि एक दिन वे अपने खोए हुए आदर्शों को फिर से प्राप्त कर लेंगे।
2: ये सोचना कि हमारे राष्ट्रीय आदर्श में भूल रही है निरी मूर्खता है। पहले अन्य देशों में जाइए, अपनी आंखों से देखकर, दूसरों की आंखों से नहीं। उनकी अवस्था और रहन सहन का अध्ययन कीजिए, और यदि मस्तिष्क हो तो उन पर विचार कीजिए। फिर अपने शास्त्रों और पुराने साहित्य को पढ़िए और समस्त भारत की यात्रा कीजिए तथा विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले आदिवासियों के चाल चलन, आचार विचार का विस्तीर्ण दृष्टि और उन्नत मस्तिष्क से, बेवकूफों की तरह नहीं, विचार कीजिए। तब समझ सकोगे कि जाति अभी भी जीवित है, दुखदुखी चल रही है, केवल बेहोश हो गई है। और देखोगे कि इस देश का प्राण धर्म है, भाषा धर्म है तथा भाव धर्म है। आपकी राजनीति, समाज नीति, रास्ते की सफाई, प्लेग निवारण, दुर्भिक्ष पीड़ितों को अन्नदान आदि आदि चिरकाल से इस देश में जैसे हुआ है वैसे ही होगा। अर्थात धर्म के द्वारा यदि होगा तो होगा, अन्यथा नहीं। आपके रोने चिल्लाने का कुछ भी असर न होगा।
1: स्वामी जी सभी को मनुष्य बनने की शिक्षा देते थे, व्यर्थ के आचार विचार को वे नहीं मानते थे।
2: एक बात पर विचार कर देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को बनाते हैं? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। परस्पर के घृणित द्वेष भाव को छोड़िए और सउद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्वीर्य का अवलंबन कीजिए। आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो अपनी कीर्ति यहीं छोड़ जाइए। तुलसी आयो जगत में, जगत हसे तुम रोए, ऐसे करनी कर चलो, आप हसे जग रोए। अगर ऐसा कर सको तब तो तुम मनुष्य हो, अन्यथा तुम कैसे मनुष्य हो?
0: हमारे देश में बहुत से लोग अंग्रेजों के चाल चलन का अनुसरण करने लगे थे। उसी में वे अपने को सभ्य तथा अंग्रेजों के बराबर समझते थे। परंतु स्वामी जी ने उन्हें समझाकर कहा था,
2: पाश्चात्य जाति के गुणों को अपने सांचे में ढालकर लेना होगा। मेरे मित्रों, एक बात आपको और समझ लेना चाहिए, हमें अवश्य ही अन्यान्य जातियों से बहुत कुछ सीखना है। जो मनुष्य कहता है कि हमें कुछ नहीं सीखना है, समझ लो कि वो मृत्यु की राह पर है। जो जाति कहती है कि हम सर्वज्ञ हैं, उसकी अवनति के दिन बहुत निकट हैं। जितने दिन जीना है उतने दिन सीखना है, उसे अपने सांचे में ढाल लेना है, अपने असल तत्व को सदा बचाकर फिर बाकी चीजें सीखनी होंगी। खाना तो सब देशों में एक ही है, पर हम पैर समेट कर खाते हैं और यूरोपीय पैर लटका कर खाते हैं। अब मान लो कि मैं उन्हीं की तरह खाता हूं, तो क्या मुझे भी उन्हीं की तरह टांग लटका कर बैठना पड़ेगा? ऐसा होने से निश्चय ही मेरी टांग यम के ग्रह की ओर प्रस्थान करेंगी। इस दुख में जो प्राण जाएगा उसका क्या लाभ? इसलिए हमें उनका भोजन पैर समेट कर ही खाना होगा। इसी प्रकार जो कुछ भी विदेशी बातें सीखनी होंगी, उन्हें अपनी बनाकर पैर समेट कर अपने वास्तविक जातीय चरित्र की रक्षा कर तब सीखनी होगी।
1: उन्होंने जातिगत भिन्नता को समझाया था, उसके कारण बताए थे, पर कभी किसी की निंदा नहीं की।
2: वे भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। काको बंदों काको निंदों दोनों पल्ला भारी। हाँ, ये अवश्य है कि भले की भी श्रेणियां हैं। हमारे विचार से तीन चीजों से मनुष्य का संगठन होता है, शरीर मन और आत्मा। पहले शरीर की बात लीजिए, जो सबसे बाहरी चीज है। देखिए शरीर में कितना भेद है, नाक मुंह गठन लंबाई चौड़ाई रंग केश आदि में कितनी विभिन्नताएं हैं।
0: उन्होंने रंग भेद पर कहा था,
2: आधुनिक पंडितों का विचार है कि रंग की भिन्नता वर्ण संकरता से उपस्थित होती है। गर्म देश और ठंडे देश के भेद से कुछ भिन्नता जरूर होती है, किंतु काले और गोरे का असली कारण पैतृक है। बहुत ठंडे देशों में भी काले रंग की जातियां देखी जाती हैं, एवं अत्यंत उष्ण प्रदेश में भी खूब गोरी जाति बसती है। कनाडा निवासी अमेरिका के आदि मनुष्य और उत्तरीय ध्रुव प्रदेश की एस्किमो जाति काली है, तथा भूमध्य रेखा के पास बोर्नियो सेलेबीज आदि टापू में बसने वाले आदिम निवासी गौरांग हैं, जबकि उनकी जलवायु गर्म है। पर चाहे गोरे हों अथवा काले, दुनिया की सब जातियों की अपेक्षा ये भारतीयों की जाति अधिक सुंदर और श्री संपन्न है। ये बात मैं अपनी जाति की बढ़ाई करने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये जग प्रसिद्ध बात है। इस देश में प्रति सैकड़ा जितने स्त्री पुरुष सुंदर हैं उतने और कहां हैं? इसके बाद विचार कर देखो, दूसरे देशों में सुंदर बनने में जो लगता है उसकी अपेक्षा हमारे देश में कितना कम लगता है। कारण यह है कि हमारा शरीर अधिकांश खुला रहता है। दूसरे देशों में कपड़े लत्ते से ढककर कुरूपता को बदलकर सुंदरता बनाने की चेष्टा की जाती है।
1: परंतु स्वामी जी ने पश्चिमी देशों के लोगों के स्वास्थ्य की बहुत तारीफ की थी,
2: किंतु स्वास्थ्य के संबंध में पाश्चात्य देशवासी हमारी अपेक्षा अधिक सुखी हैं। उन देशों में 40 वर्ष के पुरुष को जवान कहते हैं, छोकरा कहते हैं, 50 वर्ष की स्त्री युवती कहलाती है। अवश्य ही ये लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, एवं सबसे अच्छी बात तो ये है कि बाल विवाह नहीं करते। हमारे देश में जो दो एक बलवान जातियां हैं उनसे पूछ कर देखिए कितनी उम्र में विवाह करते हैं। गोरखाली पंजाबी जाट अफरीदी आदि पहाड़ी जातियों से पूछिए। इसके बाद शास्त्र को पढ़ देखिए, 30 25 और 20 वर्ष में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों को क्रमानुसार विवाह करने को लिखा है। आयु बल वीर आदि में इनमें और हम लोगों में बहुत भेद है। हमारी बल वृद्धि 30 वर्ष की उम्र पार करते ही शेष हो जाती है और वे लोग उस समय बदन झाड़ कर उठ खड़े होते हैं।
0: स्वामी जी ने दोनों देशों में होने वाली बीमारियों की भी व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है।
2: हम लोग निरामिष भोजी हैं, हमें अधिकांश पेट के ही रोग होते हैं। हमारे अधिकतर बूढ़े इसी पेट की बीमारी से मरते हैं। वे मांस भोजी हैं, उन्हें अधिकतर हृदय की बीमारी होती है। पाश्चात्य देशों में अधिकतर बूढ़े बूढ़ी हृदय रोग और फेफड़े की बीमारी से मरते हैं। एक पाश्चात्य देशीय विद्वान डॉक्टर पूछते हैं कि क्या पेट की बीमारी से पीड़ित लोग प्रायः निरुत्साह और बैरागी होते हैं? हृदय आदि शरीर के ऊपरी भाग के रोगों में आशा और पूरा विश्वास रहता है। हैजे का रोगी आरंभ से ही मृत्यु के भय से अस्थिर हो जाता है। टीबी का रोगी मरने के समय तक भी विश्वास करता है कि उसे आराम हो जाएगा। अतएव क्या इसलिए भारतवासी सदा मृत्यु और वैराग्य की बातें कहा करते हैं? मैं तो अभी तक इस प्रश्न का कोई समुचित उत्तर ही नहीं सोच सका, किंतु बात विचारणीय है अवश्य।
1: उन्होंने आगे और भी कहा है कि
2: हमारे देश में दांत और केश के रोग बहुत कम होते हैं और उस देश में बहुत ही कम लोगों के स्वाभाविक दांत होते हैं। गंजे तो सभी जगह पाए जाते हैं। हमारी स्त्रियां नाक और कान गहना पहनने के लिए छिदवाती हैं। वहां की भले घर की स्त्रियां नाक कान नहीं छिदवाती, किंतु कमर को बांधकर रीढ़ की हड्डी को मरोड़कर प्लीहा और यकृत को अपनी जगह से हटाकर शरीर को ही कुरूप बना डालती हैं। अपने शरीर को सुंदर बनाने के कारण उन्हें मृत्यु का कष्ट झेलना पड़ता है।
0: स्वामी जी की पैनी नजर उनके पोशाक पर भी पड़ी थी। उसकी तुलना भी वे हमारी पोशाकों से करते हैं।
2: पाश्चात्य देशीय पोशाक कामकाज करने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। धनी लोगों की स्त्रियों की सामाजिक पोशाक को छोड़कर अन्य स्त्रियों की पोशाक भद्दी होती है। हमारी स्त्रियों की साड़ी और हमारे पुरुषों का चोगा, चपकन और पगड़ी के सौंदर्य की तुलना इस पृथ्वी पर है।

0: करने के लिए सब दौड़ पड़ती हैं। आजकल कपड़ा बेचने वाले बड़े बड़े दुकानदार नए फैशन का प्रचार करती हैं। कितने करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इस पोशाक बनाने में लगते हैं, इसे हम समझ नहीं सकते।
1: उन्हें पश्चिमी फैशन का भी ज्ञान था, वे बड़े मजे लेकर वहाँ के फैशन की बात करते हैं।
0: इन नई पोशाकों की सृष्टि करना इस समय एक बड़ी कला हो गई है। किसी स्त्री के शरीर और केश के रंग के साथ किस रंग की पोशाक मेल खाएगी, उसके शरीर का कौन अंग ढकना होगा और कौन खुला रखना होगा, इत्यादि बातों पर खूब गंभीर विचार कर तब पोशाक तैयार करनी पड़ती है। इसके बाद दो चार बहुत ऊंची श्रेणी की महिलाएं जो पोशाक पहनती हैं, वही पोशाक अन्य स्त्रियों को भी पहननी पड़ेगी, नहीं तो उनकी जाति चली जाएगी। इसी का नाम फैशन है। फिर भी ये फैशन घड़ी घड़ी बदलता है। वर्ष के चार मौसमों में चार बार बदलना तो आवश्यक ही है। इसके अलावा और भी कितने समय आते हैं जब पोशाक बदली जाती है ना मजे की बात।
2: इन बातों को बताते हुए स्वामी जी खूब मजा लेते थे। फैशन के बारे में तो उनकी बहुत हंसी उड़ाते थे।
0: जो बहुत अमीर होते हैं उनके कपड़े पेरिस से बनकर आते हैं, बाकी लोग अपने देश में ही उनकी नकल कर कपड़े बनवाते हैं, किंतु स्त्रियों की टोपियां तो फ्रांस की ही बनी होनी चाहिए। जिसके पास फ्रांस की ही बनी टोपी नहीं है वो अच्छी स्त्री ही नहीं समझी जाती। अंग्रेज और जर्मन स्त्रियों की पोशाक अच्छी नहीं समझी जाती। 10-20 अमीर स्त्रियों को छोड़कर वे अच्छे कपड़े नहीं पहनती, इसलिए दूसरे देशों की स्त्रियां उन पर हंसती हैं। बहुत से अंग्रेज पुरुष बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। बिना किसी भेद के अमेरिका के सभी स्त्री पुरुष बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं। यद्यपि विदेशी वस्त्रों का आना रोकने के लिए अमेरिका की सरकार पेरिस और लंदन के कपड़ों पर बहुत अधिक चुंगी लेती है, फिर भी सभी स्त्रियां अपने कपड़े पेरिस तथा सभी पुरुष अपने कपड़े लंदन से ही मंगवाते हैं। तरह तरह के रंग के पश्मीना और बनात तथा रेशमी कपड़े प्रतिदिन निकलते हैं। लाखों आदमी उसी को काट छांट कर पोशाक बनाते हैं। पोशाक यदि ठीक ढंग की न हुई तो सभ्य पुरुष या स्त्री का रास्ते में निकलना ही कठिन हो जाता है। हमारे देश में कपड़ों के फैशन का यह हंगामा नहीं है, पर गहनों में थोड़ा थोड़ा फैशन घुस रहा है। रेशमी और ऊनी कपड़े के व्यापारी उन देशों में दिन रात फैशन के परिवर्तनों पर और लोगों को कौन फैशन अधिक पसंद हुआ इस सब पर खूब तीखी नजर रखते हैं, अथवा कोई नया फैशन तैयार कर उस ओर लोगों के मन को आकृष्ट करने की चेष्टा करते हैं। जहां एक बार भी अंदाजा पक्का बैठ गया कि वो व्यवसायी माला माल हो गया। जब तृतीय नेपोलियन फ्रांस देश के बादशाह थे, उस समय साम्राज्ञी येजुनी पाश्चात्य देश की वेशभूषा की अधिष्ठात्री देवी समझी जाती थी। उन्हें कश्मीरी शाल बहुत पसंद था, इसलिए यूरोपीय लाखों रुपए का शॉल खरीदते थे। नेपोलियन के पतन के पश्चात फैशन बदल गया और कश्मीरी शॉलों की खपत यूरोप में रुक गई।
2: स्वामी जी जब ये बातें सुनाते तो लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे, क्योंकि उनका सुनाने का ढंग ही इतना मजेदार होता था कि लोग सुनते ही चमत्कृत हो जाते थे। अब स्नान करने की प्रथा पर वे क्या कहते थे, सुनिए।
0: पहले शरीर को ही लेकर देखिए, बाह्य और आभ्यंतरिक शुद्धि का नाम ही पवित्रता है। मिट्टी जल आदि के द्वारा शरीर शुद्ध होता है। दुनिया की ऐसी कोई जाति नहीं है जिसका शरीर भारतीयों के सदृश साफ हो। भारतीयों के अतिरिक्त और किसी भी जाति के लोग शौचादि में जल का इतना अधिक व्यवहार नहीं करते। यदि ये कहें कि पाश्चात्य देश वाले नहाते ही नहीं तो भी कोई हर्ज नहीं। भारत में आने के कारण अंग्रेजों ने अपने देश में स्नान करने की प्रथा चलाई है। जो विद्यार्थी विलायत से पढ़कर लौटे हैं उनसे पूछिए कि वहां स्नान करने का कितना कष्ट है। जो लोग स्नान करते हैं अर्थात सप्ताह में एक दिन, उसी दिन वे भीतर पहनने का कपड़ा गंजी अधभैया आदि बदलते हैं। अवश्य ही कुछ अमीर लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं। अमेरिका वालों में प्रतिदिन स्नान करने वालों की संख्या अधिक है। जर्मनी वाले सप्ताह में एक दिन और फ्रांस तथा दूसरे देश वाले तो बहुत ही कम स्नान करते हैं। स्पेन इटली आदि गर्म देश हैं, फिर भी वहाँ लोग बहुत कम स्नान करते हैं, लहसुन बहुत खाते हैं, पसीना बहुत होता है, पर सात जन्म में भी जल का स्पर्श नहीं होता। उनके शरीर की दुर्गंध से भूतों के 14 पुरखे भी भाग जाएंगे। भूत तो लड़के बच्चे हैं।
1: इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक आप बीती कही थी।
0: सभ्यता की राजधानी, रंग ढंग भोग विलास का स्वर्ग, विद्या शिल्प के केंद्र पेरिस में एक बार मेरे एक धनी मित्र बुलाकर ले गए। एक किले के समान होटल में उन्होंने मुझे ठहराया। राजाओं जैसा खाना मिलता था, किंतु स्नान घर का नाम भी नहीं था। 2 दिन किसी प्रकार मैंने सहा, फिर मुझसे नहीं सहा गया था। तब मैंने अपने मित्र से कहा, भाई ये राजभोग तुम्हें ही मुबारक हो, मैं यहाँ से बाहर जाने के लिए व्याकुल हो रहा हूँ। ये भीषण गर्मी और स्नान करने का कोई ठिकाना ही नहीं, पागल कुत्ते के जैसे मेरी दशा हो रही है। ये बात सुनकर मेरे मित्र बहुत दुखी हुए और होटल के कर्मचारियों पर बड़े कुपित हुए। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें यहां नहीं ठहरने दूंगा, चलो चलो कोई दूसरी अच्छी जगह ढूंढी जाए। 12 बड़े होटल देखे गए, पर स्नान करने का प्रबंध कहीं नहीं था। अलग स्नान करने के स्थान थे, जहां एक बार 4-5 रुपया देकर स्नान किया जा सकता था। उसी दिन शाम को मैंने एक अखबार में पढ़ा कि एक बुढ़िया स्नान करने के लिए हौज में बैठी और वहीं मर गई। डॉक्टर चाहे जो कहें, पर मैं तो यही कहूंगा कि जीवन में प्रथम बार ही बुढ़िया के अंग को उतने जल का स्पर्श हुआ होगा, इसलिए उसकी अचानक मृत्यु हो गई। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रूस वाले तो सर्वथा मलेच्छ हैं, तिब्बत से ही मलेच्छता आरंभ हो जाती है, पर अमेरिका के प्रत्येक निवास गृह में अवश्य ही स्नानागार और नल रहता है।
2: सुनाते सुनाते उन्होंने भारतीयों को भी आड़े हाथों लिया।
0: किंतु देखिए, हम में और इनमें कितना अंतर है। हम हिंदू किस लिए स्नान करते हैं? हमें अधर्म का डर है, और पाश्चात्य लोग शरीर साफ करने के लिए हाथ मुंह धोते हैं। हमारे शरीर में चाहे मैल और तेल लगा ही क्यों ना रहे, सिर्फ ऊपर पानी उड़ेल लेने से हमारा काम चल जाता है। हमारे दक्षिणात्य भाई लोग इतना लंबा चौड़ा तिलक लगाते हैं, उसे झावे से भी धोकर साफ करना जरा टेढ़ी खीर है। हमारे स्नान करने की प्रथा बड़ी सरल है, कहीं भी डुबकी मार लेने से काम चल जाता है, किंतु पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं है। उन्हें एक टोकरी कपड़ा ही खोलना पड़ता है, बटन हुक और काज का तो कहना ही क्या। हमें शरीर दिखलाने में कोई लज्जा नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। बाप बेटे के सामने विवस्त्र हो सकता है, पर स्त्रियों के सामने सिर से पैर तक कपड़ा पहनना ही होगा।
1: कहते कहते स्वामी जी भी हंस पड़े और बोले,
0: और फिर देश भेद के कारण जो कार्य अनिवार्य हैं, उन्हें समाज शांत रूप से अपना लेता है। हमारे जैसे गर्म देश में भोजन करने के समय हम आधा घड़ा पानी पी डालते हैं, फिर हम ना डकारें तो क्या करें? किंतु पाश्चात्य देशों में डकारना बहुत असभ्य काम है। पर खाते खाते जेब से रुमाल निकालकर यदि नाक झाड़कर साफ की जाए तो कोई हर्ज नहीं, किंतु हमारे देश में ये बड़ी घृणित बात है। ठंडे देशों में बीच बीच में नाक साफ किए बिना बैठा ही नहीं जा सकता। हम लोग मैले से अत्यंत घृणा करते हैं, फिर भी हम बहुत मैले रहते हैं। हमको मैले से इतनी घृणा है कि जिसने मैला छुआ उसे स्नान करना पड़ेगा, इसलिए दरवाजे पर मैले के ढेर को हम सड़ने देते हैं। सिर्फ ध्यान इसी बात का रहता है कि हम उसे छूते तो नहीं। पर इधर जो नरक कुंड का वास होता है उसका क्या? एक अनाचार के भय से दूसरा महाघोर अनाचार। एक पाप से बचने के लिए हम दूसरा गुरुतर पाप करते हैं। जो अपने घर में कूड़े का ढेर रखता है वो अवश्य ही पापी है, इसमें संदेह ही क्या है? उसका दंड भोगने के लिए उसे ना तो दूसरा जन्म ही लेने की आवश्यकता होगी और ना बहुत देर तक संसार में ठहरना ही पड़ेगा।
2: आपने स्वामी जी के बताए किस्से सुने। प्राच्य और पाश्चात्य में प्रचलित आचार व्यवहारों की विषमता को जाना, आगे की कड़ियों में हम आपको ऐसी ही कुछ और रोचक बातें सुनाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। श्रोताओं, अब हमारी प्रातःकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। दिन के ठीक 12 बजे हैं। हमारी दोपहर कालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। हमारे कार्यक्रमों को आप प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात्रि 10 बजे तक निरंतर सुन सकते हैं मिक्सलार एप्लीकेशन पर भी। जुड़े रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। आइए श्रोताओं, सुनते हैं अगला कार्यक्रम तराने आजादी।
2: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर यह रेडियो आज़ाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला। लीजिए सुनिए भारत भारती। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुप्रसिद्ध गायिका कलापिनी कोंकली का गायन।

नमस्कार। चांदनी केदार से आज शुरुआत करूंगी। बहुत पुरानी परंपरागत बंदिश है, उसी के साथ में एक और परंपरागत द्रुत रचना आपको केदार में सुनाऊंगी। तो शुरुआत में

अब मैं आपको एक रूपक में निबद्ध सुनाती हूँ। राग का नाम है दुर्गा और उसी के साथ में एक छोटा सा उसका तराना है एक ताल में निबद्ध। दोनों ही रचना कुमार जी द्वारा बनाई गई है और जो रूपक ताल में निबद्ध जो मदले की रचना मैं आपको सुनाऊंगी वो विशेष रूप से शरद पूर्णिमा के लिए कुमार जी ने बनाई थी। एकमात्र शायद ऐसी बंदिश है जो विशेष रूप से कोजागिरी के लिए बनाई गई है। तो आपको एक छोटी सी बंदिश सुनाती हूँ, उसके बाद में तराना।

0: इस साड़ी का तोहफा देना एक बड़ी ही महानता मानी जाती है।
1: यहाँ आपको बता दें कि सिल्क की बनी बनारसी साड़ियाँ बनारस की प्राचीन संस्कृति का अंग नहीं रही हैं। लंदन का एक व्यापारी रॉल्फ फिच 16वीं शताब्दी में भारत आया। उस समय भारत पर सम्राट अकबर की हुकूमत थी। फिच ने भारत के अनेक शहर घूमे जिनमें वाराणसी भी था। उसने लिखा है कि वाराणसी सूती कपड़ों का एक प्रमुख केंद्र था।
0: श्रोताओं, एक बात हम आपको बता दें, सम्राट अकबर के काल तक वाराणसी सिल्क टेक्सटाइल के लिए नहीं जाना जाता था। वास्तव में बनारस की साड़ियां तो गुजरात के बुनकरों की देन है। 17वीं शताब्दी के बाद गुजरात में भयानक अकाल पड़ा और वहां से बहुत सारे बुनकर पलायन करके बनारस में आ गए और इन्हीं लोगों ने बनारसी साड़ियों की नींव डाली।
1: बनारस की बात चले तो यहाँ की गलियाँ कैसे छूट सकती हैं? पूरी दुनिया में मशहूर हैं यहाँ की गलियाँ।
0: बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं तो कई बार भटक चुका हूँ इन गलियों में।
1: बाहर वालों के लिए तो भूल भुलैया ही है, तो यहाँ वालों के लिए तोहफा? सड़क पर जाम लगा है, कोई बात नहीं, भीतर ही भीतर गलियों से निकल जाइए।
0: आप पूरा का पूरा शहर इन गलियों

0: पर, साड़ियां, गहने, ऐसा लगता है कि सपनों की गलियों में तैर रहे हैं आप। विदेशी पर्यटकों की तो भरमार रहती है इस गली में, लेकिन बार्गेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। कुछ खरीदना हो तो होशियार रहिएगा आप।
1: अरे हाँ, बनारस जाइएगा तो बनारसी लस्सी पीना मत भूलिएगा।
0: अच्छा,
1: वो स्वाद, वो सुगंध, आहा, वो स्टाइल आप कहीं और पा ही नहीं सकते। ताजी मलाईदार दही आपके सामने ही फेंटी जाएगी और बर्फ का चूरा मिलाया जाएगा, शक्कर मिलाई जाएगी और ऊपर से गुलाब जल डालकर आपको सर्व की जाएगी मलाई की परत के साथ
0: जी।
1: मिट्टी के ये बड़े बड़े कुल्हड़ में देखते ही बस मुंह में पानी आ जाएगा।
0: अरे मुझे तो सोच कर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लस्सी बनाने की परंपरागत कला और पूरी तरह से हैंडमेड काम, ना मिक्सी ना फ्रिज और लस्सी की लस्सी।
1: लस्सी के अलावा एक और भी चीज मशहूर है बनारस की।
0: मुझे पता है आपका इशारा क्या है, बनारसी पान की तरफ ना।
1: हाँ, बनारसी पान भी बनारस की एक पहचान है। यूं तो कलकतिया पान भी मशहूर है।
0: हाँ।
1: पर बनारसी पान की बात ही कुछ और है। क्या आप जानते हैं कि इन दोनों में बेसिकली क्या अंतर है?
0: भाई, कलकतिया पान बिल्कुल पक्का हरा होता है और बनारसी पान हल्का सा पीलापन लिए हुए होता है। मुझे तो इतना ही पता है और इसीलिए इस कलकतिया पान की तुलना में इनमें कड़वापन कम होता है। बनारस के लोगों की कमजोरी है यह पान और शायद बनारस के बाहर के लोगों की भी। तभी तो डॉन फिल्म का यह गाना कि खाए के पान बनारस वाला, आज भी जब बजता है ना तो लोग झूम उठते हैं। श्रोता, बनारसी पान के बाद आपको याद दिला दे कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारसी घराना बड़ा प्रसिद्ध है और यह घराना तबला वादन में महारत रखता है।
1: धर्म प्राण वाराणसी को भारत के 7 मोक्षदायी स्थलों में एक माना जाता है।
0: बिल्कुल,
1: गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका व द्वारवती स्थल मोक्षदायक हैं।
0: भारतीय उपमहाद्वीपों के शक्तिपीठों के बारे में आपने तो सुना ही होगा। ये वे स्थल है जहां पर दक्ष की पुत्री तथा भगवान शिव की पत्नी के विभिन्न अंग कट करके गिरे थे। इन सभी स्थलों पर आज शक्तिपीठों की स्थापना की गई है और ये पीठ अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। और वाराणसी में सती के कान की बाली गिरी थी, इस स्थान पर ही आज विशालाक्षी मंदिर बना हुआ है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद। कार्यक्रम है अतुल्य भारत। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज। आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: चलिए श्रोताओं, अब हम बात करते हैं वाराणसी से संबंधित कुछ महापुरुषों की।
0: बिल्कुल,
1: वाराणसी असाधारण नगर है। यहाँ के वातावरण में चैतन्य लहरियां बहुत होती हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है।
0: हाँ।
1: ऐसे लोगों का नाम गिनाने बैठे जो वाराणसी के दीवाने रहे हैं तो एक पूरा ही एपिसोड नाकाफी रहेगा, लेकिन हम कुछ चुनिंदा लोगों की बात करते हैं।
0: चलो शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं महाकवि तुलसीदास से। इन्होंने अपना अंतिम जीवन वाराणसी के एक गंगा घाट पर व्यतीत किया और अंत में देह त्याग भी यहीं किया। इस घाट का नाम तुलसी घाट कहलाता है।
1: गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह कबीर दास जी का भी वाराणसी से गहरा संबंध है। उनका पालन पोषण यहाँ के एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। जिस जगह पर कबीर रहे और पले वो आज कबीर चौरा कहलाता है।
0: अब हम बात करते हैं महामना मदन मोहन मालवीय की। इनका जन्म तो इलाहाबाद में ही हुआ था, पर इनकी असली कर्मभूमि रही वाराणसी, जहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी के BHU की स्थापना करके वे अमर हो गए।
1: श्रोताओं, आपको ये बता दें कि ये यूनिवर्सिटी न केवल भारत बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। इसका केवल मुख्य कैंपस ही 1300 एकड़ में फैला हुआ है।
0: हाँ, तो मदन मोहन मालवीय जो पेशे से वकील थे, भारत की गरीबी का सबसे प्रमुख कारण अशिक्षा मानते थे, सो उन्होंने वाराणसी में एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की स्थापना करने की ठान ली। और उस समय भारत में जो यूनिवर्सिटीज थी वे केवल एफिलेटेड थी।
1: मदन मोहन जी के सामने रास्ता बहुत ही कठिन था। सरकार को राजी करना था, जमीन का इंतजाम करना था और ढेर सारा पैसा चाहिए था। लेकिन जब चाह होती है तो राह निकल ही आती है। राजा बनारस ने जमीन दे दी, भारत के धनपतियों ने अपनी तिजोरियां खोल दी और कांग्रेस के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने कानून भी पास कर दिया।
0: सबसे बड़ा सहयोग तो एनी बेसेंट का मिला, जो पहले ही बनारस हिंदू स्कूल स्थापना कर चुकी थी। यह स्कूल ही बीएचयू के लिए आधारशिला बन गया और इस तरह जनता के पैसे से जनता की ताकत पर सन 1916 में भारत का पहला रेसिडेंशियल विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया।
1: जो रोल डॉक्टर हरि सिंह गौर का सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में था, उससे भी बढ़कर मदन मोहन मालवीय जी का बीएचयू की स्थापना में रहा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी के सामने पैसे की जबरदस्त तंगी थी।
0: मदन मोहन केवल एक शिक्षा शास्त्री ही नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी महान सेनानी थे। कांग्रेस में उनका क्या स्थान था, यह इस बात से ही प्रमाणित होता है कि एक दो नहीं बल्कि कुल 4 बार वे इस संस्था के प्रेसिडेंट चुने गए। इसी संस्था के मंच पर सबसे पहले 1905 में बनारस अधिवेशन के दौरान ही उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की कि वे इस शहर में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करना चाहते हैं।
1: भारत के सबसे सरल, नेक और ईमानदार प्रधानमंत्रियों में जिनका नाम सबसे पहले जुमा पर आता है, वे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री जी भी बनारस के ही लाल थे, जो गंगा उस पार के गांव में रहते थे।
0: गरीबी बेइंतहा थी, पढ़ने के लिए गंगा पार करके शहर आना पड़ता था, पर नाव का किराया देने के लिए पैसा नहीं होता था, तो वे तैर करके गंगा पार करते थे। बनारस की गंगा कोई मामूली गंगा नहीं है, इसे पार करना एक जीवट का काम है, और जिसे लाल बहादुर शास्त्री ने किया, दुबले पतले कमजोर से इंसान ने।
1: लेकिन पढ़ाई का जज्बा भुजाओं में बल बनकर नदी पार कराता रहता। शायद ये गंगा जल के स्पर्श का ही प्रभाव रहा होगा कि उनकी रग रग में ईमानदारी और सच्चाई भर गई। कहते हैं कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जब उनका देहांत हुआ तो वे अपने पीछे संपत्ति नहीं बल्कि कर्ज छोड़ गए थे।
0: हाँ, मुझे याद है, वाराणसी शहर बड़ी शिद्दत से अपने इस लाल को याद करता है। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मध्य प्रदेश के खुजराव हवाई अड्डे से यहाँ के लिए सीधी उड़ान भी मिलती है।
1: हम वाराणसी के कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, पर इच्छा रखते हैं कि अगर आपने वाराणसी न देखा हो तो एक बार यहाँ जरूर जाएं।
0: बिल्कुल श्रोताओं, अब वाराणसी की यात्रा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपको फिर ले चलेंगे किसी दूसरे नगर की यात्रा पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद। इस कार्यक्रम का आलेख तैयार किया था श्रीमती पूनम जायसवाल ने और प्रस्तुत किया था प्रमोद शर्मा और
1: कंचन राजानी ने।
0: सुनते रहिए 90.8 MHz पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 MHz पर यह रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है। मैं हूं आपके साथ आपके रेडियो मित्र प्रमिला। आज के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत भारती, और आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुप्रसिद्ध गायक पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र का गायन।

नमस्कार। हमने आज ऐसे कुछ रचनाएं चुनी हैं जिसमें नदियों का थोड़ा जिक्र है। राग तिलक कामोद से हम लोग अपना पूजा आरंभ कर रहे हैं। राग तिलक कामोद में झप ताल 10 मात्रा में निबद्ध रचना है। सप्त सुरन को ध्यान धरिए गुनिजन, विषम भवसागर से पार उतरिए। सप्त सुरन को ध्यान धरिए गुनिजन। इसके पश्चात मध्य लय 3 ताल में रचना, नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी, डगर चलत मोसो करत रार, अब नीर भरन कैसे जाऊं सखीरी।

आज के भारत भारती कार्यक्रम में आपने पंडित राजन मिश्र और पंडित साजन मिश्र का गायन सुना। अब ये कार्यक्रम समाप्त करने की प्रमिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण है।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष, जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

0: जीवन सौरभ। दो दोस्तों की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम अमन था। अमन एक बहुत ही दयालु लड़का था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वो कोई भी हो। एक दिन अमन अपने स्कूल से घर जा रहा था, जब उसने देखा कि एक छोटा बच्चा रो रहा है। एक कुत्ता बच्चे के पीछे भाग रहा था, जो उसे काटने की कोशिश कर रहा था। अमन दौड़ा और बच्चे को कुत्ते से बचाया। बच्चे का नाम रवि था। रवि अमन का बहुत आभारी था। उसने अमन को बताया कि वह शहर में रहता है। वो अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। अमन ने रवि को दिलासा दिया और उसे बताया कि वो उसको दोस्त बनाना चाहता है। रवि और अमन जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। वो हर दिन एक साथ खेलते और एक साथ समय बिताते थे। अमन ने रवि को अपने शहर को दिखाया और उसे अपने साथियों से मिलवाया। एक दिन अमन और रवि एक पार्क में खेल रहे थे, जब उन्होंने देखा कि एक लड़का एक छोटे से जानवर को पीट रहा है। अमन दौड़ा और लड़के को रोका। उसने उसे बताया कि जानवरों को मारना गलत है। लड़का अमन की बात सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसने अमन से माफी मांगी और जानवर को छोड़ दिया। अमन खुश था कि उसने लड़के से जानवर को बचाने में मदद की। अमन और रवि ने कई सालों तक दोस्ती की। उन्होंने एक साथ बहुत सारी यादें बनाई। अमन हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता और उसने रवि को भी वैसा ही बनने के लिए प्रेरित किया। अंत में अमन बड़ा हो गया और उसे एक नौकरी मिल गई। वो एक दूसरे शहर में रहने चला गया, लेकिन वो रवि को कभी नहीं भूला। वो अक्सर उसे फोन करता था और उसे बताता था कि वो कैसा है। एक दिन अमन को पता चला कि रवि बीमार है। वो रवि से मिलने के लिए अपने शहर वापस आया। वो रवि को देखकर बहुत दुखी था। वो जानता था कि रवि जल्दी ही मर जाएगा। अमन ने रवि को बताया कि वो उसके लिए कितना मायने रखता है। उसने उसे बताया कि वो हमेशा उसे याद रखेगा। रवि अमन की बात सुनकर मुस्कुराया। उसने अमन को बताया कि वो बहुत ही अच्छा दोस्त है। उसने अमन को बताया कि वो उसे कभी नहीं भूलेगा और रवि कुछ दिनों बाद मर गया। अमन बहुत दुखी था। वो जानता था कि वो कभी भी रवि को नहीं भूलेगा। वो उसे हमेशा अपने दोस्त के रूप में याद रखेगा। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि दूसरों की मदद करना कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है और हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और अच्छाई का साथ देना चाहिए।
1: जीवन सौरभ।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं हूँ भगवती सक्सेना। हमारी ये सभा रात्रि 10 बजे तक निरंतर रहेगी। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।
1: शाम की सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त रत्नेश सोनी। आपने ट्यून किया FM 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आइए सुनिए कार्यक्रम अक्षय निधि।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय।

0: अक्षय निधि कार्यक्रम में आज सुनिए ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 42 से वाचन। ऋषि है ग्रत्स्मत एवं भार्गव शौनक, देवता है शकुंत एवं छंद है त्रिष्टुप।
1: कनिक्रद जनुषम प्रब्रुवाण इयर्ति वाच मरितेव नावम सुमंगलश्च शकुने भवासि मा त्वा का चिदभिभा विश्वा विदत। जिस प्रकार मल्लाह नाव को चलाता है उसी प्रकार उपदेश देने वाला शकुनी बार बार उत्तम वाणी द्वारा प्रेरित करता है। हे शकुनी, आप सबके कल्याण करने वाले हों, आपको कोई आक्रमणकारी शत्रु किसी भी प्रकार का कष्ट न दे। मा त्वाश्येन उद्वधीन मा सुपर्णो मा त्वा विददि शुमान वीरो अस्ता पित्रया मनु प्रदिशम कनिक्रदत सुमंगलो भद्रवादी वदेह। हे शकुनी उपदेशक, आपको श्येन दुष्ट व्यक्ति न मारे और न ही गरुड़ पक्षी बलशाली तुम्हें मारे। कोई शस्त्राशस्त्रधारी आपको न प्राप्त कर सके। दक्षिण दिशा अर्थात विपरीत परिस्थितियों में भी कल्याणकारी वचनों का ही यहां उच्चारण करें। अवक्रंद दक्षिणतो ग्रहाणाम सुमंगलो भद्रवादी शकुंते मा नहस्तेन ईशत माघशंसो बृहद्वदेम विदथे सुवीराह। हे शकुनी, आप मंगलमय शब्दों को बोलने वाले हैं, अतः घर की दक्षिण दिशा में बैठकर भी कल्याणकारी प्रिय वचन बोलें। चोर तथा दुष्ट व्यक्ति हमारे ऊपर अधिकार न करें। सुसंतति युक्त होकर हम इस यज्ञ में आपका यशोगान करें।
0: अभी आप सुन रहे थे ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के सूक्त 42 से वाचन, प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम अक्षय निधि 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये रेडियो आजाद हिंद है, देश का चैनल देश के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: नब्बे दशमलव आठ मेगाहर्ट्ज पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्रवंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सबके मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही है।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

देवी प्रसाद राय चौधरी मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में अधीक्षक के रूप में शामिल हुए। इस पद पर उन्होंने लगभग 30 साल काम किया। उस समय वो किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान का नेतृत्व करने वाले गिने चुने भारतीयों में से एक थे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने छात्रों के भीतर अद्भुत रचनात्मकता जगाने का काम किया। ये देवी प्रसाद राय चौधरी की सर्जना ही थी जिसने इस कला केंद्र को नई कलात्मक ऊर्जा प्रदान की। इसके लिए वो सम्मानित भी हुए, लेकिन इस कला केंद्र के संचालन के साथ साथ एक कलाकार के रूप में भी उनकी यात्रा जारी रही। उन्होंने दो स्टूडियो बनाए थे, एक घर पर और दूसरा मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में। वो सुबह से लेकर देर शाम तक यहाँ कला साधना में मग्न रहते थे, विशेषकर मूर्तियां बनाने में। वो एक ऐसे कला साधक थे जो अपनी सर्जना को पूजा की तरह किया करते थे। अपने जीवन काल में उन्होंने कभी भी अपने काम की प्रदर्शनी नहीं लगाई। वो कहा करते थे कि मैं अपने साधारण से स्टूडियो को कला के लिए समर्पित एक पुराने पवित्र मंदिर की तरह मानता हूँ। मैं अपनी बनाई कृतियों की पूजा करता हूँ। मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता कि इन कलाकृतियों को कभी सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाए। जो लोग कला के सच्चे प्रेमी हैं, उनका मेरे स्टूडियो में स्वागत है। क्या भक्त गांव के जीर्ण शीर्ण मंदिर से मूर्तियां बाहर ले आते हैं? नहीं, वो मंदिर में जाकर ही भगवान के दर्शन करते हैं। अपनी कला के लिए ऐसी सोच थी उनकी। देवी प्रसाद जी ने अपनी चित्रकला में जल रंगों, तैल रंगों और पेस्टल तीनों ही माध्यमों का प्रयोग किया। तूफान के बाद पूर्ण कुंभम, निर्वाण, महल की गुड़िया, स्नान के घाट, मुसाफिर, पुल आदि उनके प्रसिद्ध चित्र हैं। उनके अनेक चित्रों में पर्वत क्षेत्र की स्त्रियों का सौंदर्य भी उभर कर आया है। ऐसे चित्रों में शामिल है तिब्बत की बालिका, भूटिया औरत, नेपाली लड़की, लेपचा कुमारी आदि। देवी प्रसाद राय चौधरी ने अपनी चित्रकारी के माध्यम से अनेक प्रसिद्ध व्यक्तियों के चित्र भी बनाए। इनमें गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, ओसी गांगुली और पर्सी ब्राउन जैसे विख्यात नाम शामिल हैं। इनमें से सबसे अच्छा चित्र गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर का चित्र माना गया।

देवी प्रसाद राय चौधरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में गहरी रुचि रखते थे। वो स्वयं बांसुरी वादन में कुशल थे। बचपन में उन्होंने पहलवानी भी सीखी थी। यही कारण है कि मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट में अपने छात्रों के अनुरोध पर उन्होंने कुश्ती भी सिखाई। वो एक अच्छे निशानेबाज भी थे और साहित्य में भी उनकी रुचि थी। उनकी कई लघु कथाएं उन दिनों बंगाली पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुईं। 1930 के दशक में पश्चिमी कला समीक्षकों ने उन्हें तैल माध्यम में उनके कामों के लिए दुनिया के बेहतरीन चित्रकारों में से एक माना। लेकिन आगे चलकर उनका रुझान मूर्तिकला की ओर अधिक रहा और एक कुशल चित्रकार के साथ साथ वो अपनी सार्वजनिक मूर्तियों के लिए विशेष रूप से जाने गए। उन दिनों त्रावणकोर के मंदिरों में तथाकथित निम्न जाति के लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। देवी प्रसाद राय चौधरी ने इस मंदिर में उनके प्रवेश की उद्घोषणा करती कलाकृति बनाई जो बहुत प्रसिद्ध हुई। ट्रायम्फ ऑफ लेबर यानी श्रम की विजय उनकी एक कांस्य मूर्ति है जो अत्यंत प्रसिद्ध है। ये मूर्ति भारत के राष्ट्रीय निर्माण प्रक्रिया में श्रम के योगदान को दर्शाती है। इनमें चार आकृतियां एक भारी पत्थर को हिलाने में तल्लीन दिखाई गई हैं, जो अपने कार्य में सफल होते दिखाई देते हैं। इसे सन 1959 को चेन्नई के मरीना बीच पर स्थापित किया गया था। इसी तरह उनकी एक और प्रसिद्ध कलाकृति है पटना सचिवालय के बाहर स्थित शहीद स्मारक। सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुए 7 छात्रों के सम्मान में ये स्थापित की गई है। प्रतिमा में धोती कुर्ता और गांधी टोपी पहने 7 छात्रों को दिखाया गया है। एक छात्र झंडा पकड़े हुए गंतव्य की ओर इशारा कर रहा है, अन्य उस ओर बढ़ रहे हैं और कुछ घायल अवस्था में झुके हुए हैं। सन 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इस कांस्य कलाकृति का अनावरण किया गया था। इसी तरह दिल्ली में 11 मूर्ति उनके द्वारा बनाई गई एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कलाकृति है जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुए दांडी मार्च को दर्शाती है। ये मूर्ति 11 आकृतियों का संयोजन है जिसमें गांधी जी को 10 अन्य लोगों का नेतृत्व करते हुए दिखाया गया है जो अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मूर्ति दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग और तीन मूर्ति मार्ग के जंक्शन पर स्थित है जिसे 1982 में स्थापित किया गया था। उनकी कलाकृति श्रम की विजय और शहीद स्मारक पर डाक टिकट भी जारी किया गया। गवर्नमेंट म्यूजियम चेन्नई, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, सालार जंग म्यूजियम हैदराबाद, जगमोहन पैलेस और त्रावणकोर आर्ट गैलरी केरल में उनकी अनेक कलाकृतियां प्रदर्शित हैं। इसके अलावा कई पुस्तकों में भी उनकी पेंटिंग और मूर्तियां चित्रित हैं। उन्हें ललित कला अकादमी फेलोशिप और रवीन्द्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता से डीलिट की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके साथ ही भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान से विभूषित किया। अपनी संपूर्ण कलाकृतियां आने वाले समय को सौंपकर 15 अक्टूबर सन 1975 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: भारतीय चांदी से बना लंदन, बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 बिलियन लगाया जाता है। राजधानी को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते मुनाफे का सहारा लिया। जब शहर खंडहर में तब्दील था तब कंपनी लंदन के कुलीन फैशन सर्कलों में सफेद सोना, बंगाल की उत्कृष्ट मलमल जिसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, इसका व्यापार कर रही थी। सैद्धांतिक रूप से इन भारतीय वस्त्रों और मसालों से होने वाली आय लंदन को 4 बार फिर से खड़ा कर सकती थी। इस विशाल पुनर्निर्माण के लिए अधिकांश धन 160 साल के कोयला कर से आया, जिसने लंदन शहर को अपने वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था, जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे, जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं।
2: 90.8 रेडियो आजाद हिंद पर लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय है उत्सवों में बच्चों की भूमिका।
3: तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल सभा।
2: बच्चों नमस्ते, मैं हूं मनीषा, हाजिर हूं लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा। वैसे बच्चों, आज मैं ना आपसे किसी एक कहानी के बारे में बात नहीं करने वाली हूँ। आज हम बात करेंगे उस बात के बारे में जो हम सब की जिंदगी का बहुत सुंदर हिस्सा होती है बच्चों, और वो है हमारे उत्सव, हमारे फेस्टिवल्स। क्योंकि हमारे देश में ना साल भर कोई ना कोई त्योहार आता रहता है, जाता रहता है। कभी दीपावली, कभी होली, कभी जन्माष्टमी, कभी गणेश उत्सव, और अब हम सब के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है नवरात्रि यानी दुर्गा उत्सव। और आप लोगों ने बच्चों एक बात ज़रूर महसूस की होगी कि त्यौहार आते ही ना घर का माहौल बदल जाता है। जैसे अभी बहुत सारे घरों में साफ सफाई होने लग गई है, सजावट होने लग गई है, माँ पापा किसी ना किसी काम में आपको ज़्यादा बिजी दिखाई दे रहे हैं, बाज़ारों में थोड़ी और रौनक बढ़ गई है, और मोहल्ले में तो जैसे बच्चों की दुनिया ही बदल गई है। सारी कॉलोनी, सारे ऐसी जगह जहाँ बहुत सारे ढेर सारे बच्चे रहते हैं, वहाँ शोर ही शोर सुनाई देता है। एक और ख़ास बात बताती हूँ आपको। इस बार ना मैंने सोचा था कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊंगी दशहरे की छुट्टियों में, लेकिन आप जैसे बहुत बच्चे हैं बच्चों जो मुझे दशहरे की छुट्टियों में कहीं जाने ही नहीं देते, क्योंकि मैं जहां भी रहती हूँ ना वहां आसपास के बच्चों को पता लग जाता है कि दशहरा आने वाला है और मनीषा दीदी रामलीला कराती हैं। तो बस अभी परसों के दिन ही मैं देख ही रही थी इंडियन रेलवे की साइट पे कि देखूं और कोई रिजर्वेशन करवा लेती हूँ, कहीं घूम कर आती हूँ। तब तक डोरबेल बज गई और कुछ बच्चे अचानक से हाजिर हो गए। दीदी नमस्ते, मैंने कहा नमस्ते। बोलो दीदी इस बार रामलीला होगी? मैंने कहा सोच के बताती हूँ। अब जब मैंने कहा सोच के बताती हूँ तो बच्चों ने ये नहीं कहा कि होगी या नहीं होगी, उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया दीदी होगी। मैंने कहा अरे ये कैसे बोल सकते हो तुम कि होगी, ये तो मेरे ऊपर है मैं करवाऊंगी या नहीं करवाऊंगी। तो बोले नहीं, आप ही तो कहती हैं किताबें पढ़ना चाहिए, आप ही तो बताती हैं कि पौराणिक कथाओं का क्या महत्व है, और आप कह रही हैं कि आप कराएंगी कि नहीं कराएंगी, सोच के बताएंगी। तो मैंने तुरंत सबसे पहले नहा नना उन बच्चों से कहा अंदर आओ बैठो। और ख़ास बात जो मुझे आपको बतानी थी ना वो ये कि जब बच्चे अंदर आके बैठ गए तो फिर वो जाकर और बच्चों को भी बुला लाए। उनमें से एक बच्चा गया और देखते ही देखते देखते ही देखते मेरे बाहर वाले कमरे में ना बच्चों 15-20 बच्चे इकट्ठे हो गए। और ये कहानी नहीं है, ये सत्य घटना है। उनमें से एक बच्ची मुझसे कहती है, दीदी मम्मा ने बोला है इस बार मुझे मंथरा मत बनाना। मैं उसका मुंह देखने लगी, फिर धीरे से एक और आवाज़ आई, दीदी इस बार प्लीज़ मुझे कैकई मत बनाना। फिर मैं उसका मुंह देखने लग गई। मैंने कहा भाई अब रावण ना पीछे से बोल दे कि इस बार मुझे रावण मत बनाना, रामलीला ही नहीं कर पाएंगे बच्चे। अब ऐसे में क्या हुआ कि फिर मैंने उन बच्चों को ये बताया कि देखो आप लोग कितना भी सोचो कि रामलीला जब करेंगे तो मंच पर हम कैकई बनेंगे तो शायद हमारी अच्छी छवि ना देखे। आप ये सोच सकते हो कि हम मंथरा बनेंगे तो हमें बच्चे चिढ़ाएंगे, पर नहीं बच्चों, रामलीला तो कभी पूर्ण ही नहीं होगी अगर उसमें रावण नहीं हुआ, अगर कैकई की भूमिका किसी बच्चे ने नहीं निभाई, अगर उसमें मंथरा नहीं आई तो वो रामलीला हम कैसे दिखाएंगे? कैसे आप सोच पाएंगे कि बिना मंथरा के रामलीला हो सकती है? राम ने इतने राक्षसों का जो वध किया उसका सबसे बड़ा कारण ही उनका वनवास था। तो बच्चों हर चीज़ में बहुत डीप थॉट्स होते हैं, हर चीज़ के पीछे बहुत कुछ होता है। इसलिए अगर आपके यहाँ भी उत्सवों की तैयारी चल रही है तो कभी ये मत सोचिए कि ये पॉजिटिव रोल है, ये नेगेटिव रोल है। और आज मैं इसीलिए ये बात आपसे करने आई हूँ क्योंकि मैंने कहा था ना मुझे बाल सभा के विषय कभी सोचने नहीं पड़ते। मेरे साथ पूरे सप्ताह में ऐसा कुछ हो ही जाता है कि मुझे बाल सभा का विषय ना उचकते कूदते फांदते मिल ही जाता है। जैसे ये बात आज मुझे मिल गई कि उत्सवों में बच्चों की क्या भूमिका होनी चाहिए। और मुझे उन बच्चों से एक बहुत बड़ी सीख मिली बच्चों कि कभी हम इंतज़ार ना करें कि मौका हमारे पास आएगा। क्योंकि मैं तो आपको बता ही चुकी हूँ कि मैं तो इस बार दशहरे की छुट्टियों में घूमने जाने वाली थी और मैं रिजर्वेशन की तैयारी कर चुकी थी। अब आप सोचिए कि वो बच्चे ना आते तो ये मौका तो हाथ से फिसल ही गया था कि रामलीला नहीं होती। बहुत सारी जगह होती पर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ बच्चे नहीं करते क्योंकि वो बच्चे मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे मुझे एक बात जो सीख मिली वो ये कि हमें कभी किसी के आमंत्रण का इंतज़ार नहीं करना है कि कोई हमें बुलाएगा हम तब जाएंगे। अगर आपका उद्देश्य अच्छा और सच्चा है और आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो कभी आमंत्रण का इंतज़ार मत कीजिए, वरना ऐसे ही मौके हाथ से फिसलते रहेंगे। आप खुद जाइए और बात कीजिए जैसे उन बच्चों ने मुझसे बात की। अब फिर मैंने एक बच्चे को काम दिया कि ठीक है अब लिखना शुरू करो कि रामलीला में कौन क्या बनेगा। तो अब भरत के आगे मैंने लिखा मुदित बनेगा, फिर एक के आगे मैंने लिखा संकल्प बनेगा, फिर आई बात कि जटायु कौन बनेगा क्योंकि ये तो बहुत बड़ा रोल है। जटायु ने ही तो आपको मार्ग एक तरीके से आगे का बताया था। अब बच्चे बोले कि इसमें तो दीदी बहुत खर्चा होगा, जटायु बनने में तो बहुत खर्चा होगा। मैंने कहा कैसे खर्चा होगा भाई? तो बोले दीदी मम्मी कहती हैं कि वो ना अलग से ड्रेस नहीं लाएंगी कोई भी, आप बताइए हम कैसे जटायु बन सकते हैं। फिर मैंने उन बच्चों को बताया कि कैसे हम खुद ये क्रिएट करें, खुद कैसे अपने पंख बनाएं, खुद कैसे सोचें कि अगर हम जटायु बन रहे हैं तो उस पूरी भूमिका में हमें क्या क्या मुख्य करना है। तो हर चीज़ के लिए बाजार में खरीदने और खर्च करवाना अपने पेरेंट्स से बच्चों अच्छी बात नहीं है। आप ये देखिए कि घर में क्या सामान रखा हुआ है, उससे कैसे हम कोई भी भूमिका निभा सकते हैं। ये तो एक बहाना उठ गया है और मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये हर बात पे लागू होता है। क्योंकि आजकल बच्चों की फैंसी ड्रेस होती है, अचानक से बच्चे मम्मी को बोलते हैं मम्मी चलो, और आजकल जगह जगह दुकानें भी खुल गई हैं, है ना, कि अगर फैंसी ड्रेस है तो फैंसी ड्रेस के ही नाम से दुकान खुल गई है। आपको नेताजी बनना है तो ये ड्रेस, आपको ये बनना है तो ये ड्रेस, आपको वो बनना है तो वो ड्रेस, तोते वाली ड्रेस, मैना वाली ड्रेस। कब तक आप ऐसे ड्रेस खरीद खरीद के तोता मैना बनते रहेंगे? मेरा तो ये मानना है कि बच्चों का भी खुद भी कुछ क्रिएट कीजिए, है ना, तभी आपकी क्रिएटिविटी आपके जीवन में उतरेगी, तभी आप सकारात्मक कुछ सोच पाएंगे, आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा। और जितना आप खुद से कामों को करते हैं आपका सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है बच्चों। और उत्सव हमें ये सब कुछ सिखाने आते हैं। मैं आपसे बिल्कुल बहुत ही सीरियस नोट पर ये बात कर रही हूँ कि हर वक्त बाज़ार में खड़े होकर तुरत फुरत में शॉपिंग करके अगर आप कुछ बन भी गए तो उतना मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा तब आएगा जब आप खुद से कुछ बनाएंगे। तो फिर मैं बच्चों को लिखवा रही थी कि लिखो स्वर्ण मृग कौन बनेगा। तो आपको पता है जो बच्चा लिख रहा था उसने मृग को क्या लिखा, उसने लिखा मृग। अब आप कहेंगे सही तो है, नहीं नहीं सही है, मृग और मृग में बहुत अंतर है। मात्राओं की छोटी छोटी सी गलतियां हमें तब समझ में आती हैं बच्चों, जब हम ये समझ पाते हैं कि हमने जो लिखा है वो सही है कि नहीं। तो कभी बड़ों से चेक करवा लीजिए, कभी आप खुद भी चेक कर लीजिए कि वो सही है कि नहीं, वरना बड़े होने तक आप मृग और मृग का अंतर नहीं समझ पाएंगे। अब फिर एक और गलती हुई उससे, वो गलती क्या हुई आपको पता है? वो गलती ये हुई कि उसको लिखना था पृथ्वी, उसने लिखा पृथ्वी। ये बहुत छोटी छोटी गलतियां होती हैं, मात्राओं की गलतियां बहुत छोटी छोटी होती हैं, जैसे की और की में बहुत बड़ा अंतर होता है, बात बदल जाती है बच्चों इस एक ई की मात्रा से ए की मात्रा से। पर हम बहुत प्राउडली ये कहने लगे हैं अरे हम हिंदी में गिनती नहीं बता पाएंगे। क्यों क्यों नहीं बता पाएंगे? मैंने कहा लिखो, चलो नंबर लिख रहे हो ना आज, जो रामलीला के बच्चों के नंबर लिखोगे, एक नंबर दो नंबर ये सब हिंदी में लिखोगे। तो बच्चों ने तुरंत हाथ खड़े कर दिए, नहीं नहीं दीदी नहीं, ये नहीं होगा हमसे। मैंने कहा क्यों नहीं होगा? उनको नौ लिखना नहीं आया हिंदी में, आपको पता है? आज वो जब बाल सभा सुनेंगे ना तो बहुत नाराज़ होने वाले हैं सारे बच्चे कि आपने मेरी सारी बात बता दी। कोई बच्चा बोलेगा आपने हमारी शिकायतें कर दी। नहीं बच्चों, आप लोग भी सुन रहे हो ना तो याद रखो ये शिकायतें नहीं हैं, आप लोगों के बहाने से बहुत सारे बच्चों से मैं बहुत सारी बातें कर लेती हूँ। तो ये नौ लिखना या आठ लिखना हिंदी में सीखिए। अभी तो संस्कृत की अगर मैं बात करूंगी तो आप कहेंगे नहीं संस्कृत में तो बिल्कुल ही नहीं, उसे विषय की तरह मत पढ़िए। क्योंकि जब विषय की तरह पढ़ेंगे बच्चों, और कोई श्लोक जब प्रतियोगिता होगी और आप एक श्लोक याद करके सुनाएंगे और जीत भी जाएंगे, लेकिन संस्कृत को अगर आप बहुत अच्छे से समझ के पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आप उसे एक सिर्फ विषय नहीं समझेंगे, आप उसे एक भाषा, एक बहुत सुंदर भाषा की तरह पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। आगे की बात करते हैं, उत्सवों की जब बात हो रही है तो कहीं पंडाल बन रहा होगा, कहीं पे प्रतियोगिता की तैयारी चल रही होगी, कहीं कहीं डांस की प्रैक्टिस चल रही होगी, जो मुझे बहुत बड़ी बात कहनी, कहीं गीतों की तैयारी चल रही होगी। क्योंकि नवदुर्गा उत्सव में बच्चों बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि डांस प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता होती है। मैं यहाँ बहुत बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ बच्चों, जब डांस प्रैक्टिस चल रही हो और अपने लिए गाना चुनो तो हमेशा उत्सव की गरिमा का ख्याल रखना। ये मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम पूर्वक आप सब से कहना चाहती हूँ बच्चों। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो दुर्गा उत्सव हो या कोई भी उत्सव हो, ऐसे गाने चुनते हैं कि कई बार सिर झुकाना पड़ता है बच्चों। गाना कोई बुरा नहीं होता, लेकिन वो गाना आप के माहौल के अनुकूल है या नहीं, बताइए गलत बात है क्या? नहीं ना। जैसे 15 अगस्त पर बच्चे तैयारी कर रहे थे तो एक बच्चे ने एक गाना चुना था, वो था तेरी मिट्टी में मिल जावा, है ना, गुल बन के मैं खिल जावा, कितना सुंदर गाना है। किसी ने चुना था ओ देश मेरे तेरी शान के सदके, कितना प्यारा गाना है, कितना अच्छा लग रहा है। अब एक बच्चे ने क्या चुना, तू मेरी आशिकी है तू मेरी जिंदगी है। बुरा वो भी नहीं है, गाना अच्छा हो सकता है लेकिन माहौल के अनुकूल नहीं है। तो जब उत्सवों में बच्चों की भूमिका की बात आएगी तो अगर आप बाल सभा सुन रहे हैं तो इस बार आपने ये करना है कि आपने बिल्कुल ऐसे गाने नहीं चुनना जो माहौल के अनुकूल ना हो, क्योंकि ये सब भी हमें सीखना पड़ता है। हम कहते हैं ना कि पार्टी में जा रहे तो पार्टी के अलग कपड़े, हाँ खेलने जा रहे हैं तो भाई खेल के अलग कपड़े, ट्रैक सूट पहनते हैं कई लोग टी शर्ट, कई लोग ट्राउजर्स तो नहीं पहन के जाते हैं ग्राउंड पे, कई लोग ऐसा तो नहीं है कि अपना लोअर टी शर्ट पहन के पार्टी में चले जाते हैं। तो जब आप माहौल के हिसाब से बच्चों कपड़े पहनते हो, अभी जब दीपावली आएगी या आप दुर्गा उत्सव में भी जाओगे तो कोई लड़का कुर्ता पजामा पहना होगा, लड़कियां लहंगे पहनी होंगी, बहुत सुंदर सुंदर सूट पहन के जाओगे आप लोग, तो ऐसा तो नहीं है कि आप उठोगे और ऐसे ही चल दोगे, तैयार भी होगे थोड़े से। तो क्यों नहीं हम माहौल के अनुरूप गाने चुनते, माहौल के अनुरूप अपने ऐसे गाने चुने कि डांस भी करें उस पर तो अच्छा लगे। तो आज मुझे ये सब आपसे बात करनी थी। एक और बात, वो तो बहुत ज़रूरी बात है। क्या होता है कि बच्चों की भीड़ इकट्ठी होती है, कॉलोनी में खेल रहे होते हैं और जैसे ही देखते हैं कि अब बस पंडाल में प्रसाद बंटने वाला है,
4: ओ चिल्लाते हुए बच्चे आते हैं, एक बार और, एक लड्डू और, एक लड्डू और। पता चलता है जो वहाँ पर लोग हैं उनके लिए लड्डू ना बचे तो कैसा लगेगा बच्चों बताओ। तो पंडाल में जब आप प्रसाद लेने जाओ तो थोड़ा सा ये देखना कि सबके लिए बचा है कि नहीं। और ये बहुत ज़रूरी बात है क्योंकि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना कि मिलजुल कर खाना चाहिए। पहले मेरी माँ कहती थी, हिल मिल खाए सो गंगा नहाए और अकेले खाए तो गधा बन जाए। तो क्या हुआ कि जब मेरी मौसी के बच्चे आए हुए थे तब मुझे लगा कि ये तो मेरा घर है, मैंने फटाक से सारा खाना सोचा कि मैं खुद खा लूँ। लेकिन जैसे ही माँ ने ये बोला तो सारे बच्चे बोलने लगे, ओहो ये तो गधा बन जाएगी। और ऐसे करके मैंने उस दिन से ये प्रण लिया कि भाई हमें तो मिलजुल कर ही खाना है, गंगा नहाना है। मुझे याद भी नहीं है बचपन में हम गंगा नहा पाए या नहीं नहा पाए, लेकिन ये याद है कि इस एक कहावत ने ना मन में बहुत अच्छी भावनाएं भर दी कि नहीं अब तो जो खाना है शेयर करके खाना है। तो बच्चों अब आपको आगे की बात बताती हूँ। कहीं डांडिया हो रहा हो, कहीं गरबा हो रहा हो, कहीं भजन हो रहे हो, कहीं कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा हो, भाग जरूर लीजिएगा क्योंकि इन उत्सवों में ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको मौके मिलते हैं। ये छोटे छोटे से मौके, ये छोटे छोटे से जो भूमिकाएं हैं आपकी बच्चों, ये आप में बहुत कॉन्फिडेंस देती हैं। आप अभी कॉलोनी के स्टेज पर गाओगे, फिर हो सकता है किसी दिन स्कूल में स्टेज पर गाओ, फिर हो सकता है शहर में पूरे आप अच्छे गायक बन जाओ। तो मौके जब भी मिले उन्हें भरपूर इस्तेमाल करो क्योंकि यही मौके आपके आगे का भविष्य का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और आज मैंने ना एक बहुत सुंदर किताब आपके लिए लेकर आई थी, वो किताब का नाम है सौर मंडल की सैर और ये लिखी है देवेंद्र मेवाड़ी जी ने। पता है बच्चों ये इतनी सुंदर किताब है, बच्चों को कैसे सौर मंडल की सैर कराई जाए और वो भी बातों बातों में। मैं उत्सवों में आपकी भूमिका की बात करूंगी लेकिन थोड़ा सा आपको इसका एक हिस्सा सुनाती हूँ। अखबार में खबर पढ़कर चेतन चौंक उठा, टीवी पर भी बार बार उसी खबर की चर्चा आ रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। चेतन थोड़ी देर सोचता रहा और फिर विक्रम को फोन मिलाया, बोला, विकी आज के अखबार में पढ़ा तुमने प्लूटो अब बौना ग्रह भी नहीं रहा? विक्रम ने जवाब दिया, हाँ चेतन, उसे पहले ग्रहों की बिरादरी से बाहर निकालकर बौना ग्रह बना दिया गया और अब प्लूटोइड बना दिया गया। रात को टीवी पर सुना तो बहुत बुरा लगा, खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो के नाम की ये नई परिभाषा बना दी, इसलिए प्लूटो अब बौना ग्रह भी नहीं कहलाएगा। ये क्या बात हुई विक्की, हम अभी तक तो कक्षा में पढ़ते आ रहे थे कि सौरमंडल में 9 ग्रह हैं, अब कहते हैं नहीं नहीं 8 ग्रह हैं, अब तक तो 9 ग्रह थे अब 8, ये क्या मतलब? अजीब बात है ना, चेतन ने कहा। विक्रम बोला, बड़ा टेढ़ा मामला है चेतन, देखो हमारे सभी साथी परेशान होंगे, उनका भी फोन आता होगा या वो खुद आ जाएंगे। बोलो क्या करें? करना क्या है, परसों रविवार है, चलते हैं देवीदा के पास और पूछते हैं ये कैसी गड़बड़ है, हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे वो 8 क्यों हो गए और क्यों प्लूटो प्लूटोइड हो गया, प्लूटो ने क्या बिगाड़ा था खगोल वैज्ञानिकों का? चेतन ने गुस्से में कहा। बिल्कुल ठीक चेतन, ऐसा करो तुम भी साथियों को फोन से बता दो और मैं भी फोन करता हूँ, जो घर पर आ जाएंगे उन्हें तो बता ही देंगे, क्यों ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है विक्की, ऐसा ही करते हैं। अच्छा तो फोन रखता हूँ, कहकर चेतन ने फोन रखा ही था कि शबनम और अरुण भी आ गए। वो दोनों कॉलोनी में हाल ही में आए थे, बाकी बच्चों के साथ नई दोस्ती हुई थी। अरुण ने चेतन से कहा, हेलो चेतन, जानते हो अब सौर मंडल में 8 ही ग्रह रह गए हैं। शबनम बोली, हाँ चेतन पता है पहले 9 ग्रह थे। चेतन ने कहा, हाँ हाँ मुझे भी पता है, लेकिन अब तो प्लूटो भी प्लूटोइड हो गया है, आज के अखबार में खबर छपी, ये देखो। ये कहकर चेतन ने उन्हें अखबार दिखाया, फिर बोला, हम लोगों ने तय किया है परसों रविवार है, हम सब देवीदा के पास चलेंगे, उनसे इस बारे में सारी बात पूछेंगे। शबनम और अरुण ने चौंक कर पूछा, देवीदा, देवीदा कौन है? चेतन हंसा, अरे बच्चों के दोस्त हैं ये, अपने आप को यही कहते हैं, मैं तो तुम लोगों का दोस्त हूँ, मुझसे विज्ञान की बातें पूछ सकते हो। पूछोगे तभी तो जानोगे, हम तो उनसे ही पूछते रहते हैं। तो क्या वैज्ञानिक हैं? शबनम ने पूछा।
2: चेतन ने जवाब दिया, शबनम वो तो बस देवीदा हैं। पता है बीच बीच में वो गायब हो जाते हैं, जाकर वैज्ञानिकों से मिलते हैं, प्रयोगशालाओं और वैद्यशालाओं में जाते हैं, पुस्तकालयों में घंटों तक पढ़ते रहते हैं और जानते हो अपने कंप्यूटर से इंटरनेट पर जाकर विज्ञान की तमाम बातों का पता लगाते हैं। वो विज्ञान के लेखक हैं। शबनम और अरुण आश्चर्य से चेतन की बातें सुन रहे थे। चेतन ने बताया, वो कहते हैं मैं तुम्हारा पुल हूँ, वैज्ञानिकों और तुम्हारे बीच का पुल। तुम्हें उनसे जोड़ता हूँ और उन्हें तुमसे। तुम्हें उनकी बातें बताता हूँ और उन्हें तुम्हारी। तुम्हारे सवाल, हमारे देवीदा हम सब बच्चों को प्यार करते हैं। तब तो हम उनसे ज़रूर मिलेंगे, शबनम और अरुण ने कहा। ज़रूर मिलो। ठीक है, सुबह मिलेंगे, कहकर शबनम और अरुण चले गए। चेतन और विक्रम ने फ़ोन करके सभी साथियों को बता दिया। रविवार की सुबह सभी बच्चे एक साथ देवीदा के घर पहुंच गए। डोरबेल की आवाज़ सुनते ही भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ, दरवाज़ा खुला हुआ है। दरवाज़ा खोलकर बच्चे चहकते हुए भीतर पहुंचे तो देखा देवीदा किताबों से घिरे हैं। एक और अखबार पढ़े हैं, हाथ में पेन लेकर वो कभी यहाँ और कभी वहाँ लिख रहे हैं। सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर सौरमंडल का दृश्य दिखाई दे रहा है। गार्गी बोली, देवीदा डोरबेल सुनकर आपने पूछा भी नहीं कौन है। देवीदा ने हंसकर कहा, मैं जानता हूँ तुम लोगों के अलावा कौन होगा। रविवार की सुबह मेरे घर पर सबसे पहले तुम ही आ सकते हो। और दोस्तों, आज तो आना ही था तुम्हें, क्यों है ना? पहले सौरमंडल के ग्रहों की गिनती गड़बड़ा गई, बेचारा प्लूटो ग्रहों की बिरादरी से बाहर हो गया और अब वो प्लूटोइड हो गया है। ऐसा क्यों हुआ ये जानने के लिए ही तुम लोग ज़रूर आओगे, मैं जानता था। तो बच्चों, आगे की कहानी ना बाद में सुनाऊंगी मैं आपको, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त आप लोगों के मन में ढेर सारे सवाल उमड़ घुमड़ रहे होंगे। लेकिन कुछ अगले हफ्ते के लिए भी तो छोड़ना है, और अभी तो उत्सवों में आपकी भूमिका की बात भी करनी है। तो चलिए, इस कहानी के अगले हिस्से के लिए अगले सप्ताह का इंतज़ार करिएगा। अब आगे बात करते हैं। तो हम कहाँ पर थे बच्चों? हम थे आपके मोहल्ले और कॉलोनी में होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की बात पर। कहीं चित्रकला प्रतियोगिता हो रही होगी, कहीं निबंध प्रतियोगिता होगी, कहीं भाषण प्रतियोगिता होगी, कहीं कोई सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता होगी, और कहीं बच्चों के लिए चेयर रेस या कोई और खेल होंगे, और कहीं कहीं तो पूरा ही मंच बच्चों के लिए तैयार हो गया होगा या हो रहा होगा। अब ज़रा सोचिए कि अगर आपके मोहल्ले में ऐसा आयोजन हो रहा है तो आपकी भूमिका ये हो सकती है कि नहीं कि आप भाग लें। आपको पता है एक और भूमिका हो सकती है, एक और भूमिका हो सकती है कि आप हेल्पर बन सकते हैं, मददगार बन सकते हैं। जैसे कई बार कॉलोनी में बड़े लोग जज बनते हैं ना, कि चित्रकला प्रतियोगिता में ये आंटी वो अंकल जज

0: है कि किसी एक चीज को पूरा कराने में एक टीम की तरह काम करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अकेले आप पानी लाओगे या अकेले आप टेबल पर कोई साफ सा चादर बिछाओगे, वो काम आप कोई दूसरे बच्चे को दोगे। तो जब ये काम आप दूसरे बच्चे को दोगे तो वो आपके ही ग्रुप में कोई एक टीम लीडर बनेगा, कोई एक बहुत अच्छा सूचना अधिकारी बन जाएगा, इन्फॉर्मर बन जाएगा जो सबको अच्छे से सूचना देगा। एक और बहुत अच्छी बात होगी, आप नोटिस बोर्ड के लिए नोटिस लिखना सीखिए, क्योंकि हर मोहल्ले में सूचना भी तो लिखी जाती है हर कॉलोनी में कि आज यहाँ पर दुर्गा उत्सव का आयोजन होगा, आप सबको शाम को 7 से 9 उपस्थित रहना है। उसमें आपकी भाषा काम आएगी, उसमें आपकी जो लेखन कला है वो काम आएगी। तो नोटिस बोर्ड पर जो नोटिस चिपकाने हैं उसको लिखने की भी आप कोशिश कीजिए। हो सकता है आंटी अंकल मना करें कि नहीं नहीं हर बीच में तुम लोग मत आओ, लेकिन उसका बुरा मत मानना बच्चों। वो इसलिए भी हो सकता है कि ये कोशिश आप पहली बार कर रहे हो, लेकिन जब उन लोगों को भरोसा हो जाएगा कि हमारे मोहल्ले के या हमारी कॉलोनी के बच्चे तो देखो कितने अच्छे हैं कि सब काम खुद करते हैं, कितने जिम्मेदार बच्चे हैं। जैसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको बताती हूँ, जब कोई डांस प्रतियोगिता होती है तो उसमें आपने देखा होगा कि एक बच्चे ने जिस गाने पे डांस किया उसके बाद अगले बच्चे का गाना आने तक, वो जब तक गाना बदलवाती है, गाना चुनती है या फिर वो पेन ड्राइव लाती है, उसकी व्यवस्था होती है, तब तक का वो मंच बहुत खाली खाली सा लगता है बच्चों। उस वक्त आप में से कोई एक एंकरिंग कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? कितनी मजेदार बात होगी कि आप जाओ और उस वक्त पे आप पूरा सोच के रखो कि जब तक कोई बच्चा अपना दूसरा गाना लगवाएगा या पेन ड्राइव लगवाएगा या वो कोई हो सकता है कि जो सोशल मीडिया पे गाने होते हैं उनमें से सिलेक्ट करेगा, तब तक उस खाली समय में आप क्या करोगे? तो पता चलेगा कि आप बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर बन जाओगे, क्योंकि आप किसी को ये ड्यूटी दोगे कि उस वक्त तुम जाकर ये चुटकुला सुनाओगे या ये पहेली सुनाओगे, पूछोगे या कुछ कहानी सुनाओगे या कोई कविता सुनाओगे। तो इस तरीके से बच्चों आप एक पूरा आयोजन ऑर्गेनाइज कर लेते हो, है ना? और एक बात और कहनी थी मुझे, बहुत जरूरी बात है बच्चों कि आप प्रतियोगिता में भाग लीजिए, लेकिन ये कोई शर्त नहीं है कि आप हर प्रतियोगिता जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर हार जाएं तो मुंह लटका कर मत आइएगा, हाँ। और मम्मा से ये तो बिल्कुल ही मत कहिएगा कि मम्मा वो जो आंटी उस प्रतियोगिता की निर्णायक थी वो तो आपकी दोस्त थी, उन्होंने मुझे फिर जिताया क्यों नहीं। ये तो और भी गंदी बात हो जाएगी, आप बेईमानी करोगे, है ना? तो ऐसी कोई उम्मीद मत लगाना बच्चों, बस भाग लेना जरूरी है, इस बात को समझिए। उस प्रतियोगिता में आप जीते ना जीते ये छोड़ दीजिए, है ना? कर्म करते जाइए, फल की इच्छा बिल्कुल मत कीजिए। ये भी मैंने आपको पौराणिक कथाओं के महत्व में समझाया था और सुनाया भी था। तो अब जबकि इतनी अच्छी अच्छी बातें हो चुकी हैं और मुझे पूरी तरह से पता है कि अब जो दुर्गा उत्सव आने वाला है उसमें बड़ी छोटी कोई ना कोई जिम्मेदारी आप इस बार जरूर लोगे। चाहे आप सबको पानी पिलाने की जिम्मेदारी लो, चाहे आप इस बात का ध्यान रखो कि अगर कोई व्रत है, उपवास है, तो उसके लिए आप जो वहाँ पर ऑर्गेनाइजर है उनसे बात कर लीजिए कि ऐसे लोग आएंगे तो उन्हें हम क्या खाने में दे सकते हैं, ये भी बात कर लीजिए कि बच्चों के लिए वहाँ क्या इंतजाम रहेंगे, है ना? तो इतनी सारी बातों के बाद अब छोटे छोटे से संकल्प ले लें जो आप हमेशा लेते हो मेरे साथ, हुँ? चलिए तो एक बहुत प्यारा सा संगीत आप सबके लिए। आंखें बंद कर लीजिए, शांति से सोचिए कि आने वाले उत्सव में हमारी क्या भूमिका होगी। आज का पहला संकल्प है, हम सभी बच्चों के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करेंगे। आज का दूसरा संकल्प है, हम किसी ना किसी प्रतियोगिता में भाग जरूर लेंगे। प्रतियोगिता में हार और जीत के निर्णय पर बहुत सोच विचार नहीं करेंगे। जो भी आयोजन हो रहा है उसमें छोटी बड़ी कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर निभाएंगे। आखिरी और सबसे जरूरी संकल्प, इस पूरे उत्सव भरे माहौल में हम सब बहुत खुशी खुशी भाग लेंगे, बहुत खुशी खुशी शामिल होंगे। अब दोनों हाथों को आपस में रगड़िए और अपनी आंखों पर लगाइए और ये बताइए कि जब आंखें बंद करके खोलते हैं तो पहले से और ज्यादा साफ दिखाई देता है ना। बताए क्यों? क्योंकि आपने आंखों को थोड़ा आराम दिया और थोड़ा मन को भी आराम दिया। जब हम धीमी आवाज में प्यार से धैर्य से थोड़ी देर रुक कर ठहर कर कुछ सोचते हैं और इस तरह से आंखों को आराम देते हैं तो हमारा दिमाग और हमारी आंखें थोड़ा तेजी से काम करते हैं, है ना। तो दिन में किसी भी वक्त जब आपको समय मिले बहुत छोटा सा ध्यान लगाइए, भले वो एक मिनट का हो, कुछ सेकंड्स का ही हो, पर मेडिटेशन की आदत डालिए, ठीक है। और अब की बार जो उत्सव शुरू हो रहे हैं दुर्गा उत्सव से, उसमें खूब खुश रहिएगा, खूब प्यार से रहिएगा, खूब मजे करिएगा और जी भर के जिंदगी को जीने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बचपन के ये दिन हमेशा याद आएंगे आपको, ठीक है। अब चलो अगले सप्ताह मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए अपनी मनीषा दीदी को अनुमति दे दीजिए, कह दीजिए कि अब आप जाइए तो मैं चली जाऊंगी स्टूडियो से। अभी के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और खूब पढ़ाई कीजिए। हाँ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल सभा। बाल सभा में आज का विषय था उत्सवों में बच्चों की भूमिका। इस कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम और मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त मनीषा चतुर्वेदी। सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
1: बाल सभा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 MHz पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। प्रस्तुत है हमारी भारतीय जल थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व, जिसमें आप सुनेंगे भारतीय सेना का इतिहास, चयन प्रक्रिया और भारतीय सीमाओं की सुरक्षा पर सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा जी से चर्चा।
2: श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा, सेवानिवृत्त। कर्नल भामा ने लगभग 2 दशकों से अधिक समय तक भारतीय थल सेना में अपनी सेवाएं प्रदान की, जिसमें उन्होंने राजस्थान से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों तक भारत की सीमा पर महत्वपूर्ण ऑपरेशंस में योगदान दिया। इंडियन आर्मी में आपकी कमिश्निंग, वर्ष 1988 में इन्फेंट्री ऑफिसर के तौर पर 6वीं बटालियन मद्रास रेजिमेंट में हुई। आपने सियाचिन ग्लेशियर, करगिल, सिक्किम, पंजाब, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों में कई महत्वपूर्ण काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस क्रियान्वित किए। भारतीय थलसेना से सेवानिवृत्ति के पश्चात आपने कुछ समय तक डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर ऑफिसर के तौर पर भी कार्य किया। आप डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के अलावा भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद के पूर्व छात्र रहे हैं। कर्नल साहब, आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है।
3: धन्यवाद अदिति।
2: पिछली कड़ी में हमने बात की थी कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं में रिक्रूटमेंट की क्या प्रक्रिया रहती है, जिसके तहत हमने भारतीय थल सेना के बारे में चर्चा की थी। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूंगी कि भारतीय एयरफोर्स वायु सेना में रिक्रूटमेंट प्रोसीजर किस तरह का रहता है।
3: इंडियन एयरफोर्स विद द मोटो टच द स्काई विद ग्लोरी,
2: जी, नभम स्पृशम दीप्तम,
3: बिल्कुल। ये वर्ल्ड की जो है चौथी लार्जेस्ट एयरफोर्स है,
2: जी,
3: और बहुत छोटे स्तर से शुरू हो के, यानी कि 1932 में एक सिर्फ 19 सिपाही, 6 आरएएफ ट्रेंड ऑफिसर्स और तकरीबन 4 वेस्टलैंड व्यापति के साथ शुरू हुई थी, और आज ये जो है वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट एयरफोर्स है, जो कि हाईली टेक्निकल और स्पेशलाइज फाइटिंग फोर्स है,
2: जी।
3: इसमें जो रिक्रूटमेंट होता है वो एज ए ऑफिसर और एज ए जवान दोनों उसमें होता है, जैसे कि हमने आर्मी में भी देखा
2: जी।
3: था। और एयरफोर्स में प्राइमरली 3 ब्रांचेस होती हैं, जो कि फ्लाइंग ब्रांच होती है, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल होती है, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल होती है। तीनों में जो है ऑफिसर और जवान लेवल पे, मतलब कोई भी उसको इनको ज्वाइन कर सकता है। जैसे कि अगर हम शुरू से देखेंगे कि फर्स्ट एंट्री जो होती है एज ए ऑफिसर, अगर हम बात करें
2: जी,
3: तो 10+2 लेवल पे नेशनल डिफेंस एकेडमी के थ्रू इच्छुक छात्र जो है एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता है। जैसे आपको हमने आर्मी के दौरान भी बताया था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के कैडेट ट्रेंड होते हैं
2: जी।
3: तो उसी तरह से इसमें भी कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम है कि जो इसमें जाने के इच्छुक हैं उनकी जो एज है
2: जी,
3: वो 16.5 से ज्यादा होनी चाहिए और 19.5 से कम होनी चाहिए। इसका एग्जाम जो है साल में 2 बार होता है, क्योंकि जनवरी और जुलाई में कोर्स शुरू होते हैं। इसमें एक बात जो अहमियत रखती है वो ये है कि 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना कंपलसरी है
2: जी,
3: क्योंकि ये टेक्निकल आर्म है, तो इसमें इस बात का ज्यादा ध्यान रखा जाता है। और जो फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए एनडीए ज्वाइन करते हैं, उनको जेएनयू से बीटेक की डिग्री मिलती है
2: जी।
3: और जो ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल होते हैं उनको बीएससी की डिग्री एनडीए में मिलती है
2: जी।
3: इसी तरह से जब अगर हम दूसरी एंट्री देखते हैं
2: जी,
3: जो कि ग्रेजुएट लेवल पे होती है, ग्रेजुएट लेवल पे कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम होता
2: जी,
3: है जो कि अगेन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों के लिए होता है। इसमें एज लिमिट 20 से 24 साल की होती है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगेन इसमें जो कंपलसरी चीज है वो ये है कि 10+2 आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किया होना चाहिए। डिग्री जो है किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, क्योंकि नॉन टेक्निकल के लिए जो है टेक्निकल डिग्री होना जरूरी नहीं है, या आपका बीटेक, बी का जो है कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो यूपीएससी के थ्रू नवंबर और अगस्त में पब्लिश होता है। आप यूपीएससी की जो वो साइट है upsc.gov.in पे भी इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। समय समय पर जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स में, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में भी इसके बारे में जानकारी साझा करी जाती है। नेक्स्ट एंट्री जो एयरफोर्स में ऑफिसर के लिए होती है, दैट इज एनसीसी के थ्रू
2: जी।
3: एनसीसी की एक स्पेशल एंट्री होती है जो कि एयरफोर्स एनसीसी एयरविंग में जिन्होंने सी सर्टिफिकेट किया होता है,
2: आर्मी में भी आपने बताया था
3: सेम इसी तरह की एंट्री होती है। ये एंट्री अगेन मेन एंड वुमेन दोनों के लिए है और इसमें भी परमानेंट कमीशन मिलता है। और एक जो बात ध्यान रखने वाली है, जैसे इसमें एज लिमिट 20 से 24 साल है, लेकिन जो युवक
2: जी
3: या युवतियां कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर होते हैं DGCA एविएशन के, उनके लिए ये जो एज लिमिट है वो 26 साल
2: जी। उनको 2 वर्ष का रिलैक्सेशन,
3: दो वर्ष का रिलैक्सेशन मिलता है। और इसमें भी जो एजुकेशन जो है टेक्निकल साइड से होना जरूरी है, इन द सेंस आपका PCM होना जरूरी है और ग्रेजुएशन जो है किसी फील्ड में जो है यूनिवर्सिटी से होना चाहिए या BTech या BE होना चाहिए। और इसमें एक और जो क्वालिफिकेशन जिसमें जिससे कि जा सकते हैं, एक एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स होते हैं जिसमें कि अगर कैंडिडेट ने सेक्शन ए और बी के एग्जाम क्लियर करे हैं तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके 60% या उससे
2: टेक्निकल सर्विस के लिए
3: उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जैसे क्योंकि एनसीसी के थ्रू है तो एनसीसी का एयरविंग का सी सर्टिफिकेट होना कंपलसरी होता है और जब ये अप्लाई कर रहे हैं तो उसके 2 वर्ष के अंदर अंदर ही उन्होंने सी सर्टिफिकेट पास किया होना चाहिए। इसका एडवर्टाइजमेंट IAF यानी कि इंडियन एयर फोर्स की तरफ से आता है जिसमें कि वो एनसीसी की स्पेशल एंट्री रिलीज करते हैं और ये जून और दिसंबर में होता है।
2: भारतीय वायुसेना और थल सेना का जो रिक्रूटमेंट प्रोसीजर है वो एक तरह का ही है, बस यहाँ पे एक स्पेशलाइज वो ये आ जाती है शर्त कि जो कैंडिडेट्स टेक्निकल सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स विषय अनिवार्य हैं।
3: बिल्कुल, आपने सही बोला। और उसके साथ में कुछ जो टेक्निकल सर्विसेस होती हैं उसमें हम देखेंगे कि आगे चल के जैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो क्वालिफाई होते हैं, जो एविएशन इंजीनियरिंग में जिन्होंने क्वालिफाई किया होता है उनको प्राथमिकता दी जाती है। इसी तरह से जो नेक्स्ट इन की एंट्री होती है, एक एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होता है, मेन एंड वुमेन के लिए। इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी कर सकते हैं। और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है, जैसे कि उसके टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, 10 साल शॉर्ट सर्विस रहता है, एक्सटेंडेबल अप टू नेक्स्ट 4 इयर्स डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस एंड आपकी चॉइस के ऊपर है। एज लिमिट इसकी अगेन सेम 20 to 24 इयर्स होती है। और जैसे कि हमने पहले देखा था, अगर फ्लाइंग में अगर आपके पास कमर्शियल पायलट होल्डर हैं तो उनके लिए 2 साल का रिलैक्सेशन रहता है
2: जी।
3: इसी तरह से अगर हम आगे देखेंगे तो ग्राउंड ड्यूटी में भी, टेक्निकल ब्रांचेस में भी सेम एयरफोर्स AFCAT दैट इज एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है। और ये उसी कैटेगरी में जो है ग्राउंड ड्यूटी में भी टेक्निकल ब्रांचेस में ज्वाइन कर सकते हैं एज ए ऑफिसर। अगेन सेम एज ग्रुप जो है इसका 20 से 26 साल रहता है टेक्निकल सर्विसेज के लिए। और अगेन ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, दोनों के लिए मेन एंड वुमेन दोनों इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें IAF एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और जून और दिसंबर में रहता है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है तो joinindianairforce.nic.in पे आप चेक कर सकते हैं।
2: कर्नल साहब, ये तो सारी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में हमने डिस्कशन किया। आर्मी के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने शारीरिक क्षमताओं की भी बात की थी, एयरफोर्स में कुछ ऐसा क्राइटेरिया रहता है क्या?
3: बिल्कुल रहता है। शारीरिक क्षमताएं का जो स्टैंडर्ड्स हैं वो लेट डाउन है
2: जी।
3: और इसके अलावा मेडिकल फिटनेस का स्टैंडर्ड्स लेट डाउन है। ये जो अभी मैंने आपको साइट बताई है joinindianairforce.nic.in, इसके ऊपर आपको पूरी की पूरी जो है डिटेल्स अवेलेबल रहती हैं। हम यहाँ पे पूरी की पूरी डिटेल्स नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा टेक्निकल वो रह जाएगा कि कंफ्यूजन होगा। इसमें ज्यादा अच्छा है कि अगर आपको जाके इसको देखेंगे तो अपने हिसाब से, जैसे मेन वेमेन का अलग अलग है, इवन प्रादेशिक उसमें अलग अलग होता है, टेक्निकल्स के लिए अलग है, नॉन टेक्निकल्स के लिए अलग है, फाइटर पायलट्स के लिए अलग है, तो हर एक को अपने रुचि के हिसाब से, अपनी शैक्षणिक योग्यता के हिसाब से वो इसको देख के देख सकता है।
2: तो यानी कोई युवक या युवती भी अगर वायुसेना में जाने के इच्छुक हैं तो उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है 14-15 वर्ष की आयु से ही अपनी मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस और पढ़ाई लिखाई पर बाकायदा ध्यान दें और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा हो सके वो क्राइटेरिया को फुलफिल करें।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मेहनत के बगैर तो कुछ नहीं मिलता है और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये सपना देखना कि कुछ हो जाएगा तो वैसा नहीं होता है, और आजकल बहुत ही कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जितना हो सके अपनी पूरी क्षमता
2: कन्हे साहब, भारतीय वायुसेना में कंपटीशन जो है, प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा रहता है, तो उसके लिए आप हमारे श्रोताओं को किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे?
3: देखिए, अगर आप में ज्वाइन करने की एक इच्छा है
2: जी,
3: तो यकीन मानिए कि आप अपने आप उसके बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे और उसमें अपने आप को प्रिपेयर भी करेंगे किसी भी चीज में। जहां तक मैं समझता हूँ कि जब आपने एक बार ठान ली है
2: जी,
3: तो आपको कोई रोक नहीं सकता अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए। आज आपके पास बहुत सारे साधन हैं, इंटरनेट है आपके पास अवेलेबल है, जगह जगह ऑफिसेस हैं, न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, जहाँ पे जानकारी काफी जल्दी और काफी अच्छे से हासिल हो जाती है। आज से 20-30 साल पहले ऐसा नहीं था, जब हम लोग थे तो हम बड़ी मुश्किल से जानकारी हासिल होती थी, लेकिन फिर भी उत्साह उस समय भी उतना ही होता था और सफलता भी मिलती थी। तो माय एडवाइस टू एवरीबॉडी विल बी दैट स्टार्ट अर्ली, बी कंसिस्टेंट, बी पेशेंट एंड वर्क इन अ रेगुलर मैनर। यानी कि जल्दी शुरुआत करिए, पेशेंस रखिए, रेगुलर एफर्ट्स लगाइए, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको सफलता मिलेगी। अभी इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं अदिति, तो देखें ग्राउंड ड्यूटी पे नॉन टेक्निकल ब्रांचेस भी होती हैं जिसमें कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं जो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एज अगेन 20 से 26 साल होनी चाहिए और ये दोनों के लिए लागू होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल के लिए। इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। इसकी जो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं, जैसे इसमें ना वेपन सिस्टम्स ब्रांच होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच होती है, देन उसके बाद अकाउंट्स ब्रांच रहती है एंड लॉजिस्टिक ब्रांच रहती है, एजुकेशन है, मेटरोलॉजी है। अगेन इन सभी ब्रांचेस में थोड़ा थोड़ा इनका डिफरेंस होता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। जैसे कि अगर आप अकाउंट्स में जा रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू बी अ कॉमर्स ग्रेजुएट,
2: बिल्कुल सही।
3: तो अपनी क्वालिफिकेशन अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चेक कर सकते हैं और चेक करने के बाद जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ एंट्रीज रहती हैं आप जो है जिसमें एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एयरफोर्स में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके तीन ब्रांचेस होती हैं और तीन ब्रांचेस में जो है, दैट इज फ्लाइंग ब्रांच, टेक्निकल ब्रांच एंड नॉन टेक्निकल ब्रांच। फ्लाइंग ब्रांच में बेसिकली फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं। देन ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल्स में जो जाते हैं, जिसमें मैकेनिकल्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की क्वालिफिकेशन वाले लोग जा सकते हैं। एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में जो है, इवन बीएससी एंड अदर जिसमें पास किया होता है वो भी जा सकते हैं, जिसमें कि वेपन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन और मेड डिपार्टमेंट रहता है।
2: क्या भारतीय वायुसेना में भी यह अग्निवीर योजना लागू होती है?
3: अभी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स
2: जी,
3: तीनों में अदर देन ऑफिसर्स का जो रिक्रूटमेंट है, जवान लेवल पे जो रिक्रूटमेंट है वो अग्निपथ स्कीम के थ्रू ही होता है
2: जी।
3: तो इसमें भी अग्निवीर वायु है और अग्निपथ स्कीम जो है वो तीनों के लिए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों के लिए कॉमन है। इसमें भी ये टूर ऑफ ड्यूटी है 4 साल के लिए, 4 साल के बाद जो है 25%
2: वही इंटेक रहेगा,
3: इंटेक रहेगा एंड सबको एक लमसम जो पैकेज मिलेगा, दैट इज 0.04 लाख का जो है। और जैसे आर्मी में था उसी तरह से इनका जो है कंपनसेशन बंद होगा और कैंटीन फैसिलिटीज हैं और हॉस्पिटल फैसिलिटीज हैं, जब तक वो सर्विस में रहते हैं 4 साल तब तक रहेगी, उसके पश्चात उनको ये सर्विसेज नहीं मिलेंगी, एक सर्विसमैन का स्टेटस नहीं रहेगा। और जो भर्ती है सेम जैसे आर्मी में है वैसे इसमें भी है, लेकिन हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, ये टेक्निकल आर्म होने के कारण इसमें जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश से पढ़ना जरूरी है, साथ में इंग्लिश भी कंपलसरी है। तो इनके पास मैथ, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री होना चाहिए, इसके अलावा जो है इंग्लिश भी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसमें ये 10+2 के अलावा जो 3 साल का जिन्होंने डिप्लोमा कोर्स किया होता है इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस से किसी भी स्ट्रीम से जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं उसमें से अगर ये लोग क्वालिफाई होते हैं तो वो भी आ सकते हैं। अगेन उसमें भी एक चीज ध्यान देने वाली है कि 50% मार्क्स इसमें इंग्लिश में जरूर होने चाहिए।
4: जी।
3: अगर इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है डिप्लोमा का तो, और इसके अलावा जो है कुछ वोकेशनल, जैसे 2 साल के वोकेशनल कोर्सेज होते हैं तो वो भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अग्निवीर स्कीम में कर सकते हैं। इसके बारे में मैं समझता हूँ कि वो क्लैरिफिकेशन लेने के लिए, ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए सेम ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स साइट पर जाके जो है चेक कर सकते हैं, और कुछ अगर क्लैरिफिकेशन है तो वो ले सकते हैं। और रिक्रूटमेंट का जो इनका नोटिफिकेशन आता है वो रिक्रूटिंग ऑफिस एयरफोर्स की तरफ से जारी होगा।
4: धन्यवाद कर्नल साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे श्रोताओं के लिए बताई। श्रोता है जो बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि उनके कई उन प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल गया, साथ साथ ये भी आशा है कि उन्हें प्रोत्साहन भी मिला होगा कि किस तरह से तैयारी शुरू करें। और जैसा कि आपने बताया कि 16.5 वर्ष मिनिमम एज होती है, तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो युवा श्रोता हैं वो अभी चेत भी गए होंगे कि हर लेवल, मेंटल, फिजिकल और इमोशनल लेवल पर प्रयास करें और अपने आप को तैयार करें रिक्रूटमेंट के लिए, अगर वो इच्छुक हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। हमें आशा है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और आप हमें अगले अंक में भारतीय जल सेना में रिक्रूटमेंट से संबंधित जानकारियां साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, गौरव की बात है कि आप हमारे साथ आए और हमारे साथ आपने जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू अदिति, जय हिंद श्रोताओं।
5: इस कार्यक्रम की परिकल्पना और निर्देशन का श्रेय जाता है अदिति गौड़ को, ध्वनि अंकन और ध्वनि संपादन किया अमित कुंदानी ने।
6: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भारतीय जल, थल और वायु सेना पर आधारित कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: जैक्स स्पेक्स और जापानी मर्सेनरी, एक साम्राज्यवादी सैन्य प्रयोग 1615। 1615 में हेराडो के सकरे और व्यस्त बंदरगाह में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्य व्यापारी जैक्स स्पेक्स ने भटकते हुए लोगों की एक बेचैन भीड़ को देखा और उसमें एक साम्राज्य के उद्धार का रास्ता पाया। उस समय VOC सैन्य जनशक्ति के पुराने संकट से जूझ रही थी। यूरोपीय सैनिक महंगे थे, देरी से पहुंचते थे और अक्सर 8 महीने की लंबी समुद्री यात्रा के दौरान ही दम तोड़ देते थे। स्पेक्स को जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे दक्षिण पूर्व एशिया में कंपनी के मोहरे के रूप में काम करने के लिए साहसी पुरुषों की एक व्यवस्थित भर्ती शुरू करें। यह कोई गुप्त अभियान नहीं था। टोकुगावा शोगुन की स्पष्ट सहमति के साथ स्पेक्स ने हेराडो की लड़खड़ाती फैक्ट्री को एक रणनीतिक भर्ती केंद्र में बदल दिया। जॉन पीटरजून कोएन जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी जापानियों को एक विशेष मार्शल रेस यानी लड़ाकू प्रजाति के रूप में देखते थे, जिनका मानना था कि ये योद्धा केवल अपनी प्रतिष्ठा के बल पर स्थानीय आबादी को शांत कर सकते हैं। स्पेक्स का नवाचार उन कठोर अनुबंधों में था जो उन्होंने इन उत्तेजित जुझारू रंगरूटों को भरोसेमंद सैनिक बनाने के लिए तैयार किए थे। 31 दिसंबर 1615 को उन्होंने 59 रंग रूटों के एक दल को 3 साल के पूर्ण आज्ञा पालन के लिए बाध्य किया, जिसमें उन्होंने डच अधिकारियों को कभी भी जवाब न देने का संकल्प लिया। ये समझौते विशेष रूप से डरावने थे क्योंकि इनमें सामूहिक दंड का प्रावधान था। यदि कोई सैनिक विद्रोह करता तो VOC जापान में मौजूद उसके माता पिता, पत्नी, बच्चों और गारंटरों को सजा देने का अधिकार रखती थी। स्पेक्स ने सैन्य दल को विशेष हथियारों से लैस रखा था। जापानी आग्नेयास्त्र, धनुष बाण, अलग अलग लंबाई के अनेक भाले, ये दस्ता फॉर्च्यून नामक एक स्थानीय जहाज पर सवार हुआ, जिसे स्पेक्स ने विशेष रूप से इस यात्रा के लिए खरीदा और मरम्मत करवाया था। हालांकि पेशेवर भाड़े के सैनिकों का सपना जल्द ही एक कड़वी हकीकत में बदल गया। 4 महीनों तक रंगरूट हेराडो में ही रहे, जहां शहर के शराब खानों और जुआघरों ने उनके बीच असंतोष पैदा कर दिया। ओसाका से भर्ती किए गए कप्तान कुस्नुकिजी इत्सिमोन के अकुशल नेतृत्व में बाटन की 51 दिनों की कठिन यात्रा के दौरान ये दल विद्रोह के करीब पहुंच गया। स्पेक्स ने खुद बाद में तर्क दिया कि तलवार ही एकमात्र दवा थी जिसे ये सैनिक वास्तव में समझते थे। हालांकि इन सैनिकों ने बांदा द्वीपों के क्रूर दमन और बाजार की झड़पों में असाधारण निडरता का प्रदर्शन किया, लेकिन कई डच अधिकारियों की नजर में वे हमेशा एक विद्रोही भीड़ ही रहे। ये प्रयोग अंततः 1623 के अम्बोइना साजिश के बाद पूरी तरह विफल हो गया, जिसके बाद VOC ने जापानी सैनिकों पर हमेशा अविश्वास रखने का फैसला किया। भले ही जैक्स स्पेक्स का डच झंडे के नीचे जापानी सैनिकों की लंबी कतारें मार्च कराने का सपना कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एशियाई सैनिकों की व्यवस्थित भर्ती का वो बुनियादी ढांचा तैयार कर दिया जिसने अंततः पूर्व में यूरोपीय साम्राज्यों की सफलता को परिभाषित किया।

0: मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल देश के लिए।
1: जॉन अंडरहिल और 1644 का नरसंहार, जब भाड़े के सैनिकों ने लिखी साम्राज्य की पटका था। 1644 की कड़ाके की ठंड में डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने एक ऐसे व्यक्ति की ओर रुख किया जिसकी निर्दयी कार्य कुशलता की प्रतिष्ठा अटलांटिक सीमाओं के पार तक फैली हुई थी। कैप्टन जॉन अंडरहिल एक अमेरिकी मर्सिनरी यानी भाड़े का सैनिक थे जिनका विवाह एक डच महिला से हुआ था। अंडरहिल ने न्यू इंग्लैंड के पेकोट युद्ध के दौरान इतिहास में अपना नाम पहले ही खूनी अक्षरों में दर्ज कर लिया था। वह 1637 में मिस्टिक रिवर पर हुए उस कुख्यात नरसंहार के मुख्य सूत्रधार थे जहां उनके आदेश पर एक पूरे पेकोट गांव का विनाश कर दिया गया था। अब वे पूर्ण विनाश की वही भूख लेकर प्रथम डच मुंसी युद्ध के दौरान WIC की सेवा में आए। हडसन की घाटी में संघर्ष के ऐसे मोड़ पर पहुंच गया था जहां डच बसने वाले और मुंसी समूह हत्याओं और प्रतिशोध के अंतहीन चक्र में फंस गए थे। स्वदेशी प्रतिरोध को हमेशा के लिए कुचलने के इरादे से अंडरहिल ने फरवरी 1644 में WIC सैनिकों के एक दल का नेतृत्व करते हुए एक कुख्यात अभियान चलाया। उनका लक्ष्य आधुनिक न्यूयॉर्क के पाउंड रिज के पास स्थित एक किलाबंद टैंक टेकेस गांव था। अंडरहिल की रणनीति अधिकतम आतंक फैलाने के लिए सोची समझी थी। उन्होंने रात के अंधेरे में बस्ती के चारों ओर अपनी सेना तैनात की और उन पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। जब कोने में घिरे इंडियंस ने बाहर आकर लड़ने से इनकार कर दिया तो अंडरहिल ने भीषण अंत का रास्ता चुना। उन्होंने

0: 1600 स्वदेशी जीवन का लगभग एक तिहाई हिस्सा ले लिया था। अंडरहिल की भाड़े की सेवा का प्रभाव केवल शवों की संख्या तक सीमित नहीं था। उनके अभियान के निचली हडसन घाटी में जनसांख्यिकी तबाही और स्वदेशी राजनीतिक संरचनाओं के पतन को तेज कर दिया। जीवित बचे मुंशी समूह के लिए डच कंपनी का वह दावा, जो कभी यूरोपीय दस्तावेजों में केवल एक कानूनी कल्पना थी, अब एक भयानक वास्तविकता बन गया। 1650 के दशक तक इंडियन समुदाय के नेता स्टेटन आइलैंड जैसी जगहों के लिए संपत्ति के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहे थे और अपनी जमीन अभी और हमेशा के लिए सौंप रहे थे। अंडरहिल की कहानी इस बात की याद दिलाती है कि कंपनी राज्य का विस्तार केवल व्यापार और संधियों का मामला नहीं था, बल्कि यह अक्सर हिंसा के पेशेवर एजेंटों की विशेषज्ञता पर बनाया गया था। 17वीं शताब्दी के सीमांत क्षेत्रों में एक भाड़े के सैनिक की मशाल किसी भी व्यापारी के बही खाते की तुलना में संप्रभुता के नक्शे को अधिक प्रभावी ढंग से फिर से लिख सकती थी। अंडरहिल जैसे क्रूर पुरुषों के माध्यम से डब्ल्यूआईसी समुद्री घुसपैठियों के एक समूह से बदलकर देश के निर्विवाद मालिक में बदल गई।
1: नमस्कार, मैं हूं कनिका तिवारी और आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

वीर जी वोरा, वो व्यापारी राजकुमार जिसने यूरोपीय कंपनियों को अपने इशारों पर नचाया। 17वीं शताब्दी के व्यस्त सूरत बंदरगाह में अंग्रेजी और डच ईस्ट इंडिया कंपनियां समुद्री प्रभुत्व के सपने लेकर आईं, लेकिन उनका सामना एक ऐसे स्थानीय व्यापारी से हुआ जो वैश्विक बाजार को अपनी इच्छा शक्ति से मोड़ने की ताकत रखता था। उसका नाम था वीरजी वोरा, एक बनिया व्यापारी जिसका प्रभाव इतना व्यापक था कि तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के रिकॉर्ड में उसे सभी यूरोपीय वस्तुओं का एकमात्र एकाधिकार बताया गया है। हालांकि वोरा के पास कभी भी कंपनी ब्रोकर का औपचारिक पद नहीं था, फिर भी वो दोनों यूरोपीय शक्तियों के लिए अपरिहार्य बैंकर और मुख्य खरीदार था। सूरत में उसका मोनोपसोनी यानी एकमात्र खरीदार का अधिकार था, जिससे वो छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा करने से रोकता था और ये सुनिश्चित करता था कि हर बड़े सौदे का समय और कीमत उसके अपने निर्णय के अनुसार रहे। उसकी वित्तीय पहुंच चौंका देने वाली थी। 1622 में डच कंपनी वीओसी ने उससे 36,000 महमूदी उधार लिए थे। 1628 तक वो आगरा जैसे दूर दराज के क्षेत्रों के लिए भी EIC को भारी ऋण पत्र यानी लेटर्स ऑफ क्रेडिट जारी कर रहा था। वोरा की शक्ति अपनी शर्तें मनवाने की उसकी क्षमता में सबसे अच्छी तरह दिखाई देती थी। 1625 में जब अंग्रेजों ने काली मिर्च खरीदने की कोशिश की तो उन्होंने पाया कि वोरा ने पूरी आपूर्ति पर कब्जा कर रखा है। उसने तब तक बेचने से इनकार कर दिया जब तक कि कंपनी ने उसे अपने सबसे अच्छे मूंगे के 25 बक्से उस कीमत पर नहीं सौंप दिए, जिससे अंग्रेजों का मुनाफा काफी कम हो गया। चूंकि कंपनियों के पास अक्सर कपड़ा खरीदने के लिए नगदी सोना चांदी की कमी होती थी, इसलिए वे टिके रहने के लिए वोरा की विशाल तरल पूंजी पर निर्भर थे। उसने इस कमजोरी का बेरहमी से फायदा उठाया। कभी कभी कंपनियों को लंदन या बटाविया की अपनी यात्राओं में देरी करने के लिए मजबूर किया, ताकि उनके जहाज सूरत के स्थानीय व्यापारियों के लिए माल ढोने का काम कर सकें। EIC अधिकारी एडवर्ड नाइप ने 1643 में कंपनी की हताशा को दर्ज किया। उन्होंने शिकायत की कि वोरा कालीकट में कोड़ियों के दाम पर काली मिर्च खरीदता और अंग्रेजों को उसे दोगुनी कीमत पर बेचता। नाइप ने अपने मालिकों को चेतावनी दी थी कि जब तक कंपनी वोरा के कर्ज में इतनी डूबी रहेगी, सूरत में नामात्र या कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा, क्योंकि वोरा हमें तब तक दबाता है जब तक हम उसके अपने रेट पर नहीं आ जाते। दशकों तक वोरा शहर का सबसे अमीर आदमी और व्यापारिक समुदाय का शिखर बना रहा। हालांकि साल 1664 में तब एक विनाशकारी बदलाव आया जब मराठों ने सूरत पर आक्रमण किया। बताया जाता है कि इस हमले में वोरा को लगभग 5,00,000 रुपए का नुकसान हुआ, एक ऐसा झटका जो छोटे व्यापारियों को नष्ट कर देता। फिर भी वो एक सक्रिय व्यक्ति बना रहा जो पारस्परिक निर्भरता के रिश्ते को दर्शाता है। जहां शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियां अक्सर भारतीय पूंजी की दया पर थीं, वीरजी वोरा की विरासत एक ऐसे मर्चेंट प्रिंस की है जिसने अंग्रेजों के भारत को जीतने से बहुत पहले उन पर महारत हासिल कर ली थी। उनकी कहानी याद दिलाती है कि कंपनियों का शुरुआती इतिहास तत्काल जीत का नहीं था, बल्कि स्थानीय दिग्गजों के साथ एक नाजुक रणनीतिक गठबंधन का था, जिनका अक्सर बाजार पर अपर हैंड रहता था।

राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास गाथा, हर घर तिरंगा अभियान। भारत का राष्ट्रीय ध्वज। किसी राष्ट्र का राष्ट्रध्वज उसकी संस्कृति, परंपरा और आत्मगौरव का परिचायक होता है। भारत में ज्ञात ऐतिहासिक काल से ध्वजों का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता रहा है। आधुनिक भारत के इतिहास में उपनिवेशिक शासन के आधिपत्य और उसके विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में ध्वजों का अपना विशिष्ट महत्व रहा है। अठारह की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीय समाज का सामूहिक प्रतिरोध और भी घनीभूत हुआ और इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में ध्वज की आवश्यकता भी गहनता से अनुभव की जाने लगी। ध्वज की विकास गाथा 1905। 20वीं सदी के प्रारंभ में लॉर्ड कर्जन के प्रतिक्रियावादी कार्यों के विरुद्ध न केवल बंगाल बल्कि पूरे भारत में गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रवाह तीव्र हुआ और इसी समय 1905 में मार्गरेट नोबल, जिन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है, जो 19वीं सदी के महान मनीषी स्वामी विवेकानंद की युवा आयरिश शिष्या थीं, की देखरेख में कलकत्ता में निवेदिता कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने एक राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया। इस ध्वज में वज्र का अंकन किया गया था, जो शक्ति का प्रतीक है। इसके केंद्र में श्वेत कमल चित्रित किया गया था, जो पवित्रता का प्रतीक है। यह माना जाता है कि भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर ग्रीन पार्क में फहराया गया था। इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षितिज पट्टियां थीं, जिनके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस ध्वज को सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्रा द्वारा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध लोकप्रिय एवं सामूहिक प्रतिरोध के एक ठोस प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया था। ১৯০৭ मैडम भीकाजी कामा और उनके सहयोगी निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह ने अगस्त 1907 में जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में हिस्सा लिया और इसके अधिवेशन स्थल पर ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि गणों के मध्य एक भारतीय ध्वज फहराया, जो एक विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था। इसे भारत की स्वतंत्रता का ध्वज नाम दिया गया। ১৯১৭ डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में स्वराज की आकांक्षा से होमरूल आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसके महत्वपूर्ण भाग के रूप में एक नया झंडा अपनाया। इसमें 5 क्षितिज लाल और 4 हरी क्षितिज धारियां थीं और सप्तर्षि विन्यास में 7 तारे थे। एक सफेद अर्धचंद्र और तारा शीर्ष के एक कोने पर स्थित था। अप्रैल 1921 में महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में एक भारतीय ध्वज की आवश्यकता के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा, जिसमें केंद्र में चरखे के साथ एक ध्वज का प्रस्ताव था। उल्लेखनीय है कि ध्वज में चरखे के अंकन का विचार लाला हंसराज द्वारा रखा गया था और गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को लाल और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर चरखे के साथ एक ध्वज डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया। हालांकि गांधी जी चाहते थे कि ध्वज को 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तुत किया जाए, लेकिन इसे समय पर तैयार नहीं किया जा सका। अतः इस विलंब का सदुपयोग करते हुए इस ध्वज में सफेद रंग और जोड़ दिया गया। १९२९ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार के दौरान ब्रिटिश विरोधी विचारों को नई धार मिली। इसके साथ साथ ध्वज में भी परिवर्तन आए। कराची में हुए कांग्रेस अधिवेशन में पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किए
तीन रंगों के ध्वज को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया तथा इस तथ्य पर बल दिया गया कि झंडे की कोई धार्मिक व्याख्या नहीं होनी चाहिए। लाल रंग बलिदान का, श्वेत रंग पवित्रता और हरा रंग आशा का प्रतीक माना गया। देश की प्रगति का प्रतीक चरखा इसके केंद्र में जोड़ा गया। गांधी जी ने स्वीकार किया था कि ध्वज में यह परिवर्तन राष्ट्रीय आंदोलन में विशिष्ट आवश्यकताओं की प्रतिक्रिया थी। ऐसा माना गया कि नया झंडा राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ जन आंदोलन के प्रयास अधिक सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण चिन्ह हो सकता है। वर्तमान स्वरूप। झंडे के वर्तमान स्वरूप को मान्यता तब मिली जब 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रंग और उनका महत्व वही रहा। शीर्ष पर केसरिया शक्ति और साहस का प्रतीक है, बीच में सफेद शांति और सत्य का प्रतिनिधित्व करता है और नीचे हरा भूमि की उर्वरता, विकास और शुभता का प्रतीक है। ध्वज पर प्रतीक के रूप में 24 तीलियों वाले अशोक चक्र ने चरखे को प्रतिस्थापित किया। इसका उद्देश्य यह दिखाना है कि गति में जीवन है और ठहराव में मृत्यु है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार ध्वज के मानक। राष्ट्रीय झंडे में तीन रंगों की पट्टियां होंगी जिनमें समान चौड़ाई वाले तीन आयताकार पट्टियां होंगी। सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होगी और सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की तथा बीच की पट्टी सफेद रंग की होगी, जिसके बीच में समान अंतर पर 24 धारियों वाले नीले नेवी ब्लू रंग के अशोक चक्र का एक डिजाइन होगा। अशोक चक्र अधिमान्यता स्क्रीन प्रिंटेड या अन्यथा छपा हुआ या स्टेंसिल किया हुआ या उचित रूप से कड़ा हुआ होगा और सफेद पट्टी के केंद्र में झंडे के दोनों ओर से स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रामक 2 जनवरी 2020 पब्लिक पार्ट 3 दिनांक 30 दिसंबर 2021 द्वारा ध्वज संहिता में किए गए संशोधन के उपरांत अब भारत का राष्ट्रीय झंडा हाथ से कटा हुआ और हाथ से बनाए गए खादी के अलावा मशीन निर्मित सूती, पॉलिस्टर, ऊनी, सिल्क, खादी, बंटिंग कपड़े से भी बनाया जा सकेगा। राष्ट्रीय झंडा आकार में आयताकार होगा। झंडे की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई 3:2 होगी। भारतीय ध्वज संहिता 2002। भारतीय ध्वज संहिता 2002 26 जनवरी 2002 से लागू हुई है और इसने ध्वज के सम्मान और उसकी गरिमा को बनाए रखते हुए तिरंगे के अप्रतिबंधित प्रदर्शन की अनुमति दी। भारतीय ध्वज संहिता इस तरह के पिछले सभी कानूनों, परंपराओं और प्रथाओं को एक साथ लाने का एक प्रयास था। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। तीसरे भाग में केंद्र और राज्य सरकारों तथा उनके अनुषंगी संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के विषय में जानकारी दी गई है। इसमें उल्लेख है कि तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। भारतीय ध्वज संहिता स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी प्रकार की सजावट के प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए तथा इसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आधिकारिक प्रदर्शन के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप और उनके चिन्ह वाले झंडे का उपयोग किया जा सकता है। संविधान का भाग 4A। संविधान का भाग 4A जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51A शामिल है 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है। अनुच्छेद 51A के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे। झंडे के रचयिता पिंगली वेंकैया।
पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को वर्तमान आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम के निकट भाटला पेन्नुमारू नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमंता रायडू और माता का नाम वेंकट रतम्मा था। उन्होंने एक रेलवे गार्ड के रूप में और फिर बेल्लारी में एक सरकारी कर्मचारी के रूप में काम किया और बाद में वहां एंग्लो वैदिक महाविद्यालय में उर्दू और जापानी भाषा का अध्ययन करने लाहौर चले गए। वेंकैया कई विषयों के ज्ञाता थे। उन्हें भूविज्ञान और कृषि क्षेत्र से विशेष लगाव था। वेंकैया ने ब्रिटिश भारतीय सेना में भी सेवा की थी और दक्षिण अफ्रीका के एंग्लो बोअर युद्ध में भाग लिया था। यहीं वह गांधी जी के संपर्क में आए और उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। 1906 से 1911 तक पिंगली मुख्य रूप से कपास की फसल की विभिन्न किस्मों के तुलनात्मक अध्ययन में व्यस्त रहे और उन्होंने बाम वोलाट कंबोडिया कपास पर अपना एक अध्ययन प्रकाशित किया, जिसके कारण वह पट्टी वेंकैया कपास वेंकैया के नाम से विख्यात हो गए। महात्मा गांधी से उन्हें भारत के लिए राष्ट्रीय ध्वज को तैयार करने की प्रेरणा मिली। राष्ट्रीय ध्वज बनाने के बाद पिंगली वेंकैया का झंडा झंडा वेंकैया के नाम से लोगों के बीच लोकप्रिय हो गया। 4 जुलाई 1963 को पिंगली वेंकैया का निधन हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत 2009 में एक डाक टिकट के माध्यम से सम्मानित किया गया। 2014 में उनका नाम भारत रत्न के लिए भी प्रस्तावित किया गया था। मध्य प्रदेश का अवदान झंडा सत्याग्रह। मध्य प्रदेश के जबलपुर नगर में ही झंडा सत्याग्रह की नींव पड़ी थी। असहयोग आंदोलन की तैयारी के सिलसिले में जबलपुर पहुंचे हकीम अजमल खां और अन्य नेताओं के सम्मान के साथ साथ जबलपुर नगरपालिका भवन पर तिरंगा फहराने की रणनीति बनाई गई। कमिश्नर ने उस तिरंगे को उतरवा दिया और उसका पुलिस के द्वारा सार्वजनिक निरादर करवाया गया। इस अपमान के विरोध में तपस्वी सुंदरलाल नाथुराम मोदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, नरहरि अग्रवाल आदि ने जुलूस निकाला, जिन्हें पुलिस ने रोक दिया, लेकिन दूसरे जत्थे ने विक्टोरिया टाउन हॉल पर झंडा फहरा ही दिया। राष्ट्रीय नेताओं ने इस सत्याग्रह के महत्व को समझकर अखिल भारतीय स्तर पर इसे मनाने हेतु नागपुर को केंद्र के रूप में चुना तथा जमनालाल बजाज के नेतृत्व में इसकी तैयारियां प्रारंभ की गईं। इस सत्याग्रह का नेतृत्व चक्रवर्ती राज गोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने किया। 13 अप्रैल 1923 को नागपुर में शुरू इस सत्याग्रह के साथ जबलपुर में पुनः झंडा सत्याग्रह का आयोजन हुआ। सरोजनी नायडू और मौलाना आजाद की जबलपुर में उपस्थिति में टाउन हॉल पर फिर तिरंगा लहरा दिया गया। राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर सुंदरलाल को 6 माह की सजा दी गई। यह शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन था जिसने राष्ट्रवादी झंडे को फहराने और नागरिक स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले कानूनों की अवहेलना के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन की वैधता को चुनौती दी। झंडे के लिए बलिदान लाल पद्मधर सिंह। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक लोमहर्षक घटना है जब लाल पद्मधर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में आत्मोत्सर्ग किया। लाल पद्मधर सिंह का जन्म 1913 में मध्य प्रदेश के सतना जिले के कृपालपुर गांव में हुआ था। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे तथा हिंदू बोर्डिंग हाउस में उनका निवास था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को छात्रों के जुलूस का नेतृत्व किया। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ के साथ ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने 12 अगस्त को कलेक्ट्रेट को अंग्रेजों से मुक्त कराने और तिरंगा फहराने की योजना बनाई, लेकिन इसकी भनक अंग्रेजी हुकूमत को लगते ही कलेक्ट्रेट तक आने वाले रास्ते पर पुलिस तैनात कर दी गई। 12 अगस्त को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ भवन से छात्र छात्राओं का जुलूस तिरंगा लेकर कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुआ। इसका नेतृत्व लाल पद्मधर सिंह कर रहे थे। लाल पद्मधर सिंह हाथ में तिरंगा लेकर आगे बढ़े तो घोड़े पर सवार कलेक्ट्रेट डिक्शन ने उन्हें गोली मारने का आदेश दिया। भारत माता की जय के नारे लगाता हुआ यह युवा क्रांतिकारी ब्रिटिश शासन के दमन के चलते वीरगति को प्राप्त हुआ।
तिरंगे झंडे के संबंध में महत्वपूर्ण नियम तथ्य। राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान सर्वोपरि है। जब भी तिरंगा फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए, उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वह स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। तिरंगे को फहराते समय स्फूर्ति और उत्साह होना चाहिए और उतारते वक्त सम्मान और आदर प्रदर्शित होना चाहिए। झंडा दिए गए मानक आकार का होना चाहिए, इसमें केसरिया पट्टी सदैव ऊपर की ओर होनी चाहिए। किसी सभा में तिरंगा फहराते वक्त इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंच पर उपस्थित लोगों के दाहिनी ओर तिरंगा हो। किसी दूसरे झंडे या पताका को कभी भी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाता, ना ही कभी इसे तिरंगे के बराबर रखा जाता है। ऐसा तिरंगा जिस पर कुछ लिखा या छपा हुआ हो कभी भी नहीं फहराया जाना चाहिए। तिरंगे का व्यावसायिक इस्तेमाल गलत है। अगर कोई व्यक्ति तिरंगे को किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के आगे झुका देता हो, उसका वस्त्र बना देता हो, मूर्ति में लपेट देता हो, या फिर किसी मृत व्यक्ति, सैन्य बलों के शहीद जवानों के अलावा, के शव पर डालता हो, तो इसे तिरंगे का पान माना जाता है। राष्ट्रीय शोक के अवसर पर तिरंगे को आधा झुका दिया जाता है। किसी

ये था आज का विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की विकास गाथा। 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद।

इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने और परिकल्पना थी अदिति गौड़ की। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद और अब समय है हमारे कार्यक्रम देश के संस्थान का। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात करेंगे भारतीय स्टेट बैंक यानी भरोसे की बैंकिंग की।

0: देश के संस्थान, देश के विकास का आधार एवं अग्रणी संस्थानों पर आधारित कार्यक्रम जो भारत के गौरवशाली स्तंभ हैं, देश के संस्थान।
1: दादू, आप अलमारी में सुबह सुबह क्या ढूंढ रहे हैं?
2: अरे बिटिया, एक जरूरी कागज ढूंढ रहा हूँ। तुम्हारी दादी की पुरानी बैंक पासबुक यहीं कहीं रखी थी।
1: पासबुक दादी की? इतनी पुरानी?
2: हाँ, बहुत पुरानी है। हाँ, देखो मिल गई।
1: अरे वाह दादू, इसमें तो हाथ से लिखी हुई एंट्रीज भी है, पर अब तो सब कुछ मोबाइल में दिखाई देता है।
2: बिटिया, समय बदलता है तो चीजों का तरीका भी बदलता है। कभी बैंक की हर छोटी बड़ी जानकारी के लिए पासबुक हाथ में लेकर शाखा जाना पड़ता था।
1: दादू, बैंक की शाखा में जाना मुझे तो हमेशा से ही बोरिंग टाइप का लगता है। लाइन लगाओ, फॉर्म भरो, फिर इंतजार करो।
2: अरे बिटिया, आज तुम्हें ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि तुम ऐसे समय में बड़ी हो रही हो जब मोबाइल से पैसे भेजना, बैलेंस देखना और अगर बिल जमा करना हो तो कुछ सेकंड का काम हो गया है,
1: और एटीएम से पैसे निकालना भी।
2: हाँ बिल्कुल।
1: लेकिन दादू, एक बात बताइए ना, जब एटीएम नहीं थे, मोबाइल बैंकिंग नहीं थी, इंटरनेट बैंकिंग नहीं थी, तब लोग बैंक का काम कैसे करते थे, ऐसी एंट्री करा के?
2: नहीं बिटिया, बैंक तो तब भी थे, बस बैंकिंग का तरीका आज से बहुत अलग था।
1: अच्छा, और ये आपके हाथ में जो पासबुक है ये किस बैंक की है?
2: भारतीय स्टेट बैंक की।
1: SBI?
2: हाँ, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI।
1: लेकिन दादू, SBI इतना बड़ा बैंक कब से है? क्या ये शुरू से ही ऐसा था?
2: नहीं, ये कहानी बहुत दिलचस्प है। आज जिस बैंक को हम भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जानते हैं, उसके पीछे भारत की बैंकिंग व्यवस्था की एक लंबी यात्रा है।
1: अच्छा दादू।
2: हाँ।
1: तो ये कहानी कितनी लंबी है भला?
2: इतनी लंबी कि हमें आज की बैंक शाखा से पीछे चलते चलते उस दौर तक पहुँचना पड़ेगा जब भारत आजाद भी नहीं हुआ था।
1: अच्छा, क्या SBI की कहानी आजादी से पहले शुरू होती है दादाजी?
2: हाँ बिटिया, उसकी ऐतिहासिक जड़ें तो बल्कि उससे भी पहले की बैंकिंग संस्थाओं में मिलती हैं। बाद में कई बदलाव हुए और अंततः 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक अस्तित्व में आया।
1: एक मिनट दादू, अगर SBI 1955 में बना, हाँ? तो उससे पहले बैंकिंग कौन करता था?
2: अरे यहीं से तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है रुचि बेटी।
1: तो पुरानी पासबुक बंद करो या खोल कर रखो?
2: खोल कर रखो, आज ये पासबुक सिर्फ तुम्हारी दादी के खाते का हिसाब नहीं बताएगी, आज हमें ये बताएगी कि भारत में बैंकिंग व्यवस्था ने आम आदमी तक पहुँचने का सफर कैसे तय किया।
1: अच्छा,
2: तो बिटिया सुनो, भारतीय स्टेट बैंक की कहानी समझने के लिए हमें सबसे पहले उस दौर में जाना होगा जब भारत में बैंकिंग का स्वरूप आज जैसा नहीं था।
1: दादू, आपने तो कहा था कि SBI की कहानी आजादी से पहले के दौर तक जाती है।
2: हाँ।
1: लेकिन उस समय तो आज जैसी बैंकिंग व्यवस्था रही नहीं होगी ना?
2: हाँ, बिल्कुल नहीं थी।
1: तब
2: उस समय भारत की बैंकिंग व्यवस्था आज की तुलना में बहुत छोटी और सीमित थी। बैंक मुख्य रूप से बड़े व्यापारिक केंद्रों और शहरों तक सीमित थे।
1: वो तो ठीक है दादू, लेकिन गांव में रहने वाले लोग क्या करते थे?
2: बिटिया, आम लोगों के लिए तो बैंकिंग सेवाएं बहुत सीमित थी। बचत और उधार की जरूरतें पूरी करने के लिए लोग कई बार स्थानीय साहूकारों और दूसरे पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर रहते थे।
1: यानी हर किसी के पास बैंक खाता होना आम बात नहीं थी दादू?
2: नहीं, बैंकिंग का दायरा जितना व्यापक है ना, तब वैसा नहीं था।
1: फिर भारत में आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत कैसे हुई?
2: बिटिया, इस दौर के लिए हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी के उस दौर को देखना होगा जब भारत के प्रमुख व्यापारिक शहरों में बैंकिंग संस्थाएं विकसित होने लगी।
1: दादू, आप पहेलियां ना बुझाइए।
2: मतलब?
1: बताइए ना कौन कौन से शहर थे।
2: अरे भाई बता रहा हूँ, उस समय के 3 बड़े व्यापारिक और प्रशासनिक केंद्र, कलकत्ता, बंबई और मद्रास।
1: यानी आज के कोलकाता, मुंबई और चेन्नई।
2: बिल्कुल, और इन्हीं 3 केंद्रों से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण बैंकिंग संस्थाएं आगे चलकर भारतीय स्टेट बैंक के इतिहास की महत्वपूर्ण कड़ी बनी।
1: और वो कौन कौन सी संस्थाएं थी?
2: बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास।
1: अच्छा दादू, ये तीनों अलग अलग बैंक थे?
2: हाँ, उस समय ब्रिटिश शासन में भारत के बड़े प्रशासनिक क्षेत्रों को प्रेसिडेंसी कहा जाता था। उन क्षेत्रों के प्रमुख शहरों में स्थापित ये बैंक आगे चलकर बैंकिंग व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे।
1: वो सब तो ठीक है। हाँ। लेकिन फिर इन तीनों का क्या हुआ?
2: वर्ष 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर दिया गया।
1: विलय मतलब?
2: अरे मतलब जब दो या उससे अधिक अलग अलग संस्थाएं मिलकर एक नई संस्था का रूप ले लेती हैं, तो उसे विलय यानी मर्जर कहते हैं।
1: समझ रही हूँ मैं, जैसे तीन छोटी धाराएं मिलकर एक बड़ी नदी बन जाए।
2: हाँ वाह वाह वाह, बहुत सुंदर उदाहरण दिया तुमने। बैंकिंग में भी ऐसा ही समझ सकती हो, तीन अलग संस्थाओं को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया गया, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया।
1: ओ, तो यही बैंक बाद में SBI बना?
2: हाँ, लेकिन सीधे उसी नाम से नहीं। इसके बीच में भारत की स्वतंत्रता और बैंकिंग व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव आए।
1: अच्छा ये बताइए दादू।
2: हाँ?
1: इंपीरियल बैंक करता क्या था?
2: बिटिया ये एक बड़ा वाणिज्यिक बैंक था। वाणिज्यिक बैंक यानी एक ऐसा बैंक जो आम तौर पर लोगों और व्यवसायों से जमा स्वीकार करता है और विभिन्न जरूरतों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। इसके अलावा भुगतान और दूसरी बैंकिंग सेवाएं भी देता है।
1: तो आज जो हम सेविंग अकाउंट, लोन और पैसे ट्रांसफर जैसी चीजें देखते हैं ना।
2: हाँ?
1: उनका आधार इसी तरह की बैंकिंग व्यवस्था में है।
2: हाँ बिल्कुल, हालांकि समय के साथ इन सेवाओं का स्वरूप और तकनीक बहुत बदल गई है।
1: लेकिन दादू, अगर इंपीरियल बैंक इतना बड़ा था तो फिर SBI बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?
2: ये बहुत अच्छा सवाल किया बिटिया तुमने, क्योंकि भारत आजाद हो चुका था और देश की आर्थिक जरूरतें भी बदल रही थी। यानी आजादी के बाद सिर्फ सरकार और कानून ही नहीं बदले, बैंकिंग की जरूरतें भी बदली और नए राष्ट्र के सामने एक बड़ी चुनौती थी, आर्थिक विकास का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे।
1: और इसमें बैंक की क्या भूमिका हो सकती थी?
2: बहुत बड़ी भूमिका। सोचो, किसान को खेती के लिए ऋण चाहिए, छोटे व्यापारी को कारोबार के लिए पूंजी चाहिए, अगर किसी परिवार को घर बनाना है या किसी विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता चाहिए, तो इन जरूरतों के लिए व्यवस्थित बैंकिंग व्यवस्था जरूरी होती है।
1: दादू, मैं तो सोचती हूँ कि बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह है। यानी आपके हिसाब से बैंक सिर्फ पैसा रखने की जगह नहीं है?
2: बैंक बचत और निवेश के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। मान लो किसी व्यक्ति के पास अभी जरूरत से कुछ अधिक पैसा है और वो उसे बैंक में जमा करता है। दूसरी तरफ किसी व्यक्ति या व्यवसाय को किसी काम के लिए धन की जरूरत है तो बैंक नियमों के अनुसार ऋण देता है। इस तरह बैंक बचत को आर्थिक गतिविधियों तक पहुंचाने में मदद करता है।
1: यानी आप ये कहना चाहते हैं दादाजी कि एक की बचत दूसरे की जरूरत से जुड़ सकती है।
2: हाँ, बिल्कुल सही, यही बैंकिंग की बुनियादी आर्थिक भूमिका को समझने का एक आसान तरीका है।
1: अब समझ में आया मुझे दादू।
2: हाँ?
1: लेकिन फिर 1955 में क्या हुआ?
2: बिटिया, स्वतंत्र भारत ने तय किया कि देश के विकास में एक मजबूत बैंकिंग नेटवर्क की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। और इसी संदर्भ में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को बदलकर भारतीय स्टेट बैंक बनाया गया।
1: यानी SBI का जन्म एक बड़े बदलाव के रूप में हुआ।
2: हाँ, 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक अस्तित्व में आया। लेकिन इसके बाद असली चुनौती थी बैंकिंग सेवाओं को ज्यादा व्यापक बनाना, खासकर उन क्षेत्रों तक जहां बैंकिंग सुविधाएं पर्याप्त नहीं थी।
1: यानी अब कहानी सिर्फ एक बैंक के बनने की नहीं बल्कि बैंक को लोगों तक पहुंचाने की है।
2: बिल्कुल बिटिया, और यही इस कहानी का अगला महत्वपूर्ण अध्याय है।
1: अच्छा दादू, गांव तक बैंक पहुंचाना ये भला कैसे हुआ होगा?
2: यही तो अब समझना है बिटिया, क्योंकि बैंक की असली ताकत सिर्फ उसकी इमारत या बड़ी शाखा में नहीं होती, बल्कि वहां होती है जहां किसी आम आदमी को पहली बार ये भरोसा मिलता है कि वो अपनी मेहनत की कमाई बैंक में सुरक्षित रख सकता है और अगर जरूरत पड़ी तो वित्तीय सहायता भी प्राप्त कर सकता है। अरे अब क्या सोचने लग गई बिटिया?
1: दादू, मैं एक बात सोच रही हूँ। आपने कहा कि 1955 में भारतीय स्टेट बैंक बना और उसके बाद बैंकिंग को ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन बैंक तो शहरों में पहले से थे ना, गांव में बैंक की शाखा खोलने में इतनी बड़ी बात भला क्या थी?
2: बड़ी बात इसलिए थी बिटिया, क्योंकि बैंक की शाखा सिर्फ एक इमारत नहीं होती, मैंने वो कहा था ना, वो किसी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों से जुड़ने का एक माध्यम बन सकती है।
1: लेकिन वो कैसे दादू?
2: अच्छा मान लो किसी गांव का एक किसान है, उसे अगली फसल के लिए बीज, खाद या कृषि उपकरण खरीदने हैं, उसके पास अभी पूरा पैसा नहीं है और उसे ऋण चाहिए, लेकिन अगर उसके आसपास औपचारिक बैंकिंग सुविधा ही नहीं है तो बैंक से ऋण लेना उसके लिए आसान नहीं होगा।
1: और अगर बैंक की शाखा गांव या पास के कस्बे में हो तो?
2: तब उसके पास औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था तक पहुँच का एक रास्ता बनता है, वो खाता खोल सकता है, अपनी बचत जमा कर सकता है और पात्रता और बैंक के नियमों के अनुसार ऋण के लिए आवेदन कर सकता है।
1: यानी बैंक की शाखा दूर होने से भी लोगों की आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ सकता है?
2: हाँ बिल्कुल, इसलिए बैंकिंग का विस्तार केवल बैंकों के विस्तार का विषय नहीं था, ये आर्थिक भागीदारी को व्यापक बनाने से भी जुड़ा था और इसे ही वित्तीय समावेशन कहते हैं, यानी समाज की उन लोगों तक भी बचत और उपयोगी वित्तीय सेवाएं पहुंचाना जो किसी कारण से अब तक औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से बाहर या बहुत कम जुड़े रहे हैं।
1: तो क्या इसमें सिर्फ बैंक खाता खोलना ही शामिल है?
2: नहीं नहीं, इसमें वित्तीय समावेशन का दायरा इससे भी बड़ा है, इसमें बचत खाते जैसी मूल बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ आवश्यकता के अनुसार ऋण भुगतान की सुविधा, बीमा और पेंशन जैसी वित्तीय सेवाओं तक पहुंच भी शामिल हो सकती है।
1: तो दादाजी, बैंकिंग का मतलब सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है?
2: बिल्कुल नहीं।
1: और बैंक ने इस दिशा में क्या किया है फिर?
2: भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखाओं और बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के जरिए देश के अलग अलग हिस्सों में अपनी पहुँच बढ़ाई, आगे चलकर उसके साथ जुड़े बैंकों के विलय और अन्य संस्थागत बदलाव ने भी उसके नेटवर्क के आकार को बदला।
1: लेकिन दादू।
2: अरे भाई फिर रुचि बिटिया, अरे तुम परेशान बहुत होती हो।
1: आप ये बताइए मुझे, बैंक लोगों से पैसे जमा कराता है, फिर वही पैसा लोन में देता है, तो बैंक को फायदा कहाँ से होता है?
2: हाँ बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखो बैंक की आय के प्रमुख स्रोतों में से एक है ब्याज, यानी जब मैं बैंक में पैसे जमा करता हूँ तो बैंक मुझे ब्याज देता है, और जब बैंक किसी को ऋण देता है तो उससे ब्याज लेता है। सामान्य रूप से समझने के लिए तुम ऐसा कह सकती हो कि बैंक जमा पर ब्याज दे सकता है और ऋण पर ब्याज लेता है, दोनों के बीच का अंतर बैंक की आय के महत्वपूर्ण स्रोतों में शामिल होता है। हालांकि बैंक की आय केवल इसी अंतर तक सीमित नहीं होती, उसे कई तरह की सेवाओं से भी आय हो सकती है।
1: तब तो बैंक का काम बहुत संतुलित तरीके से चलाना पड़ता होगा दादाजी।
2: बिल्कुल, बैंक को एक तरफ जमाकर्ताओं के पैसे का बहुत ध्यान रखना होता है और दूसरी तरफ दिए गए ऋण की वसूली और जोखिम का भी प्रबंधन करना होता है।
1: जोखिम? जोखिम किस तरह का जोखिम?
2: अरे मान लो बैंक ने किसी व्यक्ति या व्यवसाय को ऋण दिया और अगर वो व्यक्ति समय पर पैसा वापस नहीं कर पाता तो बैंक के लिए समस्या पैदा हो सकती है, इसलिए बैंक किसी को भी मनमाने ढंग से लोन नहीं दे सकता। ऋण देने से पहले बैंक कई बातों का आकलन करता है, जैसे आवेदक की वित्तीय स्थिति, आय, ऋण चुकाने की क्षमता, ऋण का उद्देश्य और बैंक के निर्धारित नियम आदि।
1: मतलब बैंक में काम करने वाले लोगों को सिर्फ कंप्यूटर चलाना नहीं आना चाहिए?
2: बिल्कुल नहीं बेटिया, बैंकिंग में गणना, वित्तीय समझ, ग्राहक सेवा, नियमों की जानकारी, जोखिम की समझ और तकनीक सबकी जरूरत होती है।
1: दादू यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ना, कि अगर किसी विद्यार्थी को बैंकिंग में करियर बनाना हो तो उसे क्या पढ़ना चाहिए?
2: बिटिया ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो बैंकिंग में किस भूमिका के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए कुछ बुनियादी चीजें बहुत उपयोगी हैं, जैसे गणितीय समझ, तर्क शक्ति, भाषा और संचार कौशल, सामान्य जागरूकता, कंप्यूटर की जानकारी और वित्तीय विषयों की बुनियादी समझ।
1: आपने कॉमर्स की बात नहीं कही, क्या कॉमर्स पढ़ना भी जरूरी है?
2: अरे बिटिया ये सारी चीजें कॉमर्स के अंदर ही तो कहीं ना कहीं आती हैं। हर बैंकिंग नौकरी के लिए केवल कॉमर्स पृष्ठभूमि होना अनिवार्य नहीं है, कई बैंक भर्ती परीक्षाओं में अलग अलग शैक्षणिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थी अवसर पा सकते हैं, इसलिए विद्यार्थी को पहले उस पद की आधिकारिक पात्रता और परीक्षा पैटर्न देखना चाहिए जिसके लिए वो तैयारी कर रहा है।
1: यानी सिर्फ ये सोचकर कि मैंने कॉमर्स नहीं पढ़ी है, बैंकिंग मेरे लिए नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना?
2: बिल्कुल, अपने लक्ष्य के अनुसार योग्यता और परीक्षा की शर्तें देखो और फिर तैयारी करो, बैंक में अलग अलग स्तर और प्रकृति के अलग अलग काम होते हैं। उदाहरण के लिए ग्राहक सेवा से जुड़े पद, अधिकारी स्तर के पद, तकनीकी और विशेषज्ञ भूमिकाएं, सूचना प्रौद्योगिकी, विधि, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन और अन्य विशेषज्ञ क्षेत्रों में भी अवसर हो सकते हैं।
1: मतलब बैंकिंग सिर्फ कैश काउंटर पर बैठने का काम नहीं है?
2: नहीं बिटिया, बिल्कुल नहीं। आज बैंक एक तकनीकी और जटिल वित्तीय संस्था भी है। बैंक ने कागज और काउंटर से आगे बढ़कर कंप्यूटर, एटीएम, इंटरनेट और मोबाइल तक का सफर तय किया है।
1: और अब तो मैं घर बैठे पैसे भेज देती हूँ दादू।
2: हाँ, लेकिन याद रखना, तकनीक ने बैंकिंग को तेज और सुविधाजनक बनाया है और साथ ही साइबर सुरक्षा और डिजिटल सावधानी की जरूरत भी बढ़ाई है।
1: यानी बैंकिंग सीखने वाले स्टूडेंट्स को अब सिर्फ बैंक और पैसे के बारे में नहीं, तकनीक और सुरक्षा के बारे में भी सीखना होगा।
2: हाँ बिल्कुल, आज का बैंकिंग क्षेत्र बहुविषयक है। वित्त, अर्थशास्त्र, गणित, तकनीक, कानून और ग्राहक सेवा, कई क्षेत्रों की समझ यहाँ एक दूसरे से जुड़ती है।
1: दादू, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आपने शुरुआत में क्यों कहा था कि बैंक की कहानी सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं है।
2: अरे बिटिया, रवि तो कहानी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है।
1: अच्छा, कौन सा?
2: यही कि जिस बैंक की शुरुआत शाखाओं और पासबुक से हुई थी, वही बैंक आगे चलकर एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के दौर में कैसे पहुंचा और इस बदलाव ने हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे बदला।
1: तो अब आगे पासबुक से मोबाइल तक की यात्रा।
2: हाँ, और इस बार तो तुम्हारा मोबाइल भी कहानी का एक पात्र होगा।
1: तब तो दादू मैं आपको बैंकिंग सिखाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि अपनी ओटीपी किसी को नहीं बताना। ये देखिए दादू, हो गया ना?
2: क्या हो गया बिटिया?
1: दादू मैंने अभी अभी मोबाइल से पैसे भेजे ना, और देखिए तुरंत पहुंच भी गए।
2: अच्छा, किसे भेजे?
1: पड़ोस वाली आंटी को, उन्होंने मेरे लिए कुछ सामान मंगवाया था।
2: और बैंक गई थी?
1: नहीं तो, मोबाइल से ही कर दिया।
2: वाह, देख रही हो, यही है बैंकिंग में बदलाव की कहानी।
1: लेकिन दादू इसमें इतना बड़ा बदलाव क्या है भला, हम तो रोजाना मोबाइल से पैसे भेजते हैं।
2: अरे बिटिया, ये तुम्हारे लिए सामान्य है, लेकिन सोचो कुछ दशक पहले अगर किसी को अपने खाते से पैसे भेजने होते तो उसे बैंक की शाखा में जाना पड़ता था, फॉर्म भरना, कर्मचारी से संपर्क करना और बैंक की प्रक्रिया पूरी करना, ये समय समय लगता था।
1: ओहो दादू, और अब कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ हो जाता है घर बैठे बैठे।
2: वही तो ना, तकनीक ने बैंकिंग की गति और पहुंच दोनों को बदल दिया।
1: लेकिन दादू एक बात बताइए ना,
2: हाँ?
1: बैंक में कंप्यूटर कब आए?
2: बिटिया बैंकिंग का कंप्यूटरीकरण धीरे धीरे हुआ। पहले बैंक के कई काम कागज और रजिस्टरों पर ही निर्भर होते थे, फिर जैसे जैसे कंप्यूटर तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा, खातों की जानकारी और बैंकिंग प्रक्रियाओं को अधिक व्यवस्थित और तेज करने की दिशा में बदलाव आया।
1: तो मेरी दादी की ये पुरानी पासबुक उस समय की याद है?
2: हाँ बिटिया, पासबुक उस दौर की बैंकिंग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। आज तो मोबाइल ऐप में अपने खाते का विवरण देख सकती हो, लेकिन पहले पासबुक में दर्ज प्रविष्टियाँ खाते के लेन देन का रिकॉर्ड बताती थी।
1: और फिर आया एटीएम।
2: हाँ, बैंकिंग धीरे धीरे शाखा के काउंटर से बाहर निकलने लगी।
1: एटीएम का मतलब तो मुझे पता है दादू, ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
2: शाबाश, लेकिन इसका काम सिर्फ पैसे निकालना नहीं है। एटीएम के जरिए उपलब्ध सेवाओं के अनुसार ग्राहक नकदी निकाल सकता है, जमा भी कर सकता है, बैलेंस जैसी जानकारी देख सकता है और कुछ अन्य बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग कर सकता है।
1: और दादू फिर इंटरनेट बैंकिंग आई और उसके बाद मोबाइल बैंकिंग।
2: बिल्कुल सही, और इसके साथ ही बैंकिंग की दुनिया में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया, ग्राहक की भूमिका भी बदल गई।
1: वो कैसे भला?
2: अब देखो, पहले ग्राहक बैंक की शाखा पर अधिक निर्भर था, अब ग्राहक स्वयं कई काम डिजिटल माध्यम से कर सकता है। खाते की जानकारी देखना, भुगतान करना, पैसे ट्रांसफर करना, कई सेवाओं के लिए आवेदन करना।
1: लेकिन दादू,
2: हाँ?
1: पैसे ट्रांसफर करने के भी इतने नाम है ना, NEFT, RTGS, IMPS और UPI, मुझे तो ये सब एक जैसे ही लगते हैं।
2: अरे बिटिया, यही तो एक विद्यार्थी के लिए समझने वाली बात है। इन सभी का उद्देश्य पैसे को एक खाते से दूसरे खाते तक पहुँचाना है, लेकिन इनके काम करने का तरीका और उपयोग अलग हो सकता है।
1: दादू आसान भाषा में बताइए।
2: अरे भाई बहुत बुद्धू हो। NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धन हस्तांतरण की प्रणाली है।
1: ठीक है दादू, अभी आरटीजीएस क्या है?
2: बिटिया, आरटीजीएस यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, बड़े मूल्य के लेन देन के लिए इस्तेमाल होने वाली महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली है, जिसमें लेन देन का निपटारा रियल टाइम आधार पर होता है।
1: और ये IMPS?
2: IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विस, त्वरित इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण की सुविधा।
1: और ये UPI तो मैं सबसे ज्यादा सुनती हूँ।
2: अरे भाई, अभी तो तुमने किया, तुम्ही ने बताया ना, तुमने फोन से पैसे भेजे आंटी को। तो UPI यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, अलग अलग बैंक खातों के बीच डिजिटल भुगतान को आसान बनाने वाला इंटरफेस है। इससे मोबाइल के जरिए भुगतान और धन हस्तांतरण बहुत सुविधाजनक हो गया।
1: तो इन सबको एक ही चीज समझना मतलब गलत होगा।
2: हाँ, विद्यार्थी को किसी भी तकनीकी शब्द को केवल याद नहीं करना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि वो किस समस्या का समाधान करता है और उसकी मुख्य विशेषता क्या है।
1: सही कहा दादू आपने। अच्छा ये बताइए ना, आज के दौर में बैंक में नौकरी करने के लिए कंप्यूटर आना क्यों जरूरी है?
2: बिटिया, आज के बैंकिंग वातावरण में डिजिटल और कंप्यूटर संबंधी समझ निश्चित रूप से उपयोगी है। और अगर कोई विद्यार्थी तकनीकी क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है तो बैंकिंग में उसके लिए विशेषज्ञ भूमिकाएं भी हो सकती हैं।
1: मतलब बैंक में सिर्फ बैंकिंग पढ़े हुए लोग ही नहीं जाते?
2: बिल्कुल नहीं। आज बैंकिंग संस्थानों में IT, साइबर सुरक्षा, डेटा, कानून, अर्थशास्त्र, जोखिम प्रबंधन और दूसरे विशेषज्ञ क्षेत्रों से जुड़े लोग भी काम करते हैं। SBI की वर्तमान भर्ती में भी प्रोबेशनरी ऑफिसर, जूनियर एसोसिएट और विभिन्न स्पेशल कैडर ऑफिसर जैसे अलग अलग अवसर दिखाई देते हैं। यानी बैंकिंग में सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ी विशेषज्ञ भूमिकाएं भी होती हैं। इसलिए विद्यार्थियों को केवल एक पारंपरिक नौकरी की कल्पना तक सीमित नहीं रहना चाहिए।
1: अच्छा ये बताइए कि अगर कोई सामान्य बैंक अधिकारी बनना चाहे तो?
2: बिटिया, SBI में प्रोबेशनरी ऑफिसर एक प्रमुख प्रवेश मार्ग है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार PO के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री आवश्यक है। अंतिम वर्ष सेमेस्टर के विद्यार्थी भी निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन कर सकते हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, हालांकि वास्तविक पात्रता हमेशा संबंधित भर्ती विज्ञापन से ही देखनी चाहिए, क्योंकि नियम भर्ती के अनुसार बदल सकते हैं।
1: यानी दादू, अगर मैंने इतिहास, विज्ञान या कला पढ़ी है तभी मैं बैंकिंग की तैयारी कर सकती हूँ?
2: बिल्कुल कर सकती हो, लेकिन तैयारी करते समय अपनी परीक्षा की आधिकारिक पात्रता, पाठ्यक्रम और चयन प्रक्रिया को ध्यान से देखना जरूरी है।
1: दादू आपने पहले कहा था कि बैंकिंग में भरोसा बहुत जरूरी है, डिजिटल बैंकिंग में तो सुरक्षा और भी जरूरी होगी। यानी सुविधा बढ़ी तो खतरे भी तो बढ़ गए ना?
2: बिल्कुल, नए प्रकार के जोखिम जरूर सामने आए, इसलिए डिजिटल बैंकिंग करते समय हमेशा कुछ बातें याद रखनी चाहिए, जैसे OTP, पासवर्ड, ATM पिन और अन्य संवेदनशील बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। अनजान लिंक पर क्लिक करने और संदिग्ध संदेशों पर भरोसा करने से भी बचना चाहिए।
1: सही कहा दादू आपने, आज के समय में जागरूकता कितनी जरूरी है।
2: आज का समझदार बैंक ग्राहक वही है जो सुविधा का इस्तेमाल भी करे और सुरक्षा का भी ध्यान रखे।
1: दादू
2: हाँ?
1: अब आपकी पुरानी पासबुक और मेरा मोबाइल दोनों एक ही कहानी के दो हिस्से लग रहे हैं।
2: हाँ।
1: एक में बैंक तक जाना पड़ता था और दूसरे में बैंक मेरे हाथ में आ गया।
2: यही तो बैंकिंग की यात्रा है रुचि, शाखा से स्क्रीन तक।
1: तो दादू क्या अब ये कहानी पूरी हो गई है?
2: अरे नहीं बिटिया, अभी बिल्कुल नहीं, एक बड़ा अध्याय अभी बाकी है।
1: वाह दादू, कितना कुछ आप बचा कर रखते हो ना। अब बताओ कौन सा अध्याय बाकी है?
2: बिटिया, ये समझना कितने बड़े बैंक का विस्तार सिर्फ तकनीक से नहीं हुआ, उसके पीछे शाखाओं का नेटवर्क, ग्रामीण बैंकिंग, सहयोगी बैंकों का इतिहास और समय के साथ हुए बड़े संस्थागत बदलाव भी हैं।
1: यानी अगली बार फिर इतिहास की तरफ लेकर चलेंगे आप मुझे?
2: इतिहास और वर्तमान दोनों साथ साथ।
1: ठीक है दादू, लेकिन इस बार ये पासबुक मैं रखूंगी।
2: हैं? क्यों?
1: ताकि अगली कहानी में कोई तारीख छूट ना जाए। अच्छा दादू, कितने मजे की बात है ना, इस पूरी यात्रा में SBI भी लगातार बदलता रहा।
2: हाँ, यही तो किसी बड़े संस्थान की पहचान है, समय के साथ बदलना और लोगों की जरूरतों के अनुसार अपनी सेवाओं को विकसित करना।
1: तो दादू आज की कहानी यही खत्म ना?
2: हाँ बिटिया, लेकिन एक बात याद रखना, बैंकिंग सिर्फ पैसे का विषय नहीं, भरोसे, जिम्मेदारी और बदलती तकनीक को समझने का भी विषय है।
1: और शायद भविष्य बनाने का भी।
2: हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें अर्थव्यवस्था, तकनीक और लोगों के साथ काम करने में रुचि है तो बैंकिंग तुम्हारे लिए एक संभावनाओं वाला क्षेत्र हो सकता है।
1: ठीक है दादू, चलिए अब आप अपनी पासबुक जरा मुझे दे दीजिए।
2: अच्छा लो बेटा, लेकिन संभाल कर रखना, इसमें सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं, तुम्हारी दादी की यादें और समय का इतिहास भी दर्ज है।
1: बिल्कुल दादू। तो श्रोताओं, ये था आज का कार्यक्रम देश के संस्थान, जिसमें रुचि और दादाजी बात कर रहे थे भारतीय स्टेट बैंक की भरोसे की बैंकिंग यानी SBI। कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना थी अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग किया सतीश बाथम ने। आपके साथ मैं थी भगवती सक्सेना
2: और मैं संदीप शर्मा।
1: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रमों को 90.8 MHz पर, देश का चैनल
2: देश के लिए।

0: नमस्कार, मैं हूँ हर्षदीप कौर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमें नाज है देश के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत माता के सभी महान सच्चे सपूतों को हर्षदीप का शत शत नमन।
1: जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

स्वाधीनता संग्राम स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

0: आजाद हिंद कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को इतिहास का नमस्कार
1: और साथ ही तारीख का भी नमस्कार स्वीकार कीजिए श्रोताओं।
0: तारीख, आज आप किस बलिदानी की कहानी लेकर आई हैं?
1: इतिहास। आजाद हिंद एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें इतिहास और तारीख दोनों मिलकर किसी न किसी क्रांतिवीर की कहानी अपने श्रोताओं के लिए लेकर आते हैं। तो आज आप ही बताइए किसकी बारी है।
0: तारीख, आज बारी है ऐसी क्रांतिकारी महिला की जिन्होंने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद जैसे देशभक्तों के साथ मिलकर भारत की आजादी का सपना देखा, और वो है दुर्गावती यानी दुर्गा भाभी।
1: तो फिर हम अपने श्रोताओं को ज्यादा इंतजार न करवाएं तो अच्छा होगा।
0: जी, एक शताब्दी से थोड़ा पहले जब 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद के पंडित बांके बिहारी नागर के घर एक सुकुमार कन्या का जन्म हुआ, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि बड़ी होकर ये बच्ची भारत में ब्रिटिश हुकूमत की ईंट से ईंट बजा कर रख देगी। इस बच्ची का नाम दुर्गावती रखा गया। 10 माह में ही इस बच्ची की मां की मृत्यु हो गई। वैराग्य से घिरे पिता ने उसके चाचा चाची के घर सौंपकर संन्यास की राह पकड़ी।
1: 1918 में आगरा निवासी शिवचरण वोहरा के पुत्र भगवती चरण वोहरा के साथ उनका विवाह हुआ। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 11 साल थी और वे 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी। जन जागृति और शिक्षा के महत्व को समझने वाली दुर्गावती ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। 1925 में उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम शचिंद्र नाथ रखा गया।
0: चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन की वापसी हुई और देशभक्तों के एक वर्ग ने 1857 के स्वाधीनता संग्राम के साथ साथ रूस, अमेरिका और फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा पाकर देश की आजादी का सपना देखा था। भारत को आजाद कराने की रणनीति में जुटे लाला हरदयाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया। इसकी पहली कार्यकारिणी सभा 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में हुई।
1: इस सभा में बिस्मिल के नेतृत्व में योगेंद्र शुक्ल, योगेश चंद्र चटर्जी और ठाकुर रोशन सिंह जैसे लोग थे। बाद में अशफाक उल्ला, चंद्रशेखर आजाद भी इस संस्था में शामिल हो गए। काकोरी कांड के बाद यही संस्था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के नाम से पुनर्जीवित हुई, तो इसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा, उनकी बहन सुशीला दीदी और दुर्गावती भी जुड़ गई।
0: मेरठ षड्यंत्र कांड में भगवती चरण वोहरा के नाम पर वारंट निकलने पर वे अपनी पत्नी दुर्गावती के साथ लाहौर चले गए, जहां वे भारतीय नौजवान सभा में शामिल हुए। 16 नवंबर 1926 को भारतीय नौजवान सभा ने शहीद करतार सिंह की 11वीं पुण्यतिथि का आयोजन किया। दुर्गा देवी और उनकी ननद सुशीला देवी ने अपने खून से शहीद करतार सिंह का चित्र बनाया था। यहीं से दोनों क्रांतिकारी महिलाएं दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी के नाम से जानी जाने लगी। इस पार्टी के जरिए दुर्गा भाभी लगभग सभी क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गई।
1: दुर्गा भाभी के लिए सबसे यादगार दिन था 17 दिसंबर 1928 का। लाहौर के पुलिस अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या करने के बाद सुखदेव और भगत सिंह ने दुर्गा भाभी के घर पर शरण ली। भगत सिंह अंग्रेजों की तरह सूट और हैट पहने थे। दुर्गा भाभी समझ गई कि क्या हुआ है। प्रोफेसर भगवती चरण वोहरा कलकत्ता गए हुए थे। दुर्गा भाभी ने भी योजना बनाई कि इन्हें भी कलकत्ता लेकर जाया जाए।
0: लाहौर से कलकत्ता जाने की योजना बनी। भगत सिंह और दुर्गा भाभी पति पत्नी के वेश में थे। उन्होंने ट्रेन में प्रथम श्रेणी की टिकट ली और राजगुरु ने सेवक की वेशभूषा में तृतीय श्रेणी की टिकट ली। जब ये लोग लाहौर रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहां पुलिस पहले से ही भगत सिंह को खोजते हुए पहुंची थी, लेकिन दुर्गा भाभी की मदद से भगत सिंह पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर ट्रेन में जा बैठे। ये सभी क्रांतिकारी ट्रेन में सवार होकर स्वाधीनता संघर्ष का एक नया इतिहास रचने जा रहे थे। इस घटना के बारे में किसी ने कहा है कि मौत से बचना आसान है, लेकिन उस शाम लाहौर स्टेशन पर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर बच निकलना किसी चमत्कार से कम नहीं था।
1: यात्रा के दौरान दुर्गा भाभी ने अपने पति भगवती चरण वोहरा को तार भेजकर सूचना दी कि वे उन्हें कलकत्ता स्टेशन पर लेने आ जाएं। कलकत्ता में इनकी मुलाकात अतुल गांगुली, जीएन दास और फणीन्द्र घोष जैसे क्रांतिकारियों से हुई।
0: जी।
1: वहां उन्होंने अपने संगठन की एक शाखा भी खोली। यहां पर उन्हें बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। कलकत्ता में रहकर भगत सिंह ने बांग्ला भाषा भी सीखी।
0: कलकत्ता में ही इन क्रांतिकारियों ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बाबू को निकट से देखा। दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा इन क्रांतिकारियों के लिए पिता और मार्गदर्शक की तरह थे और दुर्गा भाभी मां की तरह इनका ख्याल रखती थीं और क्रांतिकारी योजना बनाने में भी इनकी मदद किया करती थीं। इन सभी क्रांतिकारियों के साथ कलकत्ता में कुछ वक्त रहकर दुर्गा भाभी लाहौर वापस आ गईं। असेंबली में बम फेंकने की योजना भी कलकत्ता में ही तैयार हुई।
1: योजना के मुताबिक भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली पर बम फेंका और गिरफ्तार कर लिए गए। इस मुकदमे में इन दोनों को सजा दी गई। जल्दी ही ये भी सिद्ध हो गया कि सैंडर्स की हत्या में भगत सिंह भी शामिल थे। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में रखा गया।
0: चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों ने तय किया कि भगत सिंह और उनके साथियों को किसी तरह जेल से छुड़ाया जाए। इस समय दुर्गा भाभी और सुशीला दीदी भी भूमिगत थीं। भगत सिंह और उनके साथियों को छुड़ाने के लिए 1 जून 1930 को जेल पर बम फेंका जाना था। बम ठीक तरह से बने हैं या नहीं ये देखने के लिए 28 मई 1930 को भगवती चरण वोहरा, वैशंपायन और सुखदेव बम लेकर रावी नदी के किनारे गए। बम परीक्षण के दौरान भगवती चरण वोहरा के हाथों में बम फट गया और उनकी मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद दुर्गा भाभी अकेली हो गई।

0: क्रांतिकारी दल पर दूसरा वज्रपात ये हुआ कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुना दी गई। सभी क्रांतिकारी यहाँ वहाँ बिखर कर काम करने लगे थे। ये तय किया गया कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी की सजा के विरोध में कोई बड़ा कदम उठाया जाए।
1: बंबई के गवर्नर हेली की हत्या की योजना बनाई गई। इस पूरी योजना की जिम्मेदारी दुर्गा भाभी ने खुद ली। वो अपने कुछ साथियों के साथ बंबई जा पहुंची। उनके साथियों में थे सुखदेव और पृथ्वी सिंह। क्रांति के क्षेत्र में पृथ्वी सिंह अनुभवी लोगों में गिने जाते थे। अमेरिका में बनी भारतीय क्रांतिकारियों की पार्टी के संस्थापक भी पृथ्वी सिंह ही थे। भारत लौटकर पृथ्वी सिंह को अंग्रेजी सरकार का तख्ता पलटने की साजिश में फांसी की सजा हुई, जो बाद में आजीवन कारावास में बदल दी गई।
0: गवर्नर हेली शाम को अपने बागीचे में बैठा करते थे। योजना के मुताबिक दुर्गा भाभी ने पारसी महिला के वेश में अपने मित्र शिंदे की गाड़ी में बैठकर उसके ड्राइवर बापट के साथ हेली के घर जाने का निर्णय किया। सुखदेव और पृथ्वी सिंह उनके अभिभावक के वेश में उनके साथ गए। तय ये हुआ कि दुर्गा भाभी गवर्नर हेली को बातों में उलझाकर उन पर गोली चला देंगी। बाकी लोगों ने भी विरोध किया तो सुखदेव और पृथ्वी सिंह भी गोली चला देंगी।
1: योजना के मुताबिक दुर्गा भाभी पृथ्वी सिंह और सुखदेव के साथ कार में सवार होकर गवर्नर के बंगले पहुंची। गवर्नर हेली घर पर नहीं मिले। बहुत देर तलाश करने के बाद ये तीनों गवर्नर के घर के पास लैमिंगटन रोड पुलिस थाने पहुंचे। उस थाने पर ज्यादातर गोरे पुलिस अधिकारी थे। रात 1 बजे पुलिस की एक गाड़ी आई और उसमें से एक महिला और कुछ गोरे अफसर उतरे। इन तीनों क्रांतिकारियों को लगा कि पुलिस उन्हें पकड़ने आई है। पृथ्वी सिंह चिल्लाकर बोले, शूट। दुर्गा भाभी ने उस महिला को छोड़कर बाकी गोरे अधिकारियों पर गोलियों की बौछार कर दी। पृथ्वी सिंह और सुखदेव भी गोली चलाने लगे। गोलियां चलती देख पुलिस अधिकारी थाने से बाहर आए और आक्रमणकारियों को उन्होंने घेरना चाहा। क्रांतिकारी वहां से भागे और अपने ठिकाने पहुंचे। पुलिस ने पीछा करते हुए गाड़ी के ड्राइवर बापट को पकड़ लिया और उसे लेकर क्रांतिकारियों के ठिकाने पहुंचे। पुलिस को देखकर दुर्गा भाभी, पृथ्वी सिंह और सुखदेव घर के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गए। पृथ्वी सिंह साधु के वेश में पैदल चलकर नौसारी पहुंच गए और दुर्गा भाभी अपने बच्चे को लेकर सुखदेव के साथ कानपुर चली गई। बंबई हाईकोर्ट में 10 लोगों पर लैमिंगटन शूटिंग केस चला और 4 मई 1931 को सभी निर्दोष घोषित कर दिए गए।
0: दुर्गा भाभी के जीवन में दूसरा वज्रघात हुआ। उनके पति की मृत्यु के बाद उनके संरक्षक और अभिभावक चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क में ब्रिटिश अधिकारियों से संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। चंद्रशेखर आजाद के जाने के बाद दुर्गा भाभी अब पूरी तरह अकेली हो गई थी। वे इधर उधर आश्रय पाने के लिए भटक रही थी। दुर्गा भाभी को अपने से ज्यादा चिंता अपने पुत्र शचिंद्र की थी। उसे परेशानियों से बचाने के लिए और उसकी शिक्षा के लिए वे दिल्ली में रहने लगी। इस बीच पुलिस उन्हें लगातार परेशान करती रहती थी।
1: दुर्गा भाभी जब लाहौर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में उन्हें 3 साल तक नजरबंद रखा गया। उसके बाद दुर्गा भाभी लाहौर से गाजियाबाद चली गईं, जहां उन्होंने एक कन्या विद्यालय में नौकरी कर ली। फिर वो दिल्ली पहुंच गईं। उनकी कर्मठता, त्याग और कार्यकुशलता को देखते हुए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष भी उन्हें चुना गया। 1940 से ही वे उत्तर भारत में पहले मॉन्टेसरी स्कूल की स्थापना के लिए कोशिश कर रही थी। आजादी के बाद दुर्गा भाभी ने लखनऊ को अपना स्थायी निवास बनाया। 7 फरवरी 1957 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मॉन्टेसरी सोसाइटी की नींव रखी और दुर्गा भाभी को उसके प्रबंधन का काम सौंपा।
0: 1983 तक दुर्गा भाभी इस संस्था के प्रबंध समिति में रही। फिर लखनऊ छोड़कर वे गाजियाबाद आ गई। लखनऊ छोड़ते समय उन्होंने अपना निवास संस्था को दान कर दिया। आजादी के बाद उन्हें राजनीति में आने का प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। पंजाब सरकार द्वारा उन्हें 51,000 की राशि भेंट की गई, लेकिन दुर्गा भाभी ने उसे अस्वीकार करते हुए कहा कि इन पैसों से एक शहीद स्मारक बनाया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को भारत के इतिहास और देश की गौरवशाली परंपरा को जानने का मौका मिल सके।
1: 15 अक्टूबर 1999 को 92 साल की आयु में दुर्गा भाभी का गाजियाबाद में निधन हो गया। दुर्गा भाभी जैसी देशभक्त ने अपना सारा जीवन देश की आजादी के लिए और आजादी के बाद देश की प्रगति के लिए समर्पित कर दिया। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में दुर्गा भाभी जैसी देशभक्त और समाज सेविका को हमेशा हमेशा बहुत श्रद्धा के साथ में याद किया जाएगा।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आजाद हिंद, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय। अब हमें इजाजत दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

स्वाधीनता संग्राम, स्वराज पर एकाग्र कार्यक्रम आजाद हिंद, ज्ञात अज्ञात स्वाधीनता संग्राम सेनानियों, रणबांकुरों, जननायकों की क्रांति कथाएं और आजादी के यादगार तराने।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: यूनियन नामक जुड़वा जहाज, एक कॉरपोरेट गृह युद्ध की कहानी। क्या आप जानते कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में समुद्र की लहरों पर एक अजीब संयोग देखने को मिला था? दो कट्टर प्रतिद्वंदी कंपनियों के पास दो बिल्कुल एक जैसे जहाज थे और दोनों का नाम था यूनियन। ये जहाज बनाने वालों की कोई गलती या कल्पना की कमी नहीं थी, बल्कि ये जुड़वा जहाज अंग्रेजी मसाला व्यापार के अस्तित्व को बचाने के लिए की गई एक हताशा का प्रतिनिधित्व करते थे। इस भ्रम को समझने के लिए आपको उस कॉरपोरेट गृह युद्ध को देखना होगा जिसने लंदन शहर को दो हिस्सों में बांट दिया था। लगभग एक सदी तक पुरानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्ण एकाधिकार का आनंद लिया था, लेकिन 1690 के दशक तक उन्हें उन राजनेताओं और व्यापारियों ने घेर लिया जो उनके विशेष अधिकारों को एक असंवैधानिक अवशेष मानते थे। क्या आप जानते हैं कि ये प्रतिद्वंदिता कितनी तीव्र थी? दोनों कंपनियों ने केवल काली मिर्च के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं की, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ तोड़फोड़ का युद्ध छेड़ दिया। सूरत में नई कंपनी की कौंसिल सर निकोलस वेट ने मुगल अधिकारियों को रिश्वत देकर पुरानी कंपनी के अध्यक्ष सर जॉन गियर को 9 साल तक जेल के एक गंदे छेद में बंद रखा। हिंद महासागर के पार दोनों फर्मों के एजेंटों ने स्थानीय राजाओं के सामने एक दूसरे को चोर और समुद्री डाकू घोषित कर दिया, जबकि उनके कर्मचारी एक दूसरे को कालकोठरी में फेंक रहे थे। लंदन में बैठे निदेशकों ने जब अपने बैंक खातों को देखा तो वे कांप गए। इस आंतरिक युद्ध की लागत अनुमान से अधिक थी। इसके अलावा फ्रांस के साथ एक नया युद्ध, वॉर ऑफ द स्पैनिश सक्सेशन, करीब आ रहा था और ब्रिटिश सरकार को चेतावनी दी थी कि रॉयल नेवी दो विभाजित और झगड़ालू बेड़ों की सुरक्षा का खर्च नहीं उठा सकती। दोनों कंपनियों को एहसास होने लगा कि अगर वे विलय नहीं करती हैं तो दोनों दिवालिया हो जाएंगी। अतीत में उन्होंने स्पीड वेल या ट्रेड्स इंक्रीज जैसे आशावादी नाम चुने थे। अब दोनों ने यूनियन नाम से एक जहाज का निर्माण कराया जो इस बात का संकेत था कि विलय ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। अप्रैल 1702 में अंततः इंस्ट्रूमेंट ऑफ यूनियन पर हस्ताक्षर किए गए, लेकिन यहां सबसे दिलचस्प हिस्सा है। क्या आप जानते हैं कि यूनियन ने वास्तव में भ्रम को समाप्त नहीं किया? 7 साल की संक्रमण अवधि के लिए तकनीकी रूप से एक साथ 3 कंपनियां काम कर रही थी, पुरानी नई और नई बनी यूनाइटेड कंपनी, जो अपने अलग अलग ऋणों को निपटाने की कोशिश कर रही थी और एक ही जहाज साझा कर रही थी। बंगाल में इसने पूर्ण भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, जहां दो प्रतिद्वंदी अध्यक्ष हर हफ्ते बारी बारी से गवर्नर की कुर्सी पर बैठते थे। दो जहाज जिनका नाम यूनियन था, उस समय के प्रमाण हैं जब व्यापारिक लालच ने एशिया में ब्रिटिश उपस्थिति को लगभग नष्ट कर दिया था। केवल जहाज के पतवार पर लिखा वह हताश नाम उस यूनाइटेड कंपनी की ओर इशारा कर रहा था जो आगे चलकर एक विशाल साम्राज्य पर राज करने वाली थी।

0: रेडियो रिपोर्ट में एक बार फिर से हम आपको लिए चल रहे हैं भोपाल के रविंद्र भवन के मुक्ताकाश मंच पर आयोजित 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्री रामलीला उत्सव के दूसरे दिन में।
1: आपकी तालियों के साथ आज रामलीला उत्सव के हमारे दूसरे दिवस को अपनी कला और सुंदर प्रस्तुतियों के साथ सत्रिया केंद्र असम के कलाकारों को मंच पर करतल ध्वनि से आइए आमंत्रित करें और इस अंतर्राष्ट्रीय रामलीला उत्सव के हम इस दूसरे दिवस में भावपूर्ण से सम्मिलित हों।

ए जय जय रघुर नंदन राम अहल्यार मुकुति हाधल काम मिथिला कगया हरधनु गुण दिया जनक नंदिनीक विवाह करिला ए परशुरामर दर्पशून्य कयो जगतत गाथा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: ख्वाजा अहमद का मिशन 1665, जब मुगल दूत डच राजधानी पहुंचा। 3 मार्च 1665 को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री साम्राज्य के तांत्रिक केंद्र बटाविया कैसल के डक पर कदम रखा। उसका नाम ख्वाजा अहमद था और वो कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वो बंगाल के शक्तिशाली सूबेदार गवर्नर और मुगल शासक औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का कूटनीतिक दूत था। जहां इतिहास एशियाई दरबारों में यात्रा करने वाले यूरोपीय राजदूतों के वृत्तांतों से भरा है, वहीं अहमद का मिशन इसके विपरीत था। ये एक मुगल दूत द्वारा यूरोपीय कंपनी राज्य की राजधानी की यात्रा का एक दुर्लभ उदाहरण था। ये मिशन प्रांतीय कूटनीति का एक सटीक उदाहरण था, जहां स्थानीय मुगल गवर्नर राजाओं की स्वायत्तता और वजन के साथ काम करते थे। ख्वाजा अहमद एक उच्च तनाव के क्षण में पहुंचा था। शाइस्ता खान चटगांव बंदरगाह को जीतने और अरकान खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था। डच एक अनिश्चित स्थिति में थे। वे बंगाल में अपने व्यापार से भारी लाभ कमा रहे थे, लेकिन साथ ही वे शाइस्ता खान के दुश्मनों के क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे थे। अहमद ने डच सरकार के सामने एक पत्र और उपहार प्रस्तुत किए, जिसमें एक कड़ा अल्टीमेटम छिपा हुआ था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, वीओसी को तुरंत अपनी अराकान फैक्ट्री बंद करनी होगी। चटगांव अभियान में जहाजों और तोपों के साथ मुगल सेना का समर्थन करना होगा। यदि डच इनकार करते तो शाइस्ता खान ने उन्हें न केवल बंगाल से निकालने की धमकी दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में उनके संचालन को रोकने की चेतावनी दी। बटाविया में डच प्रशासक एक रणनीतिक दुविधा में फंस गए। हालांकि उन्होंने शुरुआत में व्यवहारिक कारणों की कमी का बहाना बनाकर देरी करने की कोशिश की, लेकिन वो समझ गए थे कि वो दिल्ली में मुगल शासक से अपील करके शाइस्ता खान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि सूबेदार केंद्रीय दरबार से बहुत दूर रहता है और वो दिल्ली के किसी भी हस्तक्षेप से बहुत पहले ही प्रांतों में डचों को परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है। ख्वाजा अहमद की मिशन बंगाल के लिए एक बड़ी सफलता थी। पूर्ण व्यावसायिक विनाश के खतरे का सामना करते हुए वीओसी ने अंततः अराकान में अपना लॉज यानी व्यापारिक केंद्र बंद कर दिया। ये दुर्लभ मिशन दिखाता है कि शक्तिशाली दिखने वाले यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं के साथ आर्थिक और सैन्य रूप से तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बटाविया में ख्वाजा अहमद के आगमन ने साबित कर दिया था कि 17वीं शताब्दी में ओरिएंट की रानी यानी बटाविया को अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के मालिकों को जवाब देना पड़ता था।
2: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
3: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: स्वामी विवेकानंद के ज्ञान भंडार का परिचय आपको मिला। उन्हें भारतीय प्राचीन ग्रंथों के साथ साथ देश तथा संप्रदायों के इतिहास का भी ज्ञान था। वे सिर्फ पढ़ते ही न थे बल्कि तथ्यों को अपने तर्क से समझकर उसकी व्याख्या भी करते थे।
1: स्वामी जी पूरे देश में भ्रमण कर लोगों से मिलकर ये समझे थे कि हमारे देश में दो प्रचलित धारणाएं हैं। एक मत ये है कि जो कुछ पश्चिम देशीय है वही निर्दोष, पूर्ण और सर्वांग सुंदर है। हमारे देश में ऐसा कुछ भी नहीं जो विचार योग्य हो या जिसका पालन किया जा सके।
0: दूसरे मतावलंबी ये समझते हैं कि हमारे देश का आचार, आचरण और विचार ही श्रेष्ठ हैं। हम पश्चिम से कुछ सीख सकते हैं ये उन्हें मान्य नहीं। दोनों ही विचार संकुचित तथा संकीर्ण हैं।
1: स्वामी जी ने दोनों मतों को समझा और इन धुंधली धारणाओं को दूर करने के लिए प्राच्य तथा पाश्चात्यो नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में उन्होंने दोनों संस्कृतियों की तुलना, प्रशंसा तथा आलोचना की है। इसमें उन्होंने उन सभी तथ्यों को शामिल किया है जिनमें विभिन्न संस्कृतियों का जन्म हुआ है।
0: आज हम स्वामी जी के कुछ विचारों को देखेंगे कि उन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य जातियों के चरित्र के बारे में क्या कहा है।
2: प्रत्येक जाति का एक जातीय उद्देश्य है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार या महापुरुषों की प्रतिभा के बल से प्रत्येक जाति की रीति नीति उस उद्देश्य को सफल करने के लिए उपयोगी है। प्रत्येक जाति के जीवन में इस उद्देश्य एवं उसके उपयोगी उपाय स्वरूप आचार को छोड़कर और सब रीति नीति व्यर्थ है। इन व्यर्थ की रीति नीतियों के ह्रास या वृद्धि से कुछ विशेष बनता बिगड़ता नहीं। यदि उस विशेष उद्देश्य पर आघात होता तो वो जाति जरूर नष्ट हो जाती है।
1: उन्होंने विभिन्न जातियों की तुलना भारतीयों से की है।
2: तीन वर्तमान जातियों की तुलना कीजिए जिनका इतिहास आप थोड़ा बहुत जानते हैं। वे हैं फ्रांसीसी, अंग्रेज और भारतीय। राजनीतिक स्वाधीनता फ्रांसीसी जातीय चरित्र का मेरुदंड है। फ्रांसीसी प्रजा सब अत्याचारों को शांत भाव से सहन करती है। करों के भाव से पीस डालिए फिर भी वो चूं तक न करेगी। सारे देश को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर डालिए पर कोई आपत्ति न की जाएगी, किंतु जब कोई उनकी स्वाधीनता में हस्तक्षेप करता है तब सारी जाति पागलों की तरह प्रतिघात करने लगती है। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर जबरदस्ती अपना हुक्म नहीं चला सकता। यही फ्रांसीसियों के चरित्र का मूल मंत्र है। ज्ञानी, मूर्ख, धनी, दरिद्र, उच्च वंशीय, नीच वंशज, सभी को राज्य के शासन और सामाजिक स्वाधीनता में समान अधिकार है। इसके ऊपर हाथ डालने वाले को ही इसका फल भोगना होगा।
0: अब सुनिए उन्होंने अंग्रेज जातीय चरित्र के बारे में क्या कहा था।
2: अंग्रेजों के चरित्र में व्यवसाय बुद्धि तथा आदान प्रदान की प्रधानता है। अंग्रेजों की आवश्यकीय विशेषता है समान भाग, न्याय विभाग। अंग्रेज राजा और कुलीन जाति के अधिकार को नतमस्तक होकर स्वीकार कर लेती हैं, परंतु यदि गांठ में से पैसा बाहर करना हो तो वे हिसाब मांगते हैं। राजा है तो अच्छी बात है, उसका लोग आदर करेंगे, किंतु यदि राजा रुपया चाहे तो उनकी आवश्यकता और प्रयोजन के संबंध में हिसाब किताब समझा बूझा जाएगा, तब कहीं देने की बारी आएगी। राजा की बलपूर्वक रुपया इकट्ठा करने की इच्छा से यहाँ विप्लव खड़ा कर दिया, उन लोगों ने राजा को मार डाला।
1: अब वे भारतीयों के चरित्र की व्याख्या करते हैं।
2: भारतीय कहते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक स्वाधीनता बहुत अच्छी चीज है, किंतु वास्तविक चीज आध्यात्मिक स्वाधीनता अर्थात मुक्ति है। यही जातीय जीवन का उद्देश्य है। वैदिक, जैन, बौद्ध, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत सभी इस संबंध में एकमत हैं। इसमें हाथ न लगाना, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। इसे छोड़कर और चाहे जो कुछ करो चुप रहेंगे। लाठी मारो, काला कहो, सर्वस्व छीन लो, इससे होता कुछ नहीं, किंतु इसी दरवाजे को छोड़ दो। प्राचीन काल में पठान लोग आते जाते थे, कोई स्थिर होकर राज्य नहीं कर सका क्योंकि धर्म पर वे बराबर आघात करते रहे। परंतु दूसरी ओर मुगल राज्य किस प्रकार सुदृढ़, प्रतिष्ठित तथा बलशाली हुआ, कारण यही है कि मुगलों ने इस स्थान पर आघात नहीं किया, भारतीय ही तो मुगलों के सिंहासन के आधार थे। जहांगीर, शाहजहां, दारा, शिकोह आदि सभी की माताएं हिंदू थीं। और देखो, जो ही भाग्यहीन औरंगजेब ने उस स्थान पर आघात किया, क्यों ही इतना बड़ा मुगल राज्य स्वप्न की तरह हवा हो गया। अंग्रेजों का यह सुदृढ़ सिंहासन किस चीज के ऊपर प्रतिष्ठित है? कारण यही है कि किसी भी अवस्था में अंग्रेज उस धर्म के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते। पादरियों ने थोड़ा बहुत हाथ डालकर ही तो सन 1857 में हंगामा उपस्थित किया था। अंग्रेज जब तक इसको अच्छी तरह समझते तथा इसका पालन करते रहेंगे, तब तक उनका राज्य कई पीढ़ियों तक संभव है बना रहे। विज्ञ बहुदर्शी अंग्रेज भी इस बात को समझते हैं।
0: उन्होंने समझाया था कि हर देश तथा जाति के पीछे एक खास शक्ति होती है, उसी जाति से चरित्र गठन होता है।
2: उसी एक महाशक्ति का फ्रांसीसियों के विस्तार के रूप में और हिंदुओं के हृदय में मुक्ति लाभ की इच्छा के रूप में विकास हुआ है। किंतु इसी महाशक्ति की प्रेरणा से कई शताब्दियों से नाना प्रकार के सुख दुखों को झेलते हुए फ्रांसीसी और अंग्रेजी चरित्र गठित हुआ है, और उसी की प्रेरणा से लाखों शताब्दियों के आवर्तन में हिंदुओं के जातीय चरित्र का विकास हुआ है।
1: उन्हें अपने देशवासियों पर पूरा भरोसा था कि एक दिन वे अपने खोए हुए आदर्शों को फिर से प्राप्त कर लेंगे।
2: ये सोचना कि हमारे राष्ट्रीय आदर्श में भूल रही है निरीमूर्खता है। पहले अन्य देशों में जाइए, अपनी आंखों से देखकर, दूसरों की आंखों से नहीं। उनकी अवस्था और रहन सहन का अध्ययन कीजिए, और यदि मस्तिष्क हो तो उन पर विचार कीजिए। फिर अपने शास्त्रों और पुराने साहित्य को पढ़िए और समस्त भारत की यात्रा कीजिए तथा विभिन्न प्रदेशों में रहने वाले अधिवासियों के चाल चलन, आचार विचार का विस्तीर्ण दृष्टि और उन्नत मस्तिष्क से, बेवकूफों की तरह नहीं, विचार कीजिए। तब समझ सकोगे कि जाति अभी भी जीवित है, दुखदुखी चल रही है, केवल बेहोश हो गई है। और देखोगे कि इस देश का प्राण धर्म है, भाषा धर्म है तथा भाव धर्म है। आपकी राजनीति, समाज नीति, रास्ते की सफाई, प्लेग निवारण, दुर्भिक्ष पीड़ितों को अन्नदान आदि आदि चिरकाल से इस देश में जैसे हुआ है वैसे ही होगा। अर्थात धर्म के द्वारा यदि होगा तो होगा, अन्यथा नहीं। आपके रोने चिल्लाने का कुछ भी असर न होगा।
1: स्वामी जी सभी को मनुष्य बनने की शिक्षा देते थे, व्यर्थ के आचार विचार को वे नहीं मानते थे।
2: एक बात पर विचार कर देखिए, मनुष्य नियमों को बनाता है या नियम मनुष्यों को बनाते हैं? मनुष्य रुपया पैदा करता है या रुपया मनुष्यों को पैदा करता है? मनुष्य कीर्ति और नाम पैदा करता है या कीर्ति और नाम मनुष्य पैदा करते हैं? मेरे मित्रों, पहले मनुष्य बनिए, तब आप देखेंगे कि वे सब बाकी चीजें स्वयं आपका अनुसरण करेंगी। परस्पर के घृणित द्वेष भाव को छोड़िए और सउद्देश्य, सदुपाय, सत्साहस एवं सद्वीर्य का अवलंबन कीजिए। आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है,

0: सांचे में ढाल कर लेना होगा। मेरे मित्रों, एक बात आपको और समझ लेना चाहिए, हमें अवश्य ही अन्यान्य जातियों से बहुत कुछ सीखना है। जो मनुष्य कहता है कि हमें कुछ नहीं सीखना है, समझ लो कि वो मृत्यु की राह पर है। जो जाति कहती है कि हम सर्वज्ञ हैं, उसकी अवनति के दिन बहुत निकट हैं। जितने दिन जीना है उतने दिन सीखना है, उसे अपने सांचे में ढाल लेना है, अपने असल तत्व को सदा बचाकर फिर बाकी चीजें सीखनी होंगी। खाना तो सब देशों में एक ही है, पर हम पैर समेट कर खाते हैं और यूरोपीय पैर लटका कर खाते हैं। अब मान लो कि मैं उन्हीं की तरह खाता हूं, तो क्या मुझे भी उन्हीं की तरह टांग लटका कर बैठना पड़ेगा? ऐसा होने से निश्चय ही मेरी टांग यम के ग्रह की ओर प्रस्थान करेंगी। इस दुख में जो प्राण जाएगा उसका क्या लाभ? इसलिए हमें उनका भोजन पैर समेट कर ही खाना होगा। इसी प्रकार जो कुछ भी विदेशी बातें सीखनी होंगी, उन्हें अपनी बनाकर पैर समेट कर अपने वास्तविक जातीय चरित्र की रक्षा कर तब सीखनी होगी।
1: उन्होंने जातिगत भिन्नता को समझाया था, उसके कारण बताए थे, पर कभी किसी की निंदा नहीं की।
0: वे भी अच्छे हैं और हम भी अच्छे हैं। काको बंदों काको निंदों दोनों पल्ला भारी। हाँ, ये अवश्य है कि भले की भी श्रेणियां हैं। हमारे विचार से तीन चीजों से मनुष्य का संगठन होता है, शरीर, मन और आत्मा। पहले शरीर की बात लीजिए, जो सबसे बाहरी चीज है। देखिए शरीर में कितना भेद है, नाक, मुंह, गठन, लंबाई, चौड़ाई, रंग, केश आदि में कितनी विभिन्नताएं हैं।
2: उन्होंने रंग भेद पर कहा था,
0: आधुनिक पंडितों का विचार है कि रंग की भिन्नता वर्ण संकरता से उपस्थित होती है। गर्म देश और ठंडे देश के भेद से कुछ भिन्नता जरूर होती है, किंतु काले और गोरे का असली कारण पैतृक है। बहुत ठंडे देशों में भी काले रंग की जातियां देखी जाती हैं, एवं अत्यंत उष्ण प्रदेश में भी खूब गोरी जाति बसती है। कनाडा निवासी अमेरिका के आदि मनुष्य और उत्तरीय ध्रुव प्रदेश की एस्किमो जाति काली है, तथा भूमध्य रेखा के पास बोर्नियो, सेलबीज आदि टापुओं में बसने वाले आदिम निवासी गौरांग हैं, जबकि उनकी जलवायु गर्म है। पर चाहे गोरे हों अथवा काले, दुनिया की सब जातियों की अपेक्षा ये भारतीयों की जाति अधिक सुंदर और श्री संपन्न है। ये बात मैं अपनी जाति की बढ़ाई करने के लिए नहीं कर रहा हूं, ये जग प्रसिद्ध बात है। इस देश में प्रति सैकड़ा जितने स्त्री पुरुष सुंदर हैं, उतने और कहां है। इसके बाद विचार कर देखो, दूसरे देशों में सुंदर बनने में जो लगता है, उसकी अपेक्षा हमारे देश में कितना कम लगता है। कारण यह है कि हमारा शरीर अधिकांश खुला रहता है। दूसरे देशों में कपड़े लत्ते से ढककर कुरूपता को बदलकर सुंदरता बनाने की चेष्टा की जाती है।
1: परंतु स्वामी जी ने पश्चिमी देशों के लोगों के स्वास्थ्य की बहुत तारीफ की थी,
0: किंतु स्वास्थ्य के संबंध में पाश्चात्य देशवासी हमारी अपेक्षा अधिक सुखी हैं। उन देशों में 40 वर्ष के पुरुष को जवान कहते हैं, छोकरा कहते हैं, 50 वर्ष की स्त्री युवती कहलाती है। अवश्य ही ये लोग अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, एवं सबसे अच्छी बात तो ये है कि बाल विवाह नहीं करते। हमारे देश में जो दो एक बलवान जातियां हैं, उनसे पूछ कर देखिए कितनी उम्र में विवाह करते हैं। गोरखाली, पंजाबी, जाट, अफरीदी आदि पहाड़ी जातियों से पूछिए। इसके बाद शास्त्र को पढ़ देखिए, 30, 25 और 20 वर्ष में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को क्रमानुसार विवाह करने को लिखा है। आयु, बल, वीर आदि में इनमें और हम लोगों में बहुत भेद है। हमारी बल वृद्धि 30 वर्ष की उम्र पार करते ही शेष हो जाती है, और वे लोग उस समय बदन झाड़ कर उठ खड़े होते हैं।
2: स्वामी जी ने दोनों देशों में होने वाली बीमारियों की भी व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की है।
0: हम लोग निरामिष भोजी हैं, हमें अधिकांश पेट के ही रोग होते हैं। हमारे अधिकतर बूढ़े इसी पेट की बीमारी से मरते हैं। वे मांसभोजी हैं, उन्हें अधिकतर हृदय की बीमारी होती है। पाश्चात्य देशों में अधिकतर बूढ़े बूढ़ी हृदय रोग और फेफड़े की बीमारी से मरते हैं। एक पाश्चात्य देशीय विद्वान डॉक्टर पूछते हैं कि क्या पेट की बीमारी से पीड़ित लोग प्रायः निरुत्साह और बैरागी होते हैं। हृदय आदि शरीर के ऊपरी भाग के रोगों में आशा और पूरा विश्वास रहता है। हैजे का रोगी आरंभ से ही मृत्यु के भय से अस्थिर हो जाता है। टीबी का रोगी मरने के समय तक भी विश्वास करता है कि उसे आराम हो जाएगा। अतएव क्या इसलिए भारतवासी सदा मृत्यु और वैराग्य की बातें कहा करते हैं? मैं तो अभी तक इस प्रश्न का कोई समुचित उत्तर ही नहीं सोच सका, किंतु बात विचारणीय है अवश्य।
1: उन्होंने आगे और भी कहा है कि
0: हमारे देश में दांत और केश के रोग बहुत कम होते हैं और उस देश में बहुत ही कम लोगों के स्वाभाविक दांत होते हैं। गंजे तो सभी जगह पाए जाते हैं। हमारी स्त्रियां नाक और कान गहना पहनने के लिए छिदवाती हैं। वहां की भले घर की स्त्रियां नाक कान नहीं छिदवाती, किंतु कमर को बांधकर रीढ़ की हड्डी को मरोड़कर प्लीहा और यकृत को अपनी जगह से हटाकर शरीर को ही कुरूप बना डालती हैं। अपने शरीर को सुंदर बनाने के कारण उन्हें मृत्यु का कष्ट झेलना पड़ता है।
2: स्वामी जी की पैनी नजर उनके पोशाक पर भी पड़ी थी। उसकी तुलना भी वे हमारी पोशाकों से करते हैं।
0: पाश्चात्य देशीय पोशाक कामकाज करने के लिए अधिक उपयुक्त होती है। धनी लोगों की स्त्रियों की सामाजिक पोशाक को छोड़कर अन्य स्त्रियों की पोशाक भद्दी होती है। हमारी स्त्रियों की साड़ी और हमारे पुरुषों का चोगा, चपकन और पगड़ी के सौंदर्य की तुलना इस पृथ्वी पर है ही नहीं। ढीले ढाले कपड़ों की सुंदरता को तंग कपड़े पा ही नहीं सकते। हमारे सभी कपड़े कलीदार और ढीले ढीले रहते हैं, इसलिए उन्हें पहनकर कामकाज नहीं किया जा सकता। काम करने में वे नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इनका फैशन कपड़े में है और हमारा फैशन कहने में। अब थोड़ा थोड़ा हमारा ध्यान कपड़े की ओर भी गया है। स्त्रियों की पोशाक के पेरिस और पुरुषों के लिए लंदन केंद्र है। पेरिस की नर्तकियां नए नए फैशन निकालती हैं। किसी प्रसिद्ध नर्तकी ने जो पोशाक पहनी उसी का अनुकरण करने के लिए सब दौड़ पड़ती हैं। आजकल कपड़ा बेचने वाले बड़े बड़े दुकानदार नए फैशन का प्रचार करती हैं। कितने करोड़ रुपए प्रतिवर्ष इस पोशाक बनाने में लगते हैं, इसे हम समझ नहीं सकते।
1: उन्हें पश्चिमी फैशन का भी ज्ञान था। वे बड़े मजे लेकर वहाँ के फैशन की बात करते हैं।
0: इन नई पोशाकों की सृष्टि करना इस समय एक बड़ी कला हो गई है। किसी स्त्री के शरीर और केश के रंग के साथ किस रंग की पोशाक मेल खाएगी, उसके शरीर का कौन अंग ढकना होगा और कौन खुला रखना होगा, इत्यादि बातों पर खूब गंभीर विचार कर तब पोशाक तैयार करनी पड़ती है। इसके बाद दो चार बहुत ऊंची श्रेणी की महिलाएं जो पोशाक पहनती हैं, वही पोशाक अन्य स्त्रियों को भी पहननी पड़ेगी, नहीं तो उनकी जाति चली जाएगी। इसी का नाम फैशन है। फिर भी ये फैशन घड़ी घड़ी बदलता है। वर्ष के चार मौसमों में चार बार बदलना तो आवश्यक ही है। इसके अलावा और भी कितने समय आते हैं जब पोशाक बदली जाती है ना मजे की बात।
2: इन बातों को बताते हुए स्वामी जी खूब मजा लेते थे। फैशन के बारे में तो उनकी बहुत हंसी उड़ाते थे।
0: जो बहुत अमीर होते हैं उनके कपड़े पेरिस से बनकर आते हैं, बाकी लोग अपने देश में ही उनकी नकल कर कपड़े बनवाते हैं, किंतु स्त्रियों की टोपियां तो फ्रांस की ही बनी होनी चाहिए। जिसके पास फ्रांस की ही बनी टोपी नहीं है वो अच्छी स्त्री ही नहीं समझी जाती। अंग्रेज और जर्मन स्त्रियों की पोशाक अच्छी नहीं समझी जाती। 10-20 अमीर स्त्रियों को छोड़कर वे अच्छे कपड़े नहीं पहनती, इसलिए दूसरे देशों की स्त्रियां उन पर हंसती हैं। बहुत से अंग्रेज पुरुष बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं। बिना किसी भेद के अमेरिका के सभी स्त्री पुरुष बहुत सुंदर कपड़े पहनते हैं। यद्यपि विदेशी वस्त्रों का आना रोकने के लिए अमेरिका की सरकार पेरिस और लंदन के कपड़ों पर बहुत अधिक चुंगी लेती है, फिर भी सभी स्त्रियां अपने कपड़े पेरिस तथा सभी पुरुष अपने कपड़े लंदन से ही मंगवाते हैं। तरह तरह के रंग के पश्मीना और बनात तथा रेशमी कपड़े प्रतिदिन निकलते हैं। लाखों आदमी उसी को काट छांट कर पोशाक बनाते हैं। पोशाक यदि ठीक ढंग की न हुई तो सभ्य पुरुष या स्त्री का रास्ते में निकलना ही कठिन हो जाता है। हमारे देश में कपड़ों के फैशन का यह हंगामा नहीं है, पर गहनों में थोड़ा थोड़ा फैशन घुस रहा है। रेशमी और ऊनी कपड़े के व्यापारी उन देशों में दिन रात फैशन के परिवर्तनों पर और लोगों को कौन फैशन अधिक पसंद हुआ इस सब पर खूब तीखी नजर रखते हैं, अथवा कोई नया फैशन तैयार कर उस ओर लोगों के मन को आकृष्ट करने की चेष्टा करते हैं। जहां एक बार भी अंदाजा पक्का बैठ गया कि वो व्यवसायी माला माल हो गया। जब तृतीय नेपोलियन फ्रांस देश के बादशाह थे, उस समय साम्राज्ञी येजुनी पाश्चात्य देश की वेशभूषा की अधिष्ठात्री देवी समझी जाती थी। उन्हें कश्मीरी शाल बहुत पसंद था, इसलिए यूरोपीय लाखों रुपए का शॉल खरीदते थे। नेपोलियन के पतन के पश्चात फैशन बदल गया और कश्मीरी शॉलों की खपत यूरोप में रुक गई।
2: स्वामी जी जब ये बातें सुनाते तो लोग हंस हंस के लोटपोट हो जाते थे, क्योंकि उनका सुनाने का ढंग ही इतना मजेदार होता था कि लोग सुनते ही चमत्कृत हो जाते थे। अब स्नान करने की प्रथा पर वे क्या कहते थे, सुनिए।
0: पहले शरीर को ही लेकर देखिए, बाह्य और आभ्यंतरिक शुद्धि का नाम ही पवित्रता है। मिट्टी जल आदि के द्वारा शरीर शुद्ध होता है। दुनिया की ऐसी कोई जाति नहीं है जिसका शरीर भारतीयों के सदृश साफ हो। भारतीयों के अतिरिक्त और किसी भी जाति के लोग शौचादि में जल का इतना अधिक व्यवहार नहीं करते। यदि ये कहें कि पाश्चात्य देश वाले नहाते ही नहीं तो भी कोई हर्ज नहीं। भारत में आने के कारण अंग्रेजों ने अपने देश में स्नान करने की प्रथा चलाई है। जो विद्यार्थी विलायत से पढ़कर लौटे हैं उनसे पूछिए कि वहां स्नान करने का कितना कष्ट है। जो लोग स्नान करते हैं अर्थात सप्ताह में एक दिन, उसी दिन वे भीतर पहनने का कपड़ा गंजी अधभैया आदि बदलते हैं। अवश्य ही कुछ अमीर लोग प्रतिदिन स्नान करते हैं। अमेरिका वालों में प्रतिदिन स्नान करने वालों की संख्या अधिक है। जर्मनी वाले सप्ताह में एक दिन और फ्रांस तथा दूसरे देश वाले तो बहुत ही कम स्नान करते हैं। स्पेन इटली आदि गर्म देश हैं, फिर भी वहां लोग बहुत कम स्नान करते हैं। लहसुन बहुत खाते हैं, पसीना बहुत होता है, पर सात जन्म में भी जल का स्पर्श नहीं होता। उनके शरीर की दुर्गंध से भूतों के 14 पुरखे भी भाग जाएंगे। भूत तो लड़के बच्चे हैं।
1: इसी संदर्भ में स्वामी जी ने एक आप बीती कही थी।
0: सभ्यता की राजधानी, रंग ढंग भोग विलास का स्वर्ग, विद्या शिल्प के केंद्र पेरिस में एक बार मेरे एक धनी मित्र बुलाकर ले गए। एक किले के समान होटल में उन्होंने मुझे ठहराया। राजाओं जैसा खाना मिलता था, किंतु स्नान

0: बंद कहीं नहीं था, अलग स्नान करने के स्थान थे जहां एक बार 4-5 रुपया देकर स्नान किया जा सकता था। उसी दिन शाम को मैंने एक अखबार में पढ़ा कि एक बुढ़िया स्नान करने के लिए हौज में बैठी और वहीं मर गई। डॉक्टर चाहे जो कहें, पर मैं तो यही कहूंगा कि जीवन में प्रथम बार ही बुढ़िया के अंग को उतने जल का स्पर्श हुआ होगा, इसलिए उसकी अचानक मृत्यु हो गई। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। रूस वाले तो सर्वथा मलेच्छ हैं, तिब्बत से ही मलेच्छता आरंभ हो जाती है, पर अमेरिका के प्रत्येक निवास गृह में अवश्य ही स्नानागार और नल रहता है।
1: सुनाते सुनाते उन्होंने भारतीयों को भी आड़े हाथों लिया।
0: किंतु देखिए, हम में और इनमें कितना अंतर है। हम हिंदू किस लिए स्नान करते हैं? हमें अधर्म का डर है, और पाश्चात्य लोग शरीर साफ करने के लिए हाथ मुंह धोते हैं। हमारे शरीर में चाहे मैल और तेल लगा ही क्यों ना रहे, सिर्फ ऊपर पानी उड़ेल लेने से हमारा काम चल जाता है। हमारे दक्षिणात्य भाई लोग इतना लंबा चौड़ा तिलक लगाते हैं, उसे झावे से भी धोकर साफ करना जरा टेढ़ी खीर है। हमारे स्नान करने की प्रथा बड़ी सरल है, कहीं भी डुबकी मार लेने से काम चल जाता है। किंतु पाश्चात्य देशों में ऐसा नहीं है, उन्हें एक टोकरी कपड़ा ही खोलना पड़ता है, बटन हुक और काज का तो कहना ही क्या। हमें शरीर दिखलाने में कोई लज्जा नहीं है, उनके लिए अच्छा नहीं है। बाप बेटे के सामने विवस्त्र हो सकता है, पर स्त्रियों के सामने सिर से पैर तक कपड़ा पहनना ही होगा।
2: कहते कहते स्वामी जी भी हंस पड़े और बोले,
0: और फिर देश भेद के कारण जो कार्य अनिवार्य हैं, उन्हें समाज शांत रूप से अपना लेता है। हमारे जैसे गर्म देश में भोजन करने के समय हम आधा घड़ा पानी पी डालते हैं, फिर हम ना डकारें तो क्या करें। किंतु पाश्चात्य देशों में डकारना बहुत असभ्य काम है, पर खाते खाते जेब से रुमाल निकालकर यदि नाक झाड़कर साफ की जाए तो कोई हर्ज नहीं। किंतु हमारे देश में ये बड़ी घृणित बात है। ठंडे देशों में बीच बीच में नाक साफ किए बिना बैठा ही नहीं जा सकता। हम लोग मैले से अत्यंत घृणा करते हैं, फिर भी हम बहुत मैले रहते हैं। हमको मैले से इतनी घृणा है कि जिसने मैला छुआ उसे स्नान करना पड़ेगा, इसलिए दरवाजे पर मैले के ढेर को हम सड़ने देते हैं। सिर्फ ध्यान इसी बात का रहता है कि हम उसे छूते तो नहीं। पर इधर जो नरक कुंड का वास होता है उसका क्या? एक अनाचार के भय से दूसरा महाघोर अनाचार। एक पाप से बचने के लिए हम दूसरा गुरुतर पाप करते हैं। जो अपने घर में कूड़े का ढेर रखता है वो अवश्य ही पापी है, इसमें संदेह ही क्या है। उसका दंड भोगने के लिए उसे ना तो दूसरा जन्म ही लेने की आवश्यकता होगी और ना बहुत देर तक संसार में ठहरना ही पड़ेगा।
1: आपने स्वामी जी के बताए किस्से सुने। प्राच्य और पाश्चात्य में प्रचलित आचार व्यवहारों की विषमता को जाना। आगे की कड़ियों में हम आपको ऐसी ही कुछ और रोचक बातें सुनाएंगे।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अभी आप सुन रहे थे 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक दीजिए अनुमति। जय हिंद।